बाहुते तुम्हें मां शक्ति हृदये तु

ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ माह की 21वीं तिथि तदनुसार 12 जुलाई सन 2026 दिन के 11:58 में है हमारी पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है नन्हे मुन्हे बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम नन्हे जैसलमेर।

जैसे मेरे रिश्ते मिलने वाले मेरे सभी प्यारे साथियों को और मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों को आपकी रेडियो दीदी सुधा पुरोहित का प्यार भरा नमस्कार। और बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम नन्हे जैसे मिले। इसमें एक प्यारी सी कहानी आपका इंतजार कर रही है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि गर्मी में चश्मे और स्कार्फ का उपयोग कैसे किया जाए और खाने से पहले हाथ धोना क्यों जरूरी है, और गुनगुनाएंगे कुछ प्यारे से गाने। तो बच्चों, हम बात करते हैं पहले, जैसे गर्मी आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन अभी दो तीन दिन से तो हमारे शहर में आंधी ने जोर पकड़ रखा है। आज भी बाहर मिट्टी काफ़ी उड़ रही थी। तो गर्मी में और आंधी में बचने के लिए हमें चश्मे और स्कार्फ का उपयोग करना चाहिए। ये केवल फैशन नहीं है, बल्कि चिलचिलाती धूप, हानिकारक यूवी किरणें और धूल मिट्टी से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है। और ये आपके चेहरे और आंखों को सुरक्षित रखने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। इसमें सनग्लासेस के तो कई फायदे हैं, जैसे यूवी सुरक्षा, तेज धूप में मौजूद अल्ट्रा वायलेट किरणें आंखों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। धूप का चश्मा मोतियाबिंद और आंखों के कैंसर के खतरे को भी कम करता है। आंधियों में जो आंधी के मौसम में जो ये रेत उठती है, धूल मिट्टी उठती है, और गर्मियों में गर्म हवाएं जैसे लू चलती है, तो आंखों में सूखापन और लालिमा पैदा करती है। चश्मा इन बाहरी कणों को आंखों में जाने से रोकता है। धूप में बाइक चलाते समय या बाहर निकलने पर जो जकाचौंध है उससे सिरदर्द या आंखों में तनाव हो सकता है, तब भी जरूरी है कि हम चश्मा लगा के निकले। और स्कार्फ का तो वही पूछो मत, सिर और रतन को स्कार्फ से ढकने से त्वचा टैनिंग, सनबर्न और सन पॉइजनिंग से बची रहती है। चेहरे पर स्कार्फ बांधने से चेहरे के छिद्रों में गंदगी नहीं जाती और मुहासे और एलर्जी की समस्या भी कम होती है। लेकिन हम अगर स्कार्फ का उपयोग करते हैं तो हमेशा सूती या हल्के हवादार फैब्रिक का स्कार्फ पहनना चाहिए। गहरे रंग धूप को ज़्यादा सोखते हैं, इसलिए हल्के और पेस्टल रंगों का ही हमें उपयोग करना चाहिए। और एक चीज़ और है कि जो स्कार्फ हम बांध देते हैं उसे रोज धोना चाहिए, और एक दो तीन दिन के अंदर तो उसे डिटॉल में डालकर धोना चाहिए, गर्म पानी से धोना चाहिए, फिर काफ़ी बैक्टीरिया जो उस पर लग जाते हैं। और चश्मा अगर लगाते हैं तो कोई भी सस्ता काला चश्मा पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि वह केवल रोशनी कम करता है लेकिन यूवी किरणों को सीधे अंदर जाने देता है। इसलिए हमेशा बच्चों 100% यूवी या यूवी 400 प्रोटेक्शन वाला चश्मा ही खरीदना चाहिए। अगर आप सांस लेने के लिए स्कार्फ को मुंह पर बांधते हैं तो उसे चश्मे के लेंस के नीचे रखिए, इससे चश्मे पर भाप भी नहीं जाएगी। और अपने चेहरे के आकार के अनुरूप ही सही धूप के चश्मे का चुनाव करना चाहिए। और गर्मी और आंधी में त्वचा के अनुसार बेहतरीन जो स्कार्फ फैब्रिक है हमें उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आखिर चाहे हमारी स्क्रीन हो तो क्या, चाहे धूप आ रही है तो क्या, या यूवी या यूवीबी किरणें हैं, तो इनको 100% रोकने के लिए जो धूप का चश्मा था उसका उपयोग करना चाहिए। साल भर अपनी आँखों और उसके आसपास की नाजुक जो त्वचा है उसकी रक्षा करने के सबसे सरल तरीकों में से ये एक है। और धूल का चश्मा एक आपको पता है भौतिक अवरोधक के रूप में काम करता है, जो आपकी आँखों को हवा, धूल, पराग और शुष्क हवा जैसे जो पर्यावरणीय कारक है उनसे बचाता है। ये सभी कारक कुछ मौसमों में अधिक आम होते हैं, और सर्दी में भी, हालांकि हम बात तो आंधी और गर्मी की कर रहे हैं, लेकिन सर्दियों के जो महीने होते हैं उनमें भी विशेष रूप से हमारे आँखें सुस्त हो सकती है, जलन हो सकती है आँखों में, तो और भी ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए भी हमें उस समय जो रैप अराउंड स्टाइल या ग्लासेज स्टाइल या आरामदायक जो चश्मे हैं उनका उपयोग करना चाहिए। और स्कार्फ तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हम धूप जो है वो सीधे हमारे चेहरे पर, हमारी गर्दन जो है वहाँ तक नहीं आती, और हम टैनिंग जो है उससे भी बचे रहते हैं। और मास्क अगर हम लगाते हैं, स्कार्फ लगाते हैं, तो उसे नाक पर अच्छी तरह से फिट करना चाहिए, और ये निश्चित कीजिए कि आपका मास्क या स्कार्फ जो है वो नाक पर ठीक से फिट हो। गीला होने पर आंधी और गर्म हवा जो है वो ऊपर की ओर निकल जाती है और चश्मे पर धुंध जम जाती है, तो स्कार्फ को हमेशा चश्मे के नीचे रखिए। अगर आप स्कार्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे अगर हम चश्मे के नीचे रखेंगे तो हमें सांस
जो लेंगे उसमें भी हमें आसानी होगी। तो मैं यही कहूँगी आपको कि आप लोग चश्मे का और स्कार्फ का ब्लूबेरी आंधी में उपयोग जरूर कीजिए। आगे सुनेंगे हम इस प्यारी से कहानी, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: ड्रामा को लेकर गाते चले। ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।
0: ऐसे नहीं, बोलो में गाओ।

पापा नहीं है धनी दीदी, दीदी के

प्यारे बच्चों की कहानी के साथ अब हम बात करते हैं कहानियों की। बच्चों की परवरिश में हिंदी कहानियाँ एक अहम भूमिका निभाती है। माता पिता के लिए, दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए बच्चों को सुंदर और प्रेरणादायक हिंदी कहानियाँ सुनाना एक बेहतरीन अनुभव हो सकता है। हिंदी की कहानियाँ बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाती है और उन्हें जीवन के मूल्यों से रूबरू कराती है। चाहे पंचतंत्र की रोचक कहानियाँ हो या जंगली जानवरों पर छोटी मजेदार कहानियाँ, बच्चों को हिंदी में लिखी गई कहानियाँ बेहद पसंद आती है। इन कहानियों के माध्यम से माता पिता अपने बच्चों को समाज के मूल्यों और जीवन के नैतिक पाठों के बारे में प्रेरणादायक ढंग से शिक्षा भी दे सकते हैं। बच्चों, कहानियाँ आप लोगों की दुनिया का एक अभिन्न अंग है। माता पिता या दादा दादी द्वारा सुनाई जाने वाली हिंदी कहानियाँ आपकी कल्पना शक्ति को बहुत बढ़ाती है और आपके संज्ञानात्मक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। हिंदी कहानियों में लोक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां, पशु पक्षियों पर आधारित कहानियां, नैतिकता पर आधारित कहानियां और कल्पना प्रधान कहानियां शामिल होती है। ये सभी कहानियां बच्चों को बेहद पसंद आती है। कहानियां सुनने से बच्चों का शब्द भंडार भी बढ़ता है और ये उन्हें हिंदी भाषा के बेहतर ज्ञान के साथ साथ पठन और लेखन कौशल का विकास करने में भी मदद करती है। इसके अलावा कहानियों के माध्यम से बच्चों को समाज और संस्कृति से जुड़े मूल्यों के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये कहानियाँ बच्चों का मनोरंजन करते हुए उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों के बारे में बताती है। तो ऐसे ही एक हम प्रेरक कहानी सुनेंगे, ईमानदारी का फल। तो प्यारे बच्चों, एक छोटे से गाँव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घरेलू महिला। रामू अपने माता पिता की इकलौती संतान था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा अच्छाई और सत्य का पाठ पढ़ाया। एक दिन रामू स्कूल से घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बटुआ पड़ा हुआ मिला। उसने बटुए को उठाया और देखा कि उसमें काफी सारे पैसे थे। रामू ने सोचा, ये पैसे तो किसी के बहुत काम आ सकते हैं, मुझे उसे उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए। उसने बटुए में रखे पते को देखा और उस किसान में चल पड़ा। वह पता गांव के एक धनी व्यापारी का था। रामू ने उनके घर जाकर दरवाजा खटखटाया। व्यापारी ने दरवाजा खोला और रामू को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। रामू ने विनम्रता से बटुआ उन्हें वापस कर दिया। व्यापारी ने बटुआ खोलकर देखा और ये पाया कि सभी पैसे सुरक्षित थे। वह रामू की ईमानदारी से काफी प्रभावित हुआ। व्यापारी ने रामू से पूछा, तुम्हें पता था कि इस बटुए में इतने सारे पैसे हैं, फिर भी तुमने इसे वापस कर दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? रामू ने जवाब दिया, सर, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। यह पैसा मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसे आप तक वापस लाया हूँ। व्यापारी रामू की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे इनाम के रूप में कुछ पैसे दिए और उसने रामू के माता पिता से भी मुलाकात की और उनकी परवरिश की प्रशंसा की। रामू ने उन पैसों से अपनी पढ़ाई पूरी की और बड़ा होकर एक सफल व्यक्ति बना। उसने समाज में ईमानदारी और अच्छाई का महत्व समझाया और सभी को प्रेरित किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ईमानदारी हमेशा फल देती है और अच्छाई का मार्ग हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। रामू की कहानी आज भी गाँव में एक मिसाल के रूप में सुनाई जाती है। तो बच्चों, कभी भी पराई वस्तु से मोह नहीं रखना चाहिए। आपको भी अगर इस तरह से कुछ मिलता है तो उसको उसके मालिक तक पहुंचाने की कोशिश आपको करनी चाहिए और कभी भी दूसरों की संपत्ति या दूसरों का धन या कोई भी भौतिक वस्तु है तो उनके ऊपर हमें कभी भी अपनी नज़र नहीं गड़ानी चाहिए और हमें अपने जीवन को सादा और ईमानदार रखना चाहिए। तो बच्चों, इस बात से हम विराम लेते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: है कितनी भोली भाली है,
1: पापा भी तो अच्छे हैं, कितने प्यारे प्यारे हैं।
0: मम्मी तेरी अच्छी है कितनी भोली भाली है,
1: पापा भी तो अच्छे हैं, कितने प्यारे प्यारे हैं। है ना बोलो बोलो,
0: है ना बोलो बोलो।

0: है ना बोलो बोलो, है ना बोलो बोलो, पापा को देखो से
1: मम्मी को मुन्ने से प्यार है, प्यार है, प्यार है।
2: इसी गाने के साथ अब हम बात करते हैं रुपया सफाई और स्वच्छता की। जी हाँ बच्चों, खाने से पहले हाथ धोना बहुत जरूरी है। कई बार आपने सोचा होगा खाने से पहले हाथ धोना क्यों जरूरी है, तो आपको बता दूं कि हमारे हाथों में कई अदृश्य कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस। जब हम बिना हाथ धोए खाना खाते हैं तो ये कीटाणु भोजन के जरिए हमारे पेट में चले जाते हैं, जिससे डायरिया, फूड पॉइजनिंग और अन्य गंभीर संक्रमण हो सकते हैं। दिन भर बच्चों कई चीज़ों दरवाजे के अंदर

पैसे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यानी कई अलग अलग वस्तुओं को छूते हैं जिससे कई हाथों में हानिकारक बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। साबुन से अगर आप या हैंडवॉश से हाथ धोएंगे तो ये कीटाणु पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। नियमित रूप से हाथ धोने से डायरिया यानी दस्त के खतरे को 40% तक और सांस के संक्रमण को 20% तक कम किया जा सकता है और पाचन क्रिया में भी सुधार आता है, क्योंकि भोजन से पहले हाथ और पैर धोने से तो हमारे शरीर का जो तापमान है वो संतुलित होता है और बेहतर पाचन में मदद करता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार भी पानी और साबुन से कम 20 सेकंड तक हाथों को धोना चाहिए। इसमें हथेलियां, अंगुलियों के बीच में, नाखूनों के नीचे के हिस्से को अच्छी तरह से रगड़ना शामिल है। साबुन ना होने पर आप 60% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर का उपयोग भी कर सकते हैं। तो हमें ये एक अच्छी आदत है खाना खाने से पहले हाथ धोना, तो हमें इस आदत को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों से रसोई में और अन्य खाद्य पदार्थों में भी कीटाणु फैल सकते हैं और खाना बनाते समय भी हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हम कई तरह के जो संक्रामक बीमारियां होती है उनसे हम बचे रहते हैं।

चलना है तू मेरा सूरज है तू। तो बच्चों आप अपने माता पिता के लिए चांद और सूरज से कम नहीं हो। अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन आप टेंशन मत कीजिए, हम जल्दी मिलेंगे और थोड़ा बातें करेंगे। लेकिन आपको आज की चर्चा को सार्थक बनाना है और आंधियों के और गर्मी के मौसम में चश्मे और इस कास्ट का उपयोग जरूर करना है। साथ ही साथ में आपने जो प्यारी सी कहानी सुनी ईमानदारी वाली राम की, उस कहानी पर भी आपको जरा गौर फरमाना है कि हमें अपने जीवन को सादा रखना चाहिए और ईमानदारी रखनी चाहिए। साथ ही साथ आप कहीं से भी बाहर से घर के अंदर आते हैं, कुछ भी खाते हैं या कुछ बनाते हैं, तो पहले हाथ जरूर धोइए। आपकी मम्मी अगर खाना बनाने से पहले हाथ नहीं धोती तो आप उनको भी बोलिए कि हाथ धोइए। तो बच्चों अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार और प्यार भरा नमस्कार।

0: अभी आप नन्ही जैसलमेर कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्ते जैसलमेर। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जैसलमेर में विकास और सौंदर्यकरण विषय पर पर्यटन विभाग जैसलमेर के सहायक निदेशक श्री कमलेश्वर सिंह से तरुण शर्मा की बातचीत।
1: आजादी का अमृत महोत्सव।
2: श्रोताओं नमस्कार। समय समय पर हम आकाशवाणी के माध्यम से विभिन्न कलाकारों, अधिकारियों, विशेषज्ञों को आमंत्रित करते रहते हैं और उनसे वो जानकारियां प्राप्त कर आप तक लाभप्रद जानकारियां पहुंचाते हैं। जैसे केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की कोई योजनाएं हैं हर क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और हम शिक्षा के क्षेत्र में ले लें, आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हमारे देश ने दिनों दिन प्रगति की है। तो आज के नमस्ते जैसलमेर कार्यक्रम में आकाशवाणी के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है पर्यटन विभाग जैसलमेर के सहायक निदेशक श्री कमलेश्वर सिंह जी को। कमलेश्वर जी, आपका हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार तरुण जी, धन्यवाद।
2: चूंकि आप पर्यटन विभाग से जुड़े हैं और पर्यटन, बात करूं जैसलमेर की, तो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अपने में समेटे सरहद की रखवाली में मुस्तैद ये जैसलमेर, एक और सुनहरे रेतीले धोरे, क्या दृष्टिकोण है आपका पर्यटन, पर्यटकों को लेकर?
3: बिल्कुल निश्चित तौर पर जो राजस्थान है वो भारतवर्ष में पर्यटन की दृष्टि से एक अपना विशेष महत्व रखता है
2: जी।
3: क्योंकि हमारे यहाँ पर चाहे हम लैंडस्केपिंग ले लें, चाहे हमारे यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है, खान पान पाया जाता है, हर दृष्टि से रहना, रहन सहन, पहनावे, हर दृष्टि से हम एक विविधता रखते हैं जो कि अपने आप में ही एक आकर्षण का केंद्र है। साथ ही हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल मौजूद है जिसके अंदर जो पुरातात्विक स्थल है उनका तो संरक्षण हम कर ही रहे हैं, साथ के साथ जो राजे रजवाड़े और जो राजशाही परंपरा है उसको भी कहीं ना कहीं राजस्थान ने ही पूरे भारतवर्ष में समेट के रखा है, जिसको देखने पूरे वर्ष पर्यंत लोग आते रहते हैं, जिसके अंदर अलग अलग सीजन्स में राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हमें पर्यटकों की आवक देखने को मिलती है, जिसमें जैसलमेर का राजस्थान के टॉप 3 डेस्टिनेशंस में नाम आता है, जिसमें जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर ये सम्मिलित है जो राजस्थान की टॉप डेस्टिनेशंस है। तो इनके अंदर जो जैसलमेर है, जिसमें गत वर्ष हमने देखा कि कोरोना के बाद में पिछले 3 वर्षों में सबसे ज्यादा टूरिस्ट हैं वो आए जैसलमेर में, 40 से 50 लाख टूरिस्ट लगभग जैसलमेर आए, आंकड़े ये बताते हैं। तो ये अपने आप में ही एक अच्छा रिकॉर्ड भी है और साथ ही साथ जैसलमेर के पर्यटन को हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी भी दिखाता है कि आने वाले वर्षों में हमें कैसे प्रिपेयर्ड रहना है। पिछली वर्ष भी कुछ घटनाएं हुई जिनसे हमने सीख लेकर आगे बढ़े और इस वर्ष जैसलमेर को और प्रिपेयर किया जा रहा है कि हम इस वर्ष जो क्षमता वर्धन है, उस कैपेसिटी बिल्डिंग जो टूरिस्ट को लेकर उसकी दिशा में काम कर रहे हैं, और नए रिजॉर्ट्स आ रहे हैं, और नए होटल्स आ रहे हैं, और नए कैंप्स आ रहे हैं। जैसे पिछली वर्ष जो हमारी क्षमता थी वो पर डे लगभग 50 से 60 हजार टूरिस्ट को अकोमोडेट करने की थी पर डे की, तो वो पिछली वर्ष कहीं ना कहीं लास्ट में थोड़ी नाकाफी साबित हुई क्योंकि टूरिस्ट का इतना क्रेज था। तो लास्ट में कई माध्यम से हमें ये अपील करनी पड़ी कि आप थोड़ा रुक जाएं और कुछ समय बाद आएं, तो इतना क्रेज था टूरिस्ट के अंदर पूरे देश भर में। तो इस वर्ष जैसे, और जैसे खाड़ी का जो युद्ध चल रहा है उसके अंदर हम देख रहे हैं, अमेरिका का जो युद्ध है, ईरान का जो युद्ध है, तो उसको देखते हुए भी कई जो टूरिस्ट है वो मेन पॉइंट्स जो यूरोप के थे वो सब डाइवर्ट हुए हैं। तो उनको देखते हुए जो हमारे देश के जो देसी टूरिस्ट हैं उनकी संख्या में भारी इजाफा हुआ है और उन्होंने भारतवर्ष को ही, स्वदेशी को ही अपनाते हुए, स्वदेश के जो हमारे पर्यटन स्थल है उनको प्रमोट करते हुए उनको देखने की तरफ जो उनका आकर्षण बढ़ा है वो एक बड़ा इसका रीजन है।
2: बिल्कुल, मेरी समझ में आप बात कर रहे हैं स्वदेश भ्रमण की, जहाँ बात आई थी केंद्र सरकार की एक स्वदेश भ्रमण की योजना भी चलेगी कि भारत को देखो, अपने भारत को जानो, तो इसमें जैसलमेर का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, कला संस्कृति और इतिहास के रूप में हम जैसलमेर को देखें तो एक गौरवशाली इतिहास भी रहा है जैसलमेर का, और यहाँ की समृद्ध कला, और यहाँ के जो राजघराने हैं उनको लेकर पर्यटक क्या अपने दिमाग में और मन में दिल में क्या लेकर जाते हैं?
3: जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो जैसलमेर का इतिहास है वो अपने आप में पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता है। अभी हमारे यहाँ पे जो जैसलमेर का किला अभी इतने सैकड़ों वर्षों से खड़ा है वो अपने आप में इसका मतलब
2: द्योतक है
3: कि भाई जैसलमेर की कितनी जो अच्छी मतलब हमारी जो संस्कृति है उसका हमने संरक्षण कर रखा है और इतिहास का भी संरक्षण कर रखा है। तो ये अपने आप में जैसलमेर का दिखाता है कि जैसलमेर ने कितने वर्षों से जैसलमेर का समृद्ध इतिहास रहा है, जिसमें हम जैसलमेर के जो 250 साके हुए हैं उसका भी वर्णन मतलब आता है कि जैसलमेर के लोग कितने अच्छे तरीके से कितनी वीरता से और साहस से लड़े थे उस समय पे। और जैसलमेर की जो परिस्थितियां हैं वो अपने आप में ही नॉर्मल परिस्थितियां ही अपने आप में जीवन को इतना मुश्किल और चैलेंजिंग बना रही है। तो युद्ध के हालातों में यहाँ के लोगों ने कैसे परिश्रम करके यहाँ की जो नगरी है उसको बचाया था, तो यह अपने आप। और राजस्थान भी जो है उसने विदेशी आक्रांताओं से समय समय पर पूरे देश को बचाया। और हमने पूरे इतिहास में भी ये देखा है कि जैसे जैसे राजस्थान के जो राजवाड़े जब तक लड़े, जब तक राजपूत जो है उन्होंने लड़ाई जारी रखी, तो तब तक पूरे देश में कहीं पे भी जो मुगल हैं या जो दूसरे बाहर के विदेशी आक्रांता है उनका कब्जा नहीं हो पाया था। और जैसे ही राजस्थान के जोड़े राजे रजवाड़े थोड़े कमजोर पड़ने शुरू हुए पूरे देश पर इनका कब्जा होना शुरू हो गया था। तो ये अपने आप में विरासत को दिखाता है। जैसलमेर में भी जो राज परिवार है उसका अपना एक इतिहास रहा है। और अभी भी जो जैसलमेर का किला है सोनार दुर्ग उसको भी देखने जो टूरिस्ट हैं वो पूरे वर्ष पर्यंत आते रहते हैं, जिसके अंदर जो सीजन होता है मुख्य सीजन जो हमारा अभी अगस्त से स्टार्ट होता है और लेकर फरवरी मार्च तक चलता है, क्योंकि फिर थोड़ा टेम्परेचर और एनवायरनमेंट के हिसाब से गर्मी स्टार्ट हो जाती है तो टूरिस्ट आना थोड़ा चैलेंजिंग परिस्थितियों में कम करते, क्योंकि आजकल ऐसी कोई सबके ऊपर वो तो है नहीं पाबंदी कि भाई हमें इसी मौसम में जाना है, तो सबके पास चॉइसेस हैं, तो चॉइसेस हैं तो वो अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग आते हैं।
2: बिल्कुल ठीक है, आप 6 महीने खूब होते हैं। ये तो कला संस्कृति इतिहास की बात हुई, बॉर्डर टूरिज्म और धार्मिक पर्यटक की बात करें तो जैसलमेर में पश्चिमी सुदूर क्षेत्र में आया जैसलमेर, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान की लगती है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरा धार्मिकता, तो इस धार्मिकता का कितना महत्व है पर्यटन को लेकर?
3: बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसलमेर का हम जो इतिहास है उससे ही उठा के देखें तो जो हमारे भारत पाकिस्तान के युद्ध हुए हैं उसके अंदर जो वेस्टर्न फ्रंट था जिसके अंदर जैसलमेर में जो युद्ध लड़े गए, जिसमें हम चाहे लोंगेवाला

0: वो भी दिखाता है कि हमारे लोग जैसलमेर आते तो है पर वहां जाना कितना पसंद करते हैं, तो लगभग मोर देन 70% 80% लोग बॉर्डर भी जाते हैं, जबकि बॉर्डर की डिस्टेंस यहाँ से 100 किलोमीटर से ज्यादा है, तो वो एक अपने आप में चैलेंजिंग भी रहता है। फिर भी वहाँ इतने ज्यादा लोग, वहाँ इतने टूरिस्ट पहुंचते हैं और उस देशभक्ति की जो भावना है उसको फील करते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो सैनिक हैं, उन्होंने जो शौर्य पराक्रम दिखाया है उसकी वो अनुभूति लेते हैं। वहाँ पे BSF और इंडियन आर्मी ने भी जो उनके लिए अनुभूति के सेंटर्स बनाए हैं, जो उनकी पिक्चर हॉल बनाया है उसके अंदर वो उस समय की मूवी वगैरह वो दिखाते हैं, तो उससे भी एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है और ये भी दिखाता है कि हमारी जो सेनाएं हैं वो सारे मोर्चों पर बहुत मजबूती से खड़ी है और देश की सुरक्षा मजबूत हाथों में।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कमलेश्वर जी। एक बात आती है कि कई बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों संयुक्त तत्वावधान में कई ऐसी योजनाएं लागू करती है। राजस्थान सरकार की यदि बात करें तो अभी हाल ही में पंचगौरव की जो योजना आई है, हर जिले में अपने अलग अलग तत्व उत्पादों को लिया गया है। तो जैसलमेर की बात करें और आपके क्षेत्र की बात करें तो एक जिला एक पर्यटन में किसको चुना गया है और क्यों चुना गया है?
0: बेसिकली जो अभी राजस्थान गवर्नमेंट है तो इसने 2023 के बाद 2024 से पंचगौरव के नाम से एक स्कीम स्टार्ट की, तो जिसका मुख्य जो उद्देश्य है वो यही था कि जो पांच जो हमारे मुख्य क्षेत्र है उनकी हम एक एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है हर जिले में उसका प्रमोशन करना और उसके संवर्धन में, उसके संरक्षण में जो भी एफर्ट प्रचार प्रसार तो है ही, उसके साथ में कई जैसी इसमें चीजें हैं जिनमें आधारभूत संरचना के लेवल पर, कई इसमें प्रमोशन के नाम पर सरकार से जो एफर्ट्स किए जाते हैं, तो वो सब एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए उस उद्देश्य से राजस्थान गवर्नमेंट ने पिछली वर्ष भी इसमें बजट रखा था, इस वर्ष भी बजट में इसने 150 करोड़ का प्रावधान किया है। तो उसके अंदर जैसलमेर में इन्होंने जैसलमेर का जो किला है, जो अपनी विरासत है, उसको हमने लिया है पर्यटन स्थल के रूप में, एक जिला एक पर्यटन स्थल के रूप में। तो उसमें सोनार दुर्ग से संबंधित हमने, क्योंकि ये ASI का भी एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो इसमें कंस्ट्रक्शंस की कुछ लिमिटेशंस रहती है, हालांकि सोनार दुर्ग की परिधि में ऑलरेडी कुछ विकास कार्य राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा चुके हैं, जिसमें नगर परिषद की तरफ से कार्य करवाए भी जा रहे हैं, इसमें चारों तरफ इसके वॉकवे डेवलपमेंट करना, इसके चारों तरफ अंडरग्राउंड केबलिंग करते हुए हेरिटेज लाइटिंग वगैरह, जिससे कि ये शहर अपना उसी विंटेज लुक में वापस आ पाए, क्योंकि बढ़ते शहरीकरण और वैश्वीकरण के दौर में हम कहीं ना कहीं वो पुरानी पहचान है वो थोड़ी थोड़ी धूमिल होती रहती है, तो हम उसी को ही वापस बनाए रखने के लिए, उसी को वापस जीवंत करने के लिए जो सरकार के प्रयास है ये कर रहे हैं। साथ के साथ जो प्रचार प्रसार के तौर पर पंचगौरव में पिछले वर्ष भी हमने कुछ कार्य किए, इसमें विज्ञापन भी हुए, रेडियो के माध्यम से भी किया और ऐसी कुछ चीजें हुई, इसमें साइनेज बोर्ड और लोगों के अंदर भी जन जागरूकता के भी कार्य किए। इस वर्ष उसको और बड़े स्तर पे थोड़ा करेंगे और आगे लेके जाएंगे और आने वाले वर्षों में दुर्ग से संबंधित और कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे जैसलमेर के वासियों के साथ साथ जो बाहर के भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनमें दुर्ग और इसके इतिहास के बारे में जानकारी हो पाए।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी पंचगौरव के बारे में। थोड़ा सा इससे मैं पहले चलूं तो आपका पर्यटन का क्षेत्र और जैसलमेर, और अब बात आती है राजस्थान सरकार की एक वही योजना राइजिंग राजस्थान, जिसमें उद्योग को लेकर बहुत बड़ा बढ़ावा दिया गया था। अभी 2 या 3 वर्ष पहले की बात करूं तो उसमें जैसलमेर का क्या योगदान है और कितने उद्योगपतियों का, और जैसलमेर उद्योग की दृष्टि से कितना अपना महत्व रखता है?
0: जी बिल्कुल, जैसलमेर में जो उद्योग है वो मुख्य, जैसलमेर की अर्थव्यवस्था है वो 70-80% जो है वो पर्यटन और इसके जो आसपास के संबंधित क्षेत्र है उसके ऊपर टिकी हुई है। तो जैसलमेर में उद्योग है वो वैसे इंडस्ट्री के जो मेन कोर लाइन उद्योग होते हैं उनसे हटकर जो होटल उद्योग है, जो पर्यटन व्यवसाय है उसकी तरफ ज्यादा झुकाव है। तो इसमें हम यही देखते हैं जैसलमेर में, और इसके अलावा जो उद्योग में मुख्य रूप से जैसलमेर में जो येलो स्टोन है उसके उद्योग और उसके उत्पाद जो है वो अधिक प्रचलित है और उसकी इंडस्ट्री ग्रो भी कर रही है, बट जो पर्यटन है वो जैसलमेर के हिसाब से मुख्य दूरी पर स्थापित है और वो स्थापित रहेगा भी, क्योंकि जैसलमेर में कई ऐसे घटक है जो पर्यटन को अपने आप में आकर्षित और एक विविध पहचान देते हैं
1: जी।
0: तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसलमेर जो है तो इसमें उद्योग के रूप में पिछले वर्ष 2 वर्ष पूर्व जब राइजिंग राजस्थान हुआ था, इसकी फर्स्ट समिट हुई थी, अब उसको 2 वर्ष होने वाले हैं इस वर्ष नवंबर में, तो इसमें कई MOUs हुए। शुरुआत में इसमें 120 के अराउंड MOUs हुए थे जैसलमेर से रिलेटेड, आज उसमें 45 के अराउंड MOUs ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है,
1: वृद्धि हुई,
0: मतलब 45 120 में से 45 सक्सेसफुल हो चुके हैं, उसमें होटल्स भी शामिल।

0: है, उसमें रिजॉर्ट्स भी शामिल है, कुछ कैंपिंग साइट्स भी शामिल है। तो उसमें उनके जो जो अप्रूवल्स थे, हमने इस सरकारी योजना के माध्यम से उनको फास्ट करवाया। कईयों के सरकारी कन्वर्जन थे वो इस योजना के अंदर लेकर हमने अंतर विभागीय जो है अपना कोऑर्डिनेशन करते हुए इस प्रक्रिया को स्मूथ करने का कार्य किया। और अभी ये खुशी है कि लगभग 45 उसमें से हो चुके हैं और अभी निरंतर उस पर कार्य चल रहा है। जो भी इच्छुक इसमें है, हमारे इन्वेस्टर्स निवेशक है, तो वो सभी इसमें अपना जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट और योगदान दे रहे हैं, वैसे ही सरकार अपना पूरा एफर्ट लगा रही है। और विभागीय स्तर पे भी इसकी एक अलग से सेल बनी हुई है हमारे जयपुर हेडक्वार्टर पर, जो समय समय पर वीकली मंथली और ये निवेशकों से बात भी करती है और उनसे पहुंचकर उनकी जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने का कार्य भी करती है। और हम भी स्थानीय स्तर पर हमसे रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनसे जुड़े रहते हैं, उनके अपडेट्स तैयार करते हैं और इसकी समीक्षा समय समय पर होती रहती है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपने बताई। और अब बात आती है, हम मेन शहर सिटी की बात करें तो शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर पर्यटन विभाग का क्या दृष्टिकोण है, क्या नवाचार हो रहे हैं? कल का जैसलमेर और आज का जैसलमेर और भविष्य में आने वाला जैसलमेर कैसा होगा, और अभी क्या हाल ही में वर्तमान में शहरी सौंदर्यीकरण को लेकर चल रहा है?
0: तो जैसलमेर में हम जैसे देखें तो अभी शहरीकरण के जैसलमेर जो फर्स्ट या सेकंड स्टेप पे ही है, जैसलमेर में अभी बहुत ज्यादा शहरीकरण नहीं हुआ। पहले भी जैसा पुराना शहर था अभी भी वैसा ही है। पिछले 2-4 वर्षों में हम देखें तो कुछ इस दिशा में काम हुआ है, जैसे सिटी में भी जो हेरिटेज स्टोन्स लगे हैं, हेरिटेज लाइटिंग्स हुई है, उससे हेरिटेज लुक लाने की तरफ से थोड़ा कार्य किया गया। बाकी जैसा पुराना शहर था काफी समय से वैसा ही चलता आ रहा था। बहुत ज्यादा जो शहर की मूल आधारभूत ढांचा उसमें कोई बदलाव नहीं था, वही संकरी गलियां थी, वही सब था, अभी भी
1: बिल्कुल
0: वही है। अभी क्या है कि पिछले कुछ समय से जो नगर परिषद के सहयोग से और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सिटी के अंदर जो मुख्य चौराहे हैं उनका सौंदर्यीकरण किया गया। इसमें हम खम्मागणी सर्किल देख लें से लेके जो हमारा लास्ट में शहीद स्मारक भी है और विजय स्तंभ
1: विजय
0: तक
1: स्तंभ
0: है,
1: भी है।
0: तो वहां तक भी सारे जो डिवाइडर्स हैं उनको हेरिटेज स्टाइल में लाया गया। हेरिटेज लाइटिंग भी की जा रही है, हेरिटेज स्टोन्स का प्रदर्शन किया जा रहा है। येलो स्टोन जो हमारा उस पर जो कार्विंग है वो सब जो टूरिस्ट आते हैं सब देखते हैं और जो येलो लाइट में उसका एक अलग ही
1: इफेक्ट होता है।
0: इफेक्ट
1: कुल
0: दिखता
1: मिला
0: है।
1: के विकास के कार्यों में जो
0: विकास
1: है
0: के कार्य
1: वृद्धि
0: चल रहे हैं,
1: और
0: अभी दो
1: वृद्धि हो रही
0: तीन
1: है।
0: कुछ कार्य पाइपलाइन में है, जैसे जो किले के चारों तरफ के जो कार्य है जो मैंने आपको पहले भी बताया, किले के चारों तरफ रिंग रोड का सौंदर्यीकरण का कार्य वो प्रगतिरत है। साथ ही जो हमारा गड़ीसर जो है,
1: हाँ
0: गड़ीसर तालाब, वहां पर भी कुछ प्रोजेक्ट्स है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। रूडिप के कुछ कार्य है जो गड़ीसर की ऊपर की पाल का कार्य हो रहा है तो वो है। अभी आप देखोगे कि अंदर की आवाजाही में गाड़ियां बंद कर दी है, बाहर कोबल स्टोन लग के वो हेरिटेज
1: बिल्कुल
0: लुक में धीरे धीरे आ रहा है। अभी तो गड़ीसर का एक बड़ा प्रोजेक्ट ले रखा है, अभी कुछ वर्त कुछ समय में उसका काम शुरू हो जाएगा। गड़ीसर के साइड्स में जो पंच गौरव की वॉल्स है वो बन रही है येलो स्टोन के ऊपर, वो अपने आप में आकर्षण का केंद्र होगी। तो ये चीजें धीरे धीरे इसको और समृद्ध करती जाएंगी।
1: बिल्कुल। आगे रेलवे स्टेशन की बात करें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से इसका भी विस्तारीकरण हुआ है, तो इससे भी आपकी दृष्टि से कई पर्यटकों का आवाज जो है वो बढ़ा है, आवक जो है बड़ी है पर्यटकों की, शाही ट्रेन आना और काफी ट्रेन भी बड़ी है, शायद
0: बिल्कुल,
1: लुक भी बड़ा है
0: पिछले
1: स्टेशन
0: कुछ
1: का।
0: समय में जो अभी जैसलमेर में रेलवे स्टेशन को लेके काम हुआ है, जैसलमेर रेलवे स्टेशन को के ऊपर जो केंद्र सरकार की जो योजना के अंतर्गत जैसलमेर स्टेशन का सौंदर्यीकरण भी किया गया, इसमें जो सुविधाओं का विस्तार भी किया गया। और ये पूरे रेलवे स्टेशन को आज हम देखें तो हमें एयरपोर्ट की तरह लगता है, जैसे
1: बिल्कुल
0: लग्जरी एयरपोर्ट्स होते हैं, आज जैसलमेर का रेलवे स्टेशन भी उनसे कहीं कम नहीं है। और जो इसकी यात्री क्षमता है तो जो इसकी पहले मूल यात्री क्षमता थी उससे 5 से 10 गुना यात्री क्षमता
1: बड़ी है।
0: हैंडल करने के रूप में आज ये सक्षम है। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है और जैसलमेर के लिए एक बहुत अच्छी सौगात भी है केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार के सहयोग से कि जैसलमेर का रेलवे स्टेशन इतना उन्नत हो पाया। और यहाँ से कुछ 2-3 नई ट्रेन भी अभी जुड़ी है अच्छे रूट्स पर, जिसमें साबरमती जो ट्रेन है उसको जोड़ा गया जैसलमेर से। जैसलमेर में जयपुर की जो स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस है, जो
1: शकूर
0: पहले एक
1: बस्ती
0: पहले जो एक ट्रेन जाती थी वो बीच में बंद हो गई थी कुछ कारणवश, कुछ वर्षों पूर्व शाम के समय वो अब वापस स्टार्ट हो गई स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस करके। और भविष्य में भी जैसा कि इन्होंने रेल मंत्रालय ने भी अपनी मंशा जाहिर की है कि जैसलमेर में रेलवे से रिलेटेड कई इनके जो मेंटेनेंस की चीजें हैं उनसे रिलेटेड डेवलपमेंट्स किए जाएंगे, जिससे कि कई जो स्टेशंस हैं जो ट्रेनें हैं उनका यहाँ तक आखिरी पड़ाव तक जुड़ाव हो सके। तो
1: बिल्कुल
0: इससे जैसलमेर में आने वाली ट्रेनें बढ़ेंगी तो यात्री निश्चित
1: तकनीकी
0: तौर
1: रूप
0: पर
1: से भी।
0: बढ़ेंगे।
1: हाँ बिल्कुल
0: सीजन में हम देखते हैं कि इसमें टिकट्स नहीं मिलती है, अभी स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस तो अभी भी आप बुक करेंगे तो
1: बिल्कुल
0: आपको
1: फुल
0: टिकट्स नहीं मिलेगी। तो ये अपने आप में दिखाता है कि जैसलमेर में डिमांड है, और
1: बिल्कुल
0: जो पहले कहते थे लोग कि भाई डिमांड नहीं है इतना दूर कौन आएगा, तो अब ये डिमांड की व्यवस्था तो हो चुकी है कि भाई डिमांड तो जैसलमेर में खूब है, और अब बस सप्लाई की आवश्यकता है, जो हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो
1: नहीं,
0: रहा
1: वो
0: है,
1: भी हम
0: और इससे
1: उम्मीद
0: फ्लाइट कनेक्टिविटी की दिशा में भी जैसलमेर में बहुत अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। जैसलमेर 6 महीने तो फुल फ्लैज फ्लाइट कनेक्टिविटी से जुड़ा रहता है, 6 से 7 स्थानों की फ्लाइटें जैसलमेर में उपलब्ध है।
1: बिल्कुल
0: इस वर्ष एक पहल करके गर्मियों में भी फ्लाइट स्टार्ट करने का प्रयास किया था, जिससे भी कई चीजें सीखने को मिली कि गर्मियों में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो यहाँ के पर्यटन व्यवसायी है और जो प्रशासन है वो अपने आप में एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है कि कैसे
1: बिल्कुल
0: टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, कैसे हम जो टूरिज्म का जो टाइम स्पेंड है उसको कैसे बढ़ाएं, और जो एग्जिस्टिंग टाइम स्पेंड है उसके अंदर हम कैसे बेस्ट टूरिज्म एक्सपीरियंस दे सकें टूरिस्ट को, तो उसकी दिशा में निरंतर कार्य करते रहता है। और इस सभी की एक जिला प्रशासन की, आम नागरिकों की, जैसलमेर के और जो पर्यटन व्यवसायी वगैरह है उन सबकी एक साझा पहल के रूप में मैं इसको देखता हूँ। सबके सहयोग से ये हो पा रहा है कि जैसलमेर आगे बढ़ रहा है, और आने वाले 5 वर्षों में आपको देश के भी चुनिंदा 4-5 टॉप डेस्टिनेशंस में आपको जैसलमेर दिखेगा।
1: बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारा जैसलमेर और आगे विकास करे और आगे बढ़े और दुनिया के विश्व पटल पर इसका और ऊंचा नाम हो। एक चलते चलते आपके ही विभाग से एक छोटा सा प्रश्न और हम पूछना चाहेंगे और जानकारी भी चाहेंगे। टूरिस्ट गाइड को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? जैसलमेर में पर्यटकों के लिए गाइड की क्या व्यवस्था है और कितने टोटल्स अभी गाइड हैं?
0: तो टूरिस्ट गाइड्स का जो रजिस्ट्रेशन है उसमें 2 तरीके से अभी आज की तारीख में हो रहा है। एक होते हैं लोकल लेवल गाइड, एक होते हैं स्टेट लेवल गाइड्स। स्टेट लेवल गाइड्स हैं उनका थोड़ा जो पैमाना है वो विस्तृत है, वो स्टेट लेवल की जानकारी रखते हैं, उनका जो कार्य क्षेत्र है वो भी एक जिले तक सीमित ना होकर विस्तृत है। वो राजस्थान में
1: बिल्कुल राज्य
0: अन्य जिलों में भी जाकर कर सकते हैं, उसमें उनको अलाउ होता है। लोकल लेवल गाइड्स एक क्षेत्र तक सीमित रहते हैं। तो इसमें क्या होती है कि एक परीक्षा करवाते हैं हम लोग समय समय पर, हर 2 या 3 वर्ष में, जैसे जैसे गाइड्स की कुछ कमी होती है, कुछ गाइड्स अपना जो कार्य है वो छोड़ देते हैं, एज के हिसाब से भी होता है।
1: स्तरीय।
0: तो हमें जैसे ही महसूस होती है कि भाई कमी है, और इसमें विभाग इसमें लेके आता है इसका एग्जाम और इसकी पॉलिसी लेके आता है, तो उस समय समय समय पर एग्जाम करवाए जाते हैं। एग्जाम के माध्यम से जो भी इसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये राजस्थान का जो टूरिज्म है वो हिस्ट्री पर टिका हुआ है, हिस्ट्री और इसके कल्चर पर, तो हम ये चाहते हैं और सरकार भी ये चाहती है कि जो सही नॉलेज है, सही जानकारी है
1: सही
0: वो
1: व्यक्ति
0: लोगों
1: को।
0: तक पहुंचे। तो इसके लिए यह जो गाइड्स हैं उनको भी सही जानकारी प्राप्त होना, सही पढ़े लिखे हों, सही क्वालिफिकेशन हो,
1: ताकि मिसगाइड ना
0: ये
1: हो कोई
0: बहुत
1: पर्यटक।
0: आवश्यक है, क्योंकि
1: बिल्कुल,
0: एक बार हम किसी को जो चीज बता देते हैं फिर आगे वही लोग
1: उनके जहन में वही
0: उसके
1: चीज
0: वही वही उसको इंटरप्रेट करते हैं, आगे वो व्यक्ति उस चीज
1: उसी
0: को
1: चीज
0: आगे
1: का
0: इंटरप्रेट
1: प्रमोशन
0: करेगा।
1: होता
0: अगर उसको गलत फैक्ट चला गया तो आगे वो भी 2 जनों को गलत फैक्ट बताएगा,
1: है।
0: तो वो हिस्ट्री ऐसे ही तोड़ मरोड़ के पेश हो सकती है। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा जो लीगल गाइड्स हैं, जो वैध गाइड्स हैं वो यहाँ पे करें। अब वर्तमान में हमारे पास अराउंड एक्टिव जो गाइड्स हैं 500 से 600 हैं, और हमने पिछले जो 15 वर्ष में लगभग 1100 गाइड्स का रजिस्ट्रेशन टोटल किया है, जिसमें कई लोग इसका कार्य छोड़ चुके हैं जो अब रजिस्टर नहीं करवाते हैं। तो इसमें हमारी पॉलिसी के अनुरूप है 1 या 2 वर्ष तक अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो अपने आप ही आउट ऑफ द वो हो जाता है। उसके बाद हम उसका जब रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से उसको पुनः कोर्स करके और पुनः ज्वाइन करना पड़ता है, और हम इसका एक कोर्स भी करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम करके इनको डायरेक्ट लाइसेंस दिया जाता है, इनका
1: अच्छा
0: बाकायदा 7 से 15 दिन का एक कोर्स होता
1: ट्रेनिंग।
0: है जिसके अंदर उनकी ट्रेनिंग की जाती है, इनको जो जिले के इंपॉर्टेंट स्थल है उन सबकी जानकारी भी दी जाती है, इनको कैसे उनसे
1: इनसे
0: कम्युनिकेट
1: रूबरू
0: करना है।
1: करवाया जाता है।
0: और अलग अलग इसके अंदर हम जो अलग अलग भाषा के जो गाइड्स होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनको बुलाकर उनके माध्यम से भी भाषा के संबंधी गाइड भी ये दिलाते
1: अच्छा,
0: हैं जानकारी।
1: इसमें बाइलिंगुअल भी रहता है?
0: बाइलिंगुअल
1: कितनी
0: भी
1: भाषाएं
0: है इसमें,
1: जैसलमेर में आपके हिसाब से भी
0: जैसलमेर में
1: चल रही?
0: स्पेनिश गाइड्स भी हैं, जैसलमेर में स्पेनिश भी है
1: जी।
0: और फ्रेंच गाइड्स हैं जैसलमेर में, इटली
1: ओके
0: इटली और इधर से जो लोग आते हैं उनसे रिलेटेड गाइड है, जर्मन गाइड्स हैं जैसलमेर में, बहुत सी बहुभाषी गाइड्स हैं जो
1: ओके
0: लगभग 5 से 7 लैंग्वेज जानते हैं, ऐसे गाइड्स भी हैं। तो उन्होंने अपने आप में अपनी महारत हासिल की है, समय के साथ अपने आप को तराशा है। तो कई गाइड से तो मैं मिलता हूं तो मुझे बहुत खुशी भी होती है और गर्व भी होता
1: आश्चर्य
0: है,
1: होता है।
0: आश्चर्य भी होता है कि इनको इतनी भाषाएं आती
1: अच्छी
0: जैसलमेर का
1: बात
0: होते हो, और कईयों के तो संबंध है विदेश के लोगों से, बहुत अच्छे अच्छे संबंध है उनके, मतलब मित्रता है वहां के लोगों से। कईयों
1: ओके
0: के मतलब मेरे ऑफिस में भी आते हैं तो वो बताते हैं अपनी स्टोरीज, बताते हैं कि भाई कोरोना के समय में भी बाहर के लोगों ने कैसे यहाँ के लोगों को हेल्प की, इसकी कहानियां भी मतलब हमारे पास है। तो ये अपने आप में दिखाते हैं कि भाई देशों के बीच में जो बाउंड्रीज है वो हो सकती है, पर लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो
1: जुड़े
0: कल्चर जुड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी आपने उद्योग के क्षेत्र में, शहर के सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में, शहर के विकास को लेकर, धार्मिक पर्यटन, बॉर्डर टूरिज्म, रेलवे स्टेशन, टूरिस्ट गाइड, बहुत सारी जानकारियां आपने हमारे श्रोताओं को दी। और चलते चलते एक आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, चाहे वो गाइड के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाए?
0: तो मेरा यही मैसेज रहेगा जो सारे युवा साथी हमारे उनको, कि आप अधिक से अधिक अभी सबसे पहले तो एजुकेशन पे फोकस करें। आप अच्छे एजुकेटेड रहेंगे तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे उसमें आप अच्छा ही करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो सबसे पहली शर्त यही है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें अपना पूरा सर्वस्व देकर उसमें अपनी महारत हासिल करें, उसमें आप ऐसी स्किल डेवलप करें कि जो सामने जो भी उस फील्ड के लोग हैं जिनको जो हायर करते हैं उनको कहीं ना कहीं आपको लेना ही पड़े, नहीं तो उसके बिना उनका काम नहीं चले। क्योंकि आज के टाइम में जो डिग्रियों का युग है उसके अंदर डिग्रियां लेना बहुत ईजी हो रहा है, पर वहीं वहीं स्किलफुल लोग बहुत कम हो रहे हैं। स्किलफुल लोग जो लोग हायर करने वाले हैं उनके लिए भी ये समस्या है कि स्किलफुल लोग कम है। तो जब आपके पास स्किल होगी तो आप अलग दिखोगे और अपने आप आगे बढ़ोगे। तो यही है कि आप एजुकेटेड रहें और स्किलफुल बनने का प्रयास करें।
1: साथ ही जैसलमेर की जनता को शहर के विकास के लिए और शहर को संरक्षित करने के लिए एक छोटा सा संदेश।
0: शहर को संरक्षित करने के लिए यही है कि जो आमजन है उनकी सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं खुद जैसलमेर से आता हूँ कि हम जैसलमेर के जो शहर है, जो हेरिटेज सिटी हमारी, इसको साफ सुथरा रखें। इससे संबंधित जो अन्य जो हमारे विरासत के स्थल हैं उनको कैसे संरक्षण करना है, इनके साथ कोई तोड़ फोड़ ना हो, इनके संरक्षण में जो भी हम पॉजिटिव एफर्ट्स कर सकते हैं, समय समय पर प्रशासन भी साफ सफाई के कार्यक्रम वगैरह चलाते हैं, तो उसमें हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में सम्मिलित हों। उसके साथ हम जो जैसलमेर में कई महोत्सव होते हैं, उत्सव होते हैं, मरु महोत्सव करवाते हैं, उन सब में जैसे लोगों का सहयोग रहता ही है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आते ही है, पर हम और जितना ज्यादा एफर्ट करेंगे और पर्यटकों से संबंधित हम जितना ज्यादा से ज्यादा लोग जो पर्यटक हैं उनसे हम जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, उनकी मेहमाननवाजी के लिए ही राजस्थान जाना जाता है, तो हम अपने कल्चर को जितना अच्छे से उनको अच्छा एक्सपीरियंस दिलवाएंगे
1: अच्छा
0: तो वो उतना ही इंप्रेशन लेके जाएंगे और वहाँ के लोगों को बताते हैं कि भाई राजस्थान में हमने ये देखा।
1: बिल्कुल। कमलेश्वर जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और हमने खूब सारी बातचीत की और श्रोताओं को आपने अच्छी अच्छी जानकारियां दी, युवाओं के संबंध में भी आपने अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: धन्यवाद तरुण जी, धन्यवाद।
2: आजादी का अमृत महोत्सव।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नन्हे नमस्ते जैसलमेर। पर्यटन विभाग जैसलमेर के सहायक निदेशक श्री कमलेश्वर सिंह से बातचीत कर रहे थे तरुण शर्मा।

0: ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर के 1 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय चर्चा की और साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया गए। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 3 देशों की यात्रा के 3रे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर 10 से 11 जुलाई तक ऑकलैंड का दौरा किया। न्यूजीलैंड की ये यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में पहली यात्रा थी। आज से जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन से नियमित विमान सेवाओं का शुभारंभ हो गया है। नए टर्मिनल के संचालन के पहले दिन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहली उड़ान के यात्री को टिकट और स्वागत किट प्रदान कर शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। इससे पहले बेंगलुरु से जोधपुर आई पहली फ्लाइट के सभी यात्रियों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने यात्रियों के साथ केक काटकर उत्सव भी मनाया। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जोधपुर आने और यहां से जाने वाले प्रत्येक यात्री को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ शहर की समृद्ध संस्कृति और आत्मीयता का अनुभव होगा। ये टर्मिनल जोधपुर की नई पहचान और बढ़ती विकास यात्रा का मजबूत प्रतीक बनेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एकमुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। ये योजना उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगी जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रदेश में आज से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से ये परीक्षाएं 18 जुलाई तक 2-2 पारियों में ली जाएंगी। आज पहले दिन पहली पारी में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा हुई। दूसरी पारी में परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक होगी।

0: ये भर्ती परीक्षा कुल 9,651 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। 27 जिलों में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उद्योग और वाणिज्य विभाग ने सेक्टर आधारित करीब 15 नई नीतियां लागू की हैं। राजस्थान टेक्सटाइल और अपेरल नीति 2025 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल का गठन किया गया है। साथ ही 11 जिलों के लिए जिला स्तरीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा चयनित 7 चैंपियन जिले अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और कोटा तथा 4 एस्पिरेशनल जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और चूरू शामिल हैं। उद्योग और वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि ये सेल राज्य में टेक्सटाइल इकाइयों को प्रोत्साहित करने, नवीनतम तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बहुआयामी प्रयास करेगी। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। कल राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई, लेकिन अधिकांश इलाकों में मॉनसून की गतिविधियां कमजोर रहीं। मौसम विभाग ने आज करीब 15 जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। हालांकि किसी भी जिले के लिए बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बादलों के छटने से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में उमस और गर्मी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे महिलाओं का मनपसंद कार्यक्रम मोमेंट्स।

कोमल कार्यक्रम सुनने वाली सभी महिलाओं का आपके अपने कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। हर इतवार की तरह इतवार भी करने आपसे गुफ्तगु और दिल की धीरों बातें साझा लेकर हाजिर हूँ आपका अपना कार्यक्रम। मैं हूँ आपकी रेडियो सखी प्रीति भाटिया, तो कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और हम करते हैं अपने कार्यक्रम की शुभ शुरुआत। तो प्यारे सखी, उम्मीद है कि आप सकुशल होंगी, आप स्वस्थ होंगी। जब हम स्वस्थ होने की बात करते हैं बहनों, तो हमारा अर्थ सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना नहीं होता, फिजिकली एकदम ठीक होना नहीं होता, बल्कि हमारा अर्थ मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना होता है। अब आप सोचेंगे मानसिक रूप से स्वस्थ होना मतलब मेंटल हेल्थ, ये क्यों मैटर करती है? देखिए, किसी ने कुछ एक आध बात कह दी हम सहन कर लेते हैं, दो बार कह दिया हम सहन कर लेते हैं, लेकिन कई बार जब हालात कुछ ऐसे होते हैं कि जब हम लंबे समय तक कोई चीज़ को सहन कर रहे होते हैं, चाहे वो परिस्थितियों की मार हो, चाहे वो किसी कही गई बात हो, या चाहे विषम परिस्थितियाँ और हालात हो, हर व्यक्ति की अपनी सहनशीलता होती है। ज़रूरी नहीं कि एक इंसान जितना बर्दाश्त कर रहा है उतना दूसरा भी कर पाए, पर आमतौर पर ऐसा ही होता है ना, जब हम किसी को कहना चाहते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा, या अब मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, मैं परेशान हूँ, तो इस बात का जवाब हमें बड़ा विचित्र मिलता है। अरे वो भी तो परेशान है, दुनिया में सब परेशान है, इसने भी तो किया था, हमने भी तो किया था, हमारे साथ भी तो ऐसा हुआ है। तो कई बार आपको कोई सुनने वाला नहीं मिलता। अगर किस्मत से कोई सुनने वाला मिल जाए तो समझने वाला नहीं मिलता, क्योंकि कई बार आपकी बातों को सिर्फ सुना जाता है, समझा नहीं जाता, और आप ना उस दर्द में पड़े रहते हो, आपको लगता है कि कोई महसूस नहीं कर रहा। ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसे वाक्य आपके साथ भी प्यारी बहनों ज़रूर होते होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करा जाए? क्या हम घुट घुट के मर जाएं? क्या हम सहन करते रहें, हम बर्दाश्त करते रहें, या फिर हम खुद को ये बता दें कि भाई यही हमारी डेस्टिनी है, यही हमारी किस्मत है,

जितनी बड़ी है उतनी ही तरह के लोग हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सब्र रखें, सब्र रखने से सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कभी कुछ ठीक नहीं होगा इसलिए उम्मीदों को ख़त्म कर दो। कुछ लोग मानते हैं कि जितना सहन कर सकते हैं उतना करें, जहाँ लग रहा है कि तुमसे बर्दाश्त से बाहर है वहाँ कह दें। पर होता यह है कि आपका कहना भी नहीं बर्दाश्त होता, तो क्या किया जाए? क्योंकि हालात तो ऐसे लगभग हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। मुझे लगता है ये बहुत खूबसूरत सी एक पंक्ति है कि सांस है तब तक आस है, यानी जीवन में जब तक आखिरी सांस भी आपकी है उस आखिरी पल तक आप आस रखें, आशा रखें, उम्मीद रखें। क्योंकि जो आशाएं हैं ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। पता है कि किसी के पास कुछ नहीं रहता तभी इंसान के पास उम्मीद रहती है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस उम्मीद का दामन पकड़ करके बैठेंगे या फिर आप हारने की बात सोचेंगे। मेरा इस मामले में जो विचार है वो थोड़ा सा अलग है। मुझे लगता है कि कह देना ठीक रहता है। जब हम लंबे समय तक चीज़ों को दिल में रखते हैं और कह देने पर भी जब हमें लगे कि हमारी बातों का असर नहीं हो रहा है तो हमें वहाँ से बैक स्टेप ले लेना चाहिए या फॉरवर्ड स्टेप ले लेना चाहिए। या तो आप अपने तरीके से भरपूर कोशिश करें कि आप अपनी बात को समझा पाएं। लेकिन जब आप समझ नहीं पा रहा हो कोई, जब हमारी बात को कोई सिर्फ टिकट ग्रांटेड ले ले, तो ऐसी स्थिति में क्या आप आगे बढ़ें या पीछे हट जाएँ? वहीं ना रहें, वहीं रहने से क्या होगा ना कि जीवन मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। और आखिरी सांस तक उम्मीद का दामन पकड़ के रखें। आप नहीं जानते कि पता नहीं रात कितनी लंबी होनी है, कितनी घनी होनी है, लेकिन सुबह तो है, तो उम्मीद हमेशा रखें। देखिए कई लोग ना बहनों पूरी जिंदगी एक अलग खुशी के लिए तरस जाते हैं। कई लोगों को जीवन की शुरुआत में ही बहुत खुशियाँ मिल जाती हैं, तो जीवन के बीच वाले समय में सब कुछ चला भी जाता है, शायद जीवन के अंत में कुछ वापस आ जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर व्यक्ति जीवन में पाता भी है, खोता भी है। लेकिन अगर आपके पास आपका शरीर है, अगर आपके पास स्वास्थ्य है और अगर आप स्वस्थ हैं, तो यकीन मानिए आपने कुछ नहीं खोया है। क्योंकि हर चीज़ गई हुई वापस आ सकती है, एक तो समय वापस नहीं आएगा, एक स्वास्थ्य वापस नहीं आएगा। समय को वापस लाने की ताकत किसी में नहीं है, पर अगर स्वास्थ्य चला गया तो जो बचा हुआ समय है बहन उसमें भी हम क्या करेंगे। तो इसलिए आप अपनी मेंटल पीस का भी उतना ही ध्यान रखें जितना आप अपनी फिजिकल फिटनेस का रखते हैं, और अपने दम पे ना कोशिश करते रहें। अच्छा, तो याद है वो बचपन वाली कहानी जो हम सभी ने सुनी है, पढ़ी है, जानी है, खरगोश और कछुए वाली? कि खरगोश को बड़ा गुमान था अपनी रफ्तार पर, कछुआ तो वैसे ही खरगोश की उपहास का पात्र था। जानता था कछुआ कि मैं खरगोश को हरा नहीं सकता, खरगोश के आगे मैं जीत नहीं सकता, पर इस पर भी कछुआ कहाँ रुका, डटा रहा ना अपने छोटे छोटे से कदम, जो दुनिया के नज़र में बड़े आलस का भरा होता है ना कछुआ, दुनिया को लगता है बड़ा आलसी जीव है। उसका जो स्तर है, उसका जो दायरा है, उसमें उसने अपने अपने कदम हौले हौले भरे। और आप देखिए दंभ गर्व और अभिमान में बैठा हुआ खरगोश सोया रह गया, पीछे रह गया, पर हर पल चरवेती को आत्मसात करने वाला कछुआ आगे बढ़ गया। यही जीवन है, यही जीवन का सार है बहनों। आप कोशिश करें, करते रहें, उम्मीद हमेशा, आपसे आपकी उम्मीद कोई छीन नहीं सकता। आपकी आँखों में जब कोई देखे तो उससे वो हौसलों की चमक जरूर दिखे। और आप देखिएगा कैसे देर सवेरे सही पर आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होगी, आप ज़रूर वो खुशी पाएंगे जो आप पाना चाहती है। तो चलिए मैं डेडिकेट करती हूँ, बहुत प्यारा मीठा सा सॉन्ग आपको और हर एक बहन को, हर एक महिला को जो अपने स्तर पर संघर्ष कर रही है।

तो प्यारी बहनों, ये एक बहुत प्यारा मीठा सा गीत था फिल्म इम्तिहान का, कि जीवन भी तो हमारा हमेशा इम्तिहान लेता है, तो हमें कभी रुकना नहीं है, हारना नहीं है, हर हार के बाद खुद को यकीन दिलाना है कि बस जीत के थोड़ा सा और करीब है, अब की बार जीत जाऊंगी मैं, अब की बार मैं जीत जाऊंगा। जब तक हम खुद नहीं हारेंगे ना, हम सोचेंगे ही नहीं कि हम हार गए, तब तक दुनिया की कोई ऑफिशियल हार आपको हराया हुआ या हराया हुआ महसूस नहीं करा सकती। तो बस छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी सी बातों में जीवन का सार है। और उसी के साथ हमारे जीवन में मुश्किलात और बढ़ाने के लिए एक और चीज़ है जो अक्सर आ जाती है, वो है आंधी। हम करते हैं बारिश का इंतज़ार, लेकिन आ जाती है आंधी, और आंधी आते ही सभी बहनों का जो काम है वो इतना बढ़ जाता है ना कि क्या बताएं। घर का कोई कोना ऐसा नहीं रहता जहाँ पे रगड़ रगड़ के साफ करने के बाद में भी हमें मिट्टी ना मिले। तो हमारा काम बढ़ाने के लिए इस मौसम में जो मिट्टी आ जाती है उसे हम कैसे हटाएं? देखिए, डस्टिंग करने के अलावा आप मेक श्योर करें कि आपके घर में जो खिड़कियाँ हैं वो बंद रहें ज़्यादातर, क्योंकि अगर खिड़की बंद नहीं रहेगी, खुली रहेगी, तो ये समस्या तो मतलब ख़त्म ही नहीं होगी ना। इसके अलावा आपकी कर्टेंस को भी आप साफ़ करते रहें, आप बेडशीट को थोड़े थोड़े समय में बदलते रहें, क्योंकि उन पर डर्ट आके डस्ट आके बैठ जाती है। घर की सफाई करने का बेस्ट तरीका है कि इन दिनों जब आप पोछा लगाएं तो पोछे में आप चाहे तो कोई डिटर्जेंट पाउडर ऐड कर लें, नमक ऐड कर लें, या चाहे तो लिक्विड जो होता है अक्सर हम घर फ्लोर को क्लीन करते हैं उसे भी डालें, जिससे क्या होगा कि जो छोटे छोटे से जीव हैं वो ज़्यादा जल्दी हट जाएंगे और कम से कम हमारा घर जो है वो क्लीन रहेगा। क्योंकि हमें जो ऊपर मिट्टी दिखती है उसे तो हम साफ कर देते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं ना उसे हम कई बार साफ नहीं कर पाते हैं। तो ये छोटी सी बात है जिसका हम ख्याल रख सकते हैं। इसके अलावा घर की साफ सफाई का विशेष रूप से ख्याल रखें, क्योंकि घर की साफ सफाई एक ऐसी चीज़ है ना जो हमारे घर को एक नया रूप देती है। आपका घर चाहे पुराना हो चाहे नया हो, लेकिन अगर घर गंदा है ना तो बड़े से बड़ा घर भी व्यर्थ है अगर उस घर में सफाई नहीं है। तो सफाई करने के लिए आप एक ही दिन पूरा सब कुछ काम छोड़ के ना लग जाए, बल्कि हर दिन आप छोटा टास्क ले सकते हैं। जैसे एक दिन आप घर में जो डोर मेट्स होते हैं, पायदान होते हैं, उनको अच्छे से धो कर के दो दो पायदान को साफ करें। पांच छह पायदान हर किसी के घर में होते हैं, अगर हम दो दिन में तीन तीन पायदान भी साफ करेंगे तो हमारे पास हर हफ्ते पायदान की सफाई होगी डोर मेट्स की, जिनमें बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है। इसके अलावा बेडशीट एक ही दिन ना निकालें, हफ्ते में कोई दो दिन निकाल कर लें, जब दो दिन आपने डोर मेट्स साफ करें उनके ऑल्टरनेट डेज में आप बेडशीट साफ कर लें। किचन को पूरा इकट्ठा क्यों बिखेरना? जैसे एक दिन अगर आपने स्लैब वाली जगह अच्छे से साफ कर ली जहाँ चाय शक्कर के बर्तन रहते हैं, खाने वाले बर्तन रहते हैं, एक दिन उसको साफ कर लें, एक दिन किचन और दूसरे जो रहते हैं ना बॉक्सेस रहते हैं आपके डिब्बे रहते हैं उसको, एक दिन आपने मसालों वाली शेल्फ साफ कर ली, जब आप अलमीरा में अपने कपड़े जमा रही हो तो किसी एक दिन जहाँ आपके रोज पहनने वाले कपड़े उसको साफ कर लिया, एक दिन दूसरे कपड़ों को साफ कर लिया। तो आप अगर ऐसे ये रूल फॉलो करेंगे ना कि हर दिन आपको आपके पहनने वाले कपड़ों का, किचन का, दूसरे रूम का कोई एक कोना साफ करना है, तो आप देखिए अगर हमेशा मैनेज रहेगा, बहुत सिस्टमेटिक रहेगा। कुछ पुराने पर्स होते हैं जो हम हमेशा रखते हैं, यूज नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें किसी ज़रूरतमंद को दे दें। कुछ ऐसे ही कपड़े हैं जो दिल नहीं करता पर पहन भी नहीं पाते, उन्हें भी ज़रूरतमंद को दें। एक्स्ट्रा भरने से हमारा घर भी मैसी होता है, हमारी कबर्ड भी मैसी होती है, और ऐसे सामानों पर धूल

0: जैसे ही परतें जमती जाती हैं। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख के हम अपने घर को साफ रख सकते हैं। और चलिए, ज़िंदगी यही है कि चाहे कितनी भी मिट्टी उड़ जाए, आखिर तो उसे झाड़ना ही पड़ता है। तो कितनी भी परेशानियाँ आ जाए, उनसे भागना नहीं है, उनसे लड़ना पड़ता है। तो चलिए, जिंदगानी को लेकर के सुनते हैं एक और गीत। पर उससे पहले मैं ले चलती हूँ सुना मैं आपको ज़रूरी जानकारी।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दे।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका? गुड्डी की फीस का।
1: दिखा।
2: 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
1: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत,
2: वो भी जांच कर।
1: हो गया इंतजाम।
2: पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: और चलिए ये चलती हूँ आपको संगीत की दुनिया में गुनगुनाते हैं मीठा सा गीत।

तो प्यारी बहनों, बेहद प्यारा सा गीत था, और गीत ही क्यों बल्कि एक शब्द ऐसा लग रहा था मानो जीवन का एक अर्थ लिए है कि जो समय बीत जाता है, जो लोग चले जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं, पर जाने क्यों फिर भी इंसान की कद्र बिल्कुल नहीं होती है। आपने देखा होगा ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जो उम्र सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, पर उनकी बारी के समय कोई नहीं होता। वो बड़ी अच्छी सी शायरी है, मुझे अच्छी तरह से शायरी तो नहीं पर उसका मर्म याद है कि जब किसी को ज़रूरत पड़ी थी तो हम नंगे पांव भाग चले थे, पर हमारे समय किसी के पास समय नहीं था। तो ये जीवन है, ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी के लिए किया हो तो वापस देख के आपके लिए भी करें, क्योंकि कई बार आपको उतना नहीं मिल पाता जितना आप देते हैं। पर फिर भी यकीन माने कि जब आप जीवन में बहुत मुश्किल हालात में होंगे ना, तो वो व्यक्ति चाहे आपकी मदद करे या ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं से ईश्वर उन हालातों में आपकी सहायता ज़रूर करेगा। तो बस हमेशा विश्वास तो आपको उसी पर रखना है, उसी भगवान पर हमेशा विश्वास रखना है जो हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा। और इसी के साथ एक योजना है जो महिलाओं की सहायता करने के लिए बनाई गई है, PMMDY, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, वंदना योजना। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है जो भारत सरकार की प्रमुख मातृत्व लाभ योजना है, क्योंकि हम मानते हैं कि माँ बनना सौभाग्य की बात तो है ही, पर हर माँ के लिए कुछ करना भी बहुत सौभाग्य की बात होती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपये और दूसरे बच्चे के रूप में जब बेटी का जन्म हो तो 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो इस योजना के मुख्य लाभ कुछ ऐसे हैं कि प्रथम बच्चा है ना, यदि किसी का पहला जीवित बच्चा है तो उसके जन्म पर 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता 2 किश्तों में दी जाएगी और वो भी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आएगी। और यदि द्वितीय बच्चा दूसरा बच्चा बालिका होती है तो 6,000 रुपये की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग महिलाओं के पोषण में सुधार, ताकि वो अच्छा खाना खा पाए, गर्भावस्था में वो अपना ख्याल रख पाए, मजदूरी के नुकसान की भरपाई और प्रसव पूर्व देखभाल के लिए किया जाता है। सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसकी पात्र हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रोजगार वाली महिलाएं जो पहले से ही मातृत्व लाभ मैटरनिटी बेनिफिट्स प्राप्त कर रही हैं, वो इस योजना का के पात्र नहीं है। अब यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या आशा कार्यकर्ता के माध्यम से इस योजना के लिए मुफ्त पंजीकरण और आवेदन करवा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी और दिशा निर्देशों के लिए आप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। और मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि चाहे आप इसके पात्र ना हो, तो यदि आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं जिस योजना के तहत जैसे कुछ फ़ायदा मिल सकता है, तो कृपया इस पुण्य का काम, पुनीत कार्य अवश्य करें, मदद ज़रूर करें। मदद करने के कई रूप होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी जेब से ही कुछ निकाल कर किसी की मदद करें। कई बार किसी दुखी व्यक्ति को संबल देना भी मदद होता है, कई बार उसे सही रास्ता दिखाना भी मदद होता है। और बहनों, मुझे तो आश्चर्य होता है उन लोगों पर जिनसे सिर्फ जुबानी मदद करके भी फायदा नहीं लिया जाता। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आप उस बारे में जानकारी रखते हैं तो उसे उस दुख की घड़ी में या फिर सहायता के समय ज़रूर सही सलाह दें, ज़रूर मदद करें। बातें मेरे पास और भी है आपसे करने के लिए, पर दिल हो चला है गुनगुनाने का, सुनने का एक मीठा सा गीत। चलिए सुनते हैं, गुनगुनाते हैं प्यारा सा गीत।

तो प्यारी बहनों, ये था एक और गुजरे जमाने का गीत। कई बार जब हम पुराने जमाने के गीतों को सुनते हैं तो शायद उसका हर एक शब्द ना हम बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं। और मुझे लगता है गीत संगीत सिर्फ हमें एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के लिए तो नहीं होता, बल्कि गीत संगीत शायद जिस समय हम जो महसूस कर रहे हैं उन भावों को कहा जाए कि और ज़्यादा बेहतर रूप में हम या तो अभिव्यक्त कर पाते हैं या हमारी भावनाओं को एक कंधा ये गीत संगीत दे देते हैं। तो हमने आज के कार्यक्रम में आपसे बात की कि कैसे ताउम्र हमें उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना है, दामन नहीं छोड़ना है। मैंने आपके साथ एक बहुत अच्छी सरकारी योजना पीएम मातृवंदन योजना की जानकारी भी साझा की, और साथ ही साथ इस मौसम में जब धूल मिट्टी हमारे घर पर छा जाती है तो हम कैसे घर की सफाई की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, इस विषय पर भी मैंने अपने विचार आप सभी से साझा किए। पर घर की साफ सफाई के बाद में हमारी खुद की भी तो साफ सफाई की बात आती है। अक्सर देखते हैं कि महिलाएं काम की मारामारी के चक्कर में 2 मिनट में नहा लेती हैं। 2 मिनट में तो बहुत सारी चीज़ें बन भी नहीं पाती जिनका दावा विज्ञापनों द्वारा किया जाता है, पर महिला जरूर 2 मिनट में नहा लेती हैं। अच्छा, 2 नहीं तो 5 मिनट मान लें, अक्सर अपना ख्याल नहीं रख पाती हैं। तो ऐसे में जिस रसोई में आप पूरा दिन का एक अच्छा खासा समय गुजारती है ना, और जिस रसोई की आप रानी हैं उस रसोई में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको चमका देगी। वैसे ही कहकर आप अपने कपड़ों को और घर को चमकाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दही की। दही जो हमारे रसोई में हमेशा रहती है, खाने के तरह तरह के व्यंजनों में इसका प्रयोग भी होता है। उस दही से कई तरह के फेस मास्क और उबटन भी बनते हैं। और यकीन मानिए कि अगर हम रूटीन में इस तरफ आ जाएं, मतलब हम महंगे प्रोडक्ट्स की जगह थोड़ा बहुत अपनी किचन की चीज़ें आयुर्वेदिक चीज़ों को प्रयोग में लाना शुरू कर दें तो हमारी त्वचा बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दही से बना सबसे जो कॉमन उबटन है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं वो यही है कि आप 2 चम्मच बेसन ले लें और उसमें दही डालें। लगभग 2 चम्मच ही दही चाहिए होगी आपको, कम या ज़्यादा लगे तो आप थोड़ी सी और मिला सकते हैं। चुटकी भर हल्दी डाल दें, चंदन का पाउडर अगर घर में है तो डाल दें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी शहद डाल सकते हैं, चावल का आटा है तो थोड़ा वो भी डाल सकते हैं, और वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें और इसे थिक सा पेस्ट बना के अपने फेस पर, अपने हाथों पैरों पर लगाएं और थोड़ी देर रहने दें, लगभग 7 से 10 मिनट रहने दें। जब वो एकदम सूखने मत दें, हल्का सा गीला होते समय गीले हाथ से धीरे धीरे अपनी फेस को ना साफ करते हुए, क्लीन करते हुए, मसाज करते हुए फिर ठंडे पानी से चेहरा धो दें और गुलाब जल उसके बाद लगा लें। आप देखिए आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट हो जाएगी, आपको इंस्टेंट फील होगा। एक और उपटन है जिसमें हम दही में टमाटर का रस ले लेते हैं, चंदन का पाउडर, थोड़ा सा एलोवेरा जेल डालते हैं और उसका जो उपटन तैयार होता है उसे लगाने से हमारी टैनिंग बहुत दूर होती है।

दूर करने में दही और टमाटर का रस, जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, और अगर आप इसे 5 से 7 दिन भी रोज प्रयोग में लाएंगे तो आप देखेंगे कि टर्निंग आपकी कहीं गायब हो गई है। लाल मसूर की दाल जो होती है उसे आप हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें, उसका पाउडर बना के रख लें और उसमें दही मिला करके बस एक लेप की तरह अपने चेहरे पर लगाएं, हफ्ते में एक बार लगाएं। आप देखेंगे कि आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी, जो ओपन पोर्स हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। मुल्तानी मिट्टी और दही जिनकी तेलीय त्वचा है यानी ऑयली स्किन है उनके लिए बहुत बड़ा वरदान है। अब मुल्तानी मिट्टी में दही मिला दें, कुछ ना मिलाएं और उसे एक लेप की तरह लगाएं। थोड़ी देर के बाद में उसे पानी से मुंह धो लें। आप देखिएगा कि जहाँ छोटी छोटी फुल्कियाँ होती हैं टीन एज में स्पेशली, तब तो बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे भी हमारी जो स्किन है उसको साफ करती है, हमारा रंग जो है वो थोड़ा ठीक होता है, जो डर्ट जमी हुई है वो हटती है। तो इस तरह से दही से बने उबटन और फेस मास्क को हम यूज़ करके चमकदार त्वचा पा सकते हैं। और हर स्त्री का सपना होता है, लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी स्किन अच्छी रहे। तो चलिए, बातें बहुत हैं, सुनते हैं, गुनगुनाते हैं एक और मीठा संगीत।

तो प्यारी बहनों, ये भी था एक बहुत मीठा सा प्यारा सा गीत। मुसाफिर हूँ यारों, हम सभी जिंदगी में मुसाफिर हैं, लेकिन मुसाफिर को चलने के लिए सिर्फ कदमों में दम की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हौसले की भी ज़रूरत होती है। तो ये हौसले हमेशा हम सभी के साथ बने रहें, लेकिन हमें स्वस्थ रहने की भी ज़रूरत होती है, हमारे अंदर जान होनी चाहिए। तो आप जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। देखिए, जब आप व्यस्त रहेंगे ना, तो व्यस्त रहने के साथ साथ आपके पास फालतू की चीज़ों के लिए बिल्कुल समय नहीं होगा, और आप अपनी व्यस्तताओं में ही मस्त रहेंगे। ऐसे में मानसिक रूप से तो आप स्वस्थ होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपका रूटीन भी सेट होगा। अब देखिए, जो वर्किंग होते हैं लोग, उनका सही समय पर खाना पीना नाश्ता हो जाता है, और जिस दिन भी छुट्टी होती है, हम घर पर बैठे रहते हैं ना, उस दिन हम सोचते हैं अरे आराम से कर लेंगे काम, ये भी कर लेंगे, खा लेंगे। और होता यह है कि हमारी जो सेहत है उसका हम ज़रा भी ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो इसलिए जीवन में व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है। व्यस्तताएँ चाहे कितनी भी हो, पर जब उसके बीच में हम थोड़ा सा समय निकालते हैं खुद के लिए, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। और काम करना सबके लिए ज़रूरी इसलिए भी होता है, क्योंकि काम करने से हमारा रूटीन सेट होता है। पूरे दिन जब हम फालतू बैठे रहते हैं, तो यहाँ वहाँ की चीज़ों में हमारा दिमाग लगता रहता है। तो इसलिए आप कुछ ना कुछ अपने स्तर पर करते रहें। कोई भी काम ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। जब काम को करने से आपके घर में सुकून के चार पैसे आ रहे हो, उस काम से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो बस काम करते रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और मैं ले चलती हूँ आपको सुनाने हमारे कार्यक्रम का आखिरी पर बेहद प्यारा संगीत।

तो ये था एक प्यारा सा मीठा सा गीत, और गीत संगीत की दुनिया में जब जब हम एक डुबकी लगाते हैं तब तब हम बेहतर महसूस करते हैं। तो जब भी प्यारी सखियाँ बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत परेशान हो, चिल्ला रही हो ना, दिल दुख रहा हो, तब अच्छे से गीत गुनगुना लीजिए, कई हद तक आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। और जब आप बहुत खुश हो तब भी आपको लगे कि खुशी किसके साथ साझा करें, तो गीत गुनगुना लीजिए, क्योंकि हमारे हर मूड के हिसाब से हर तरह के गीत जाने कब से बने हुए हैं। तो कहते हैं कि संगीत जो है वो ईश्वरीय इबादत का सबसे सशक्त माध्यम होता है। इसलिए आप देखिए हर मजहब में, हर धर्म में अपनी बात ऊपर वाले तक या कहा जाए सर्वोच्च शक्तिमान जो है परमपिता परमात्मा, उन तक पहुंचाने के लिए भजन का, अरदास का, कीर्तन का, प्रे का अलग अलग रूप से इबादत के तरीके हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और एक संदेश, एक बात, एक सीख, एक कह सकते हैं आपके आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, कितनी भी परेशान क्यों ना हो, कितनी भी मतलब कितनी बड़ी परेशानी आएगी, आकर कितनी आएगी, हर स्थिति में आप बस आंखें मूंद करके खुद को यकीन दिलाएं कि ये समय भी बीत जाएगा। जब आप यकीन दिलाएंगे ना, तो यकीन मानिए वो परेशानी आपके सामने टिकली नहीं पाएगी। तो बस ये समय भी बीत जाएगा, और फिलहाल आज का समय बीत रहा है, घड़ी की सुइयां बता रही है कि मुझे आपसे विदा लेने का समय आ गया है। तो अपनी रेडियो सखी प्रीति भाटिया की तरफ से कबूल कीजिए ढेर सारा प्यार और प्यार भरा नमस्कार। अगले कार्यक्रम में मिलेंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आभार।

ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2 बजे हैं। अब आप सुनेंगे पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: one reported missing. New Delhi expresses concern over continuing attacks on commercial shipping in the region. Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding several agreements during his visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones of several development projects in Ahmedabad. Employees Provident Fund Organization introduces a six-month amnesty scheme for establishments operating private Provident Fund Trust to regularize their status. In Wimbledon, Jannik Sinner to lock horns with Alexander Zverev for men's singles title this evening. And in FIFA World Cup, England and Argentina enter semi-finals. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीन देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष

0: जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए कि कितनी बड़ी जीत है।
1: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: ईपीएफओ की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
4: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1 करोड़ 25 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए

0: रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू कोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थी।
2: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। खतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हनयू और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलादिनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम,

0: त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफर यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

0: हम सुन रहे थे राजहट फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
4: मैं और मेरी तन्हाई,
3: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो है फिल्म झनक झनक पायल बाजे से। मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। हसरत जयपुरी के हैं बोल और वसंत देसाई का है संगीत।

झुलत जब चुड़िया कनकी लहर लहर ओढ़निया लहकी झुलत झुलत जब चुड़िया कनकी झुनक झुनक जब चुड़िया खनकी लहर लहर ओढ़निया लहकी मृदंग झनका मान

0: हम सुन रहे थे परिवार फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मन्ना डे की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना या करते
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ।
1: जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी,
2: किया

तो नहीं हो गया कहीं मारे डर के, चूहा तो नहीं हो गया, कोने कोने देखा ना जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा ना जाने कहाँ खो गया।

0: जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था कि धर गया जी।
1: किसे किया दाऊं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से जल गया जी।
0: अरे जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था कि धर गया जी।

0: को जलाना बुरी बात है,
1: चोरी चोरी दिल का लगाना बुरी बात है,
0: चोरी चोरी दिल का
1: लगाना बुरी बात है,
0: दिल को लगा के पछताना बुरी बात है,
1: चोरी चोरी दिल का लगाना।

हम सुन रहे थे ये गीत बड़ा भाई फिल्म से। आशा भोसले और तलत महमूद ने इसे गाया, प्रेम सक्सेना ने इसे लिखा और नाशाद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत, जो है नया दौर फिल्म से। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और ओपी नैयर का है संगीत।

0: साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना।
1: साथी हाथ बढ़ाना,
2: साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे,
1: साथी हाथ बढ़ाना, साथी,
2: साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे।

0: माथी हाथ लगाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना,
1: साथी हाथ बढ़ाना।

0: एक से एक मिले तो खतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जल्ला बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत,
1: एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत,
0: एक से एक मिले तो इंसान बच में

0: साथी हाथ बढ़ाना।
1: और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा कार्यक्रम मनचाहे गीत।

0: बन जाएगी।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
3: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कुछ नियम मन चाहे गीत कार्यक्रम के।
0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
4: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखे, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
4: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ढप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतर्देशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें।
0: और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है? कार्यक्रम मन चाहेगी,
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सभी पसंद करते हैं इस कार्यक्रम को, इंतजार करते हैं अपनी बारी के बारे में भी कि हमारी बारी कब आएगी और हमारा गीत कब आएगा। तो चलिए चलते हैं इस गीत की तरफ जो कि है थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं, गुलजार के बोल हैं, खयाम का संगीत है। जानेंगे इस गीत के बाद कि पसंद किया है किसने।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे और हमने कहा था कि बाद में बताएंगे कि पसंद किसकी है, तो पसंद किया है कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने। ये कई बार हमारा मन होता है ना कि हमारा नाम रेडियो पर आ जाए, या कई बार मन होता है कि हमारा पसंदीदा गीत हमारे कानों में पड़ जाए, और शायद इन दोनों की पूर्ति करने का नाम ही है मनचाहे गीत। तो चलिए मनचाहे गीत में आपका मनचाहा गीत यानी आपकी पसंद में से किसी एक की पसंद का अगला गीत हम आपके को सुनाने वाले हैं। बड़ा प्यारा सा गीत है और इसे मांगा है चंडीगढ़ पंचकुला सेक्टर 9 से आशु अश्विनी गोविंद चुद परिवार ने और टोनी दीवान ने। ये बहुत सुंदर सा गीत है, आइए सुनते हैं इसे और आप अपनी फरमाइशें यानी अपनी पसंद हमारे पास यूं ही उसी डाकिया, उसी पोस्ट कार्ड, उसी लाल काले डब्बे के साथ भेज सकते हैं, ढेर सारी आशीर्वाद प्रेम और स्नेह के साथ भेजिएगा जरूर अपनी पसंद।

सौतन फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे थे। ये लता मंगेशकर ने गाया, सावन कुमार ने इसे लिखा और उषा खन्ना ने इसे संगीतबद्ध किया। इस गीत को मांगने वालों की बात, इनकी इस गीत को पसंद करने वालों के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब हम चल रहे हैं हमारे अगले गीत की तरफ। कई बार हमारे श्रोता हमें ही हैरत में डाल देते हैं और कहते हैं कि आप अपनी पसंद का कोई गीत सुना दीजिए। तो चलिए, हमारे जिन श्रोताओं ने हमसे हमारी पसंद के गीत मांगे हैं उनका नाम हम आपके सामने बता देते हैं और उसके बाद सुनवा देते हैं अपनी पसंद का एक गीत। हमारे श्रोताओं में गांव नागड़ावास तहसील मालिया या मियाना से कुछ हमारे श्रोता हैं, गुलाम रसूल राउमा, दिलावर राउमा, रियाज राउमा, इरसाद राउमा और शम्स राउमा, इन सभी ने हमारी पसंद का गीत सुनने को कहा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे मेरा साया फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ ये गीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और बड़ा प्यारा सा कार्यक्रम मनचाहे गीत, जो हम सभी पसंद करते हैं। और उसी मनचाहे गीत में एक और चिट्ठी हमारे पास आती है और बड़ा अच्छा लगता है जब ये पोस्ट कार्ड हमारे हाथों में बहुत समय के बाद वापस आते हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है। और हमारे श्रोता हैं बोरोले नगर चोपड़ा महाराष्ट्र से, उनका नाम है मच्छिंद्र पाटिल, कल्पना पाटिल। उन्होंने

0: हम सुन रहे थे मेरा साया फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ ये गीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और बड़ा प्यारा सा कार्यक्रम मनचाहे गीत, जो हम सभी पसंद करते हैं। और उसी मनचाहे गीत में एक और चिट्ठी हमारे पास आती है और बड़ा अच्छा लगता है जब ये पोस्ट कार्ड हमारे हाथों में बहुत समय के बाद वापस आते हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है। और हमारे श्रोता हैं बोरोले नगर चोपड़ा महाराष्ट्र से, उनका नाम है मच्छिंद्र पाटिल, कल्पना पाटिल। उन्होंने
1: आज घर हमने मिलन के रंग से सवारा है, तू है तो हर

हम सुन रहे थे वापस फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत हमारे अगले श्रोता की पसंद का, जो कि उन्होंने भेजा है उदयपुर से। ये खत हमारे पास आया है एक पीला पोस्ट कार्ड जिस पर बहुत मोहब्बत से लिखा गया है कि ये गीत उन्होंने हमसे मांगा है। नाम है अशरफ खान, जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और मंजू निम्मी, इन सब ने मांगा है ये गीत नाग मंदिर फिल्म से। बहुत खूबसूरत सा गीत है, आइए सुनते हैं।

खामोश जिंदगी को आवाज दे।

0: हम सुन रहे थे नाग मंदिर फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और कार्यक्रम मनचाही गीत यहीं पर समाप्त होता है। आगे भी आपकी इसी तरह के पोस्ट कार्ड और चिट्ठियों का इंतजार रहेगा हमें। आप अपनी चिट्ठियां भेजते जाइए और हमारे साथ जुड़ते जाइए मनचाहे गीत कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: मनचाहे गीत।
0: मन चाहे की
1: मन चाहेगी।

सूखा पेड़ किसी को छाया भी नहीं दे सकता, लेकिन यदि कोई स्वयं छाया बनकर सूखे पेड़ को धूप से बचाना चाहे तब उसे क्या करना चाहिए। इसी भाव भूमि पर खड़ा है ये सूखा पेड़, यानी आज का हमारा नाटक। तो आइए सुनते हैं लेखक और प्रस्तुतकर्ता लोकेंद्र शर्मा का नाटक सूखा पेड़।

0: कोई नहीं है घर में, और ये रिकॉर्ड प्लेयर, रिकॉर्ड बजाकर कहाँ चले गए सब?
1: सब नहीं गए, मैं हूँ।
0: ओहो जीजा जी, मगर आप ये अंधेरा करके क्यों बैठे हैं?
1: यूं ही बत्ती जलाने को मन नहीं किया, वैसे भी अंधेरे में संगीत अच्छा लगता है, नहीं?
0: अच्छा तो लगता है बाबा, मगर ये है गलत।
1: गलत क्यों? अरे ये बंद क्यों कर दिया?
0: गलत इसलिए श्रीमान जीजा जी, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, मैं घर आ चुकी हूँ। और बंद इसलिए किया क्योंकि आप शाम के समय सुबह का राग सुन रहे थे। देखिए देखिए खिड़की से बाहर।
1: भाई अब हम तुम्हारी तरह संगीत का हिसाब किताब तो जानते नहीं, बस कुछ सुनने को जी किया सो तुम्हारी अलमारी में से रिकॉर्ड निकाला और बजाने लगे। अब अकेले बैठे बैठे दीवार आखिर कब तक घूरे?
0: अकेले? मगर पल्लू कहाँ है?
1: कहकर तो गई थी कि क्लब जा रही है, मगर इस समय कहाँ है वो नहीं मालूम।
0: ओहो ये अच्छी छुट्टियां बिताने आए हैं आप दोनों मियां बीबी नैनीताल, एक पूरब को जाता है दूसरा पश्चिम को, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
1: समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आता मीनाक्षी, इसलिए मैंने तो समझने की कोशिश ही छोड़ दी है। पर एक बात बताओगी?
0: पूछिए।
1: कुछ चाय वाय पिलाने का प्रोग्राम हो सकता है क्या?
0: ओ श्योर श्योर, क्यों नहीं, जरा कपड़े बदल लो, दिन भर के पहनी हुई साड़ी है ना।
1: अच्छी बात है, तुम साड़ी बदल कर आओ, तब तक मैं किचन में जाकर गैस पर पानी रखता हूँ।
0: क्यों आप क्यों, ये काम आपका नहीं है, और आप तो वैसे भी मेहमान है मेरे।
1: मेहमान तो इस दुनिया में सभी हैं मीनाक्षी देवी।
0: बस बस रहने दीजिए, अब फिलॉसफी की क्लास मत शुरू कीजिए, वैसे ही दिन भर स्कूल में पढ़ा कर आ रही हूँ।
1: पढ़ा कर आ रही हो क्या, इसीलिए मुझे भी स्टूडेंट समझ कर डांटोगी?
0: नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप चुपचाप बैठिए, चाय मैं बनाऊंगी।
1: चाय भले ही तुम बनाओ मीनाक्षी, पर चुपचाप बैठने के लिए मत कहो, सारा दिन बीत गया है बिना बोले।
0: पल्लू क्या सुबह ही चली गई थी?
1: गई तो तीसरे पहर थी, मगर दो पहर तक सोई, उसके बाद घंटे भर नहाई, फिर घंटे भर सिंगार किया, फिर चली गई।
0: दिल्ली में भी ऐसे ही चलता है क्या?
1: कभी खुद ही आकर देखो ना।
0: यानी अगर खुद आकर देखना मुमकिन नहीं हो तो आप बताएंगे नहीं?
1: बताने जैसा कुछ है ही क्या।
0: सच कह रहे हैं, कुछ नहीं है।
1: देखो अब तुम चाय बनाने की बात को गोल मत करो।
0: ओह सॉरी, मैं चेंज करके ये आई
1: और मैं किचन में ये गया।
0: जाइए मगर कीजिए ना कुछ। नहीं
1: नहीं करूंगा बाबा, मगर वहां बैठकर तुम्हें चाय बनाते हुए

0: देख तो सकता हूँ।
1: ओहो, मुझे देखने का प्रोग्राम है, तब तो जरा बन सवर कर आना पड़ेगा।
0: जैसे भी जाइए, अब आप जल्दी से जाइए और खटक से आइए।
2: पल्लू, क्या तुम सचमुच खाना नहीं खाओगे?
1: अरे कहा ना बाबा, मिसेस सिन्हा ने मुझे आज इतना इतना खिला दिया है कि लगता है कल तक भूख ही नहीं लगने वाली।
2: हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
1: अच्छा,
2: मालूम है आज जीजा जी ने अपने हाथों से आलू के पराठे बनाए हैं।
1: ओहो, तो फिर अभी तक खाए क्यों नहीं?
2: तुम्हारा इंतजार कर रहे थे ना।
1: लेकिन प्रभाकर को तो मालूम था कि आज मेरा डिनर मिसेस सिन्हा के साथ है।
2: ये मिसेस सिन्हा से बड़ी जल्दी दोस्ती कर ली तुमने। अभी 10 दिन ही तो हुए हैं तुम्हें नैनीताल आए हुए।
1: अरे 10 दिन तो बहुत है यार, दोस्ती तो 10 मिनट में हो सकती है।
2: कभी कभी तो 10 बरस में भी नहीं होती पल्लू।
1: हाँ, नहीं होनी हो तो 10 जन्म तक नहीं होती। पर तू जाना, जाके पराठे खा ले, मैं तो जरा देर रजाई में बैठूंगी। हाथ पांव तो सुन हुए जा रहे हैं। बाप रे बाप, तेरी नैनीताल की रातें तो बहुत ही ठंडी हैं यार।
2: कॉफी पियोगी क्या?
1: कॉफी तो ऐसा था, पहले तुम लोग जाके खाना खा लो।
2: मेरी एक बात मानिए जीजा जी।
0: कौन सी?
2: आप एक पराठे की दुकान खोल लीजिए, गर्मा गर्म आलू के पराठे। मजा आ गया।
0: अच्छे लगे तुम्हें?
2: कह तो रही हूँ, मैं आपकी दुकान की परमानेंट ग्राहक बनने को तैयार हूँ।
0: ना बाबा ना, तुम जैसी पेटू को ग्राहक बनाकर दिवाला नहीं निकालना मुझे अपनी दुकान का।
2: क्यों क्यों क्यों?
0: क्योंकि तुम खाओगी उधार और मेरा हो जाएगा बंटा ढार।
2: बंटा ढार तो लगता है आज अपना हो गया है। ओ, इतना खा लिया है कि अब उठा भी नहीं जा रहा।
0: तुम मत उठो ना, बैठी रहो, कुछ देर और बातें करते हैं।
2: यहाँ डाइनिंग टेबल पर? मालूम है क्या टाइम हो गया है? 9 बज चुके हैं रात के, और सर्दी के मारे कुल्फी जमी जा रही है। चलकर बिस्तर में सोइए, पल्लू आपका इंतजार कर रही है।
0: करने दो, मैं भी तो करता हूँ रोज रोज उसका इंतजार।
2: 10 दिन हुए हैं आपको नैनीताल आए हुए, और इन 10 दिनों में एक दिन भी आप दोनों को नॉर्मल नहीं देखा। इतने खींचे खींचे, आखिर बात क्या है?
0: बात क्या है यही तो मेरी समझ में नहीं आता मीनाक्षी, क्या आखिर बात क्या है? कभी कभी जिंदगी में बात बस इतनी ही होती है कि कोई बात नहीं होती। नो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बना रहे तो बात भी बनी रहती है, लेकिन
2: क्या हुआ? कुछ कह रहे थे आप, लेकिन क्या?
0: इस लेकिन के आगे कुछ नहीं है मीनाक्षी। जिंदगी में आदमी बहुत कुछ चाहता है, पर उसके रास्ते में जगह जगह लेकिन खड़े होते हैं। सारी कामनाएं एक लेकिन तक आकर रुक जाती हैं। मैंने भी शादीशुदा जिंदगी के बहुत मीठे मीठे सपने देखे थे। सपनों में प्यार के बादलों पर उड़ा था, रोमांस की हवाओं में तैरा था, लेकिन लेकिन सपना तो बंद आंखों से देखा जाता है ना, आंखें खोलने पर तो कमबख्त जिंदगी नजर आ जाती है।

0: जीजा जी, अरे कहाँ हैं?
1: मैं यहाँ हूँ मीनाक्षी, छत पर।
0: ओ ऊपर, मैं आपके लिए कॉफी लाई थी।
1: यहाँ ऊपर ही ले आओ, आज की धूप बहुत मजेदार लग रही है।
0: वो तो होगा ही, आज संडे जो है, संडे तो सूरज का दिन होता ही है।
1: संडे छुट्टी का दिन भी तो होता है, जिसकी बदौलत तुम दिन भर घर में ही होती हो।
0: लेकिन मैं दिन भर घर में हूँ, क्या इसलिए आप ऊपर छत पर आ गए?
1: वो बात नहीं है, एक तो धूप में अच्छा लग रहा था, दूसरे तुम्हारे घर की इस छोटी सी छत पर आकर लगता है जैसे यहां से सारी दुनिया दिखाई देती है। देखो ना, दूर दूर तक बिछी चांदी के माथे वाली पहाड़ियां, पहाड़ियों से गलबैया डालकर लेटे रास्ते, और ऊपर इस कोने से उस

0: कोने तक तना हुआ नीला कच्चा आसमान। सच मीनाक्षी, इतना बड़ा आसमान मैंने कभी नहीं देखा। शहर के आसमान को तो इमारतों की ऊंचाइयां खा जाती हैं, लेकिन यहां बैठकर जी करता है कि इस ढेर सारे आसमान की ताजी हवा को तलछट तक पी जाऊं।
1: लेकिन श्रीमान जीजा जी, फिलहाल आपको ये कॉफी पीनी है।
2: कॉफी? हाँ हाँ हाँ, लाओ लाओ लाओ भाई। इस कुनमुनी धूप में गुनगुनी कॉफी जानती हो कैसी लगती है?
1: जैसे रजाई ओढ़कर पानी के टब में बैठे हो। भाई हंसो मत, अपन तो पहले ही कहते हैं कि कविता बाजी में बात करना अपने बस का नहीं। आपकी तरह कोई कवि या फिलोसोफर तो है नहीं हम, बस सीधे साधे म्यूजिक टीचर हैं। सरगम चाहे सीधी गवा लो चाहे उल्टी, वही सात सुर आते हैं अपन को। तो
0: सात सुर तो बहुत हो गए मीनाक्षी, जीवन को सुरीला बनाने के लिए तो एक सुर का आना ही काफी है।
1: सुर का आना नहीं, सुर का मिलना।
0: हाँ, शायद ठीक कहती हो मेरी।

0: इसे सुनना मेरे लिए गलत हो।
1: तुम मुझे नाम लेकर क्यों नहीं बुलाती?
0: यही कहना था?
1: नहीं, कहना तो पता नहीं क्या था, लेकिन ये बताओ, अपने मेहमान को नैनीताल की सैर नहीं करवाओगे?
0: जी,
1: मेरा मतलब है आज तुम्हारी छुट्टी है, मौसम भी अच्छा है, कहीं घूमने नहीं चल सकते क्या?
0: एक शर्त पर, कि आप मुझसे ऐसी वैसी कोई बात नहीं करेंगे।
1: इस शर्त पर नहीं करूंगा कि तुम मुझसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं पूछोगे।
0: जाने दीजिए, शर्तों का बंधन कोई अच्छी बात थोड़ी है।

0: ओहो, बोर कर दिया आपने तो।
1: क्यों भाई?
0: पिछले घंटे भर से बस यही पूछे जा रहे हैं, इस पेड़ का नाम क्या है, इस फूल को क्या कहते हैं, ये किस चिड़िया की आवाज है, ये रास्ता कहाँ जाता है, इसके अलावा जैसे करने को कोई बात ही नहीं है।
1: है क्यों नहीं, चलो तुम्हारी बात करते हैं।
0: मेरी? मेरी कौन सी बात?
1: यही कि जब तुम यूं तुनकती हो तो।
0: तुनकती मतलब?
1: हाँ मतलब जब तुम यूं किसी बात पर चिढ़कर नाक सिकोड़ती हो
0: तो
1: बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे तुम पहाड़न हो।
0: पहाड़न हो, ये क्या बात हुई? मैं तो हूं ही पहाड़न, पहाड़ में पैदा हुई, पहाड़ में पली बढ़ी और पहाड़ में ही एक दिन देखना मरूंगी भी।
1: अरे भाई अब देखो ये मरने वरने की बात मत करो।
0: अच्छा बाबा नहीं करूंगी, तो भी रहूंगी तो पहाड़न ही, आपकी तरह पहाड़ थोड़े ही हो जाऊंगी।
1: पहाड़? मैं तुम्हें पहाड़ जैसा दिखता हूँ?
0: हाँ ज्वालामुखी पहाड़।
1: ज्वालामुखी पहाड़
0: और नहीं तो क्या। जैसे ज्वालामुखी पहाड़ को ऊपर से देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके भीतर कितनी आग है। आपका भी वही हाल है, भला इस तरह आपको हंसता देखकर कौन कहेगा।
1: कहो ना, रुक क्यों गई?
0: कुछ नहीं, ऐसे ही पागल हूं मैं भी।
1: नहीं मीनाक्षी, पागल नहीं हो तुम, तुम एक बेहद सेंसिटिव लड़की हो। ये पानी की धारा देखती हो, बिल्कुल इस पानी जैसी हो तुम, एकदम स्वच्छ निर्मल। कुछ बोलोगी नहीं।
0: शाम होने वाली है।
1: हाँ, वो नीचे अंधेरा धीरे धीरे सिर उठा रहा है
0: और ऊपर ऊपर आसमान में भी तो देखिए कितनी रोशनी है, जैसे किसी ने सोने की पुताई करती हो।
1: मगर ये केवल थोड़ी ही देर, अभी देखते ही देखते सब कालिख में बदल जाएगा।
0: हमेशा बुझी बुझी निराशा फैलाने वाली नेगेटिव बातें ही करें, ये क्या जरूरी है?
1: कतई नहीं, और खास तौर पर जब तुम साथ हो तब तो बिल्कुल नहीं।
0: तो फिर?
1: तुम्हें ने कहा था कि ज्वालामुखी पहाड़ हूं मैं क्या करूं, कभी कभी अनजाने में ही भीतर का लावा फूट पड़ता है।
0: अच्छा पहाड़ साहब, अब इधर से आइए।
1: इधर? मगर पहाड़ जी, ये रास्ता तो लगता है कि किसी भूतिया हवेली की तरफ जाता है।
0: जी नहीं, ये शॉर्टकट है मंदिर का।
1: मंदिर?
0: हाँ देवी का मंदिर। आइए।

0: कितना अच्छा लगता है ना, यहाँ इस समय रोज इसी तरह पूजा होती है। ये मंत्रों का स्वर, लोबान का धुआं, मंदिर का आंगन, सब कितना अच्छा लगता है, नहीं?
1: मुझे नहीं लगता।
0: अरे क्यों?
1: देवी देवताओं पर मेरा कतई विश्वास नहीं है।
0: एकदम नास्तिक है।
1: टोटल। इन पत्थर की मूर्तों की जगह मैं इंसानों में ज्यादा विश्वास करता हूँ।
0: धीरे बोलो, अगर देवी ने सुन लिया तो नाराज हो जाएंगी।
1: फिर क्या करेगी नाराज होकर?
0: वो जो देवी बैठी है ना घर में, पल्लू देवी, उसे आपके खिलाफ भड़का कर चंडी देवी बना देंगी। क्यों हंसे क्यों?
1: भाई पल्लवी को तुमने पल्लू देवी अच्छा कहा।

0: क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो?
1: कुछ नहीं, आप हंसते हैं तो अच्छा लगता है।
0: अरे हंस लेते हैं हम भी कभी कभी, जब तुम जैसा कोई साथ हो तो।
1: वो नीचे किसी की शादी हो रही है।
0: हाँ, घोड़े पर दुल्हन बैठी हुई है।
1: घोड़े पर नहीं, घोड़ी पर। और दुल्हन नहीं, दूल्हा। जिसे आप घूंघट समझ रहे हैं वो सेहरा है जनाब।
0: अच्छा भाई, वो इतनी दूर है ना, तो मैं समझा के। और क्या है कि अंधेरा है ना, तो पेट्रोमैक्स की रोशनी में कुछ ठीक से। वैसे एक सच्ची बात बताऊंगी तुम्हें, मुझे शादी ब्याह के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए ये सेहरा और ये।
1: हद हो गई, आखिर आपने भी तो शादी की थी। घोड़ी पर बैठे थे या मोटर में?
0: कुछ और बात करो मीनाक्षी।
1: सुबह से देख रही हूँ, जब भी आपकी और पल्लवी की शादी के बारे में कोई बात शुरू करती हूँ आप टाल जाते हैं। आखिर बात क्या है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
0: इतने दिनों से देख तो रही हो, अब भी क्या कुछ कहने पर ही समझोगी?
1: समझना नहीं, जानना चाहती हूँ।
0: जानकर क्या करोगी, और उससे होगा भी क्या?
1: होगा भी क्या, शायद ठीक सोचते हैं आप, मेरे किए क्या हो सकता है। और शायद इसीलिए आपकी शादी के बारे में सवाल करने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं।
0: नहीं नहीं, वो बात नहीं है, आखिर तुम बहन हो पल्लवी की।
1: हाँ बहन हूँ, मगर मौसेरी। पल्लवी मेरी मौसी की लड़की है।
0: तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें सगा मानता हूँ।
1: सगा? सगा मानते हैं किस रिश्ते से?
0: रिश्तों के क्या नाम होना जरूरी है मीनाक्षी?
1: पता नहीं।
0: कहने को पल्लवी मेरी पत्नी है, पर पत्नी क्या ऐसी होती है? सच पूछो तो मेरी और पल्लवी की शादी दो परिवारों के बीच हुआ एक सामाजिक समझौता है। शादी के बावजूद पल्लवी ने अपनी जिंदगी में कुछ भी खोया नहीं, और मैंने शादी के बावजूद अपनी जिंदगी में कुछ भी पाया नहीं। इसे रिश्ता कौन कहेगा? तुम तो पल्लवी को शुरू से जानती हो ना मीनाक्षी।
1: नहीं तो, आपकी शादी से पहले शायद एक दो बार ही मुलाकात हुई थी। मैं तो बचपन से यहाँ नैनीताल में ही पली बढ़ी, और पल्लवी दिल्ली में रहती थी। बस कभी कभार मौसी के साथ यहाँ घूमने आती थी।
0: लेकिन पल्लवी तो कहती है कि उसकी और तुम्हारी खूब जमती थी।
1: जमती थी? पता नहीं।
0: देखो मीनाक्षी, तुमने पल्लवी के और मेरे बारे में पूछा है, तो एक बात मैं भी पूछूंगा।
1: पूछिए।
0: तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की?
1: जी।
0: अपना सवाल दोहराऊं मैं?
1: बर्फ का पहाड़ बंजर होता है प्रभाकर बाबू, बर्फ में फूल नहीं खिलते।
0: अगर बर्फ पिघल कर धरती में जज्ब हो जाए तो?
1: रोज रोज कहाँ होता है ऐसा। बस एक बार हुआ था मेरे साथ भी, कई बरस हो गए उस बात को। अब तो लगता है जैसे पिछले जन्म की बात है। तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। पल्लवी गर्मियों की छुट्टी में नैनीताल आई हुई थी, और उस बार वो अकेले आई थी।

0: वाह वाह वाह, क्या गाती है साले तू। हाय सच्ची मीना, तेरा गाना सुनकर तो साले दिल का इना मीना डिका हो जाता है।
1: रहने दे रहने दे, झूठी तारीफ करने से जबान कट जाती है।
0: ओले, ये झूठी तारीफ है? मुझे अगर थोड़ा सा भी गाना आता ना तो हाय हाय हाय आशिकों की लाइन लगा देती।
1: छी, ऐसी बातें करती है?
0: अरे तू क्या जाने। हाय हाय हाय, सच कहो मीनाक्षी, अगर तो ये चश्मा ना लगाती और तेरे चेहरे पर ये दो चार चेचक वाले दाग नहीं होते ना, तो अपनी सुरीली आवाज की रस्सी में 20 लड़के बांध सकते थे तो।
1: लगता है तुमने कई बांध रखे।
0: अरे अपन को साला गाना आता ही कहाँ है मीनाक्षी।

0: नहीं आता तो सीख ले।
1: नॉट ए बैड आइडिया। अच्छा चल ठीक है, इधर ला अपना सितार।
0: सितार नहीं, तानपुरा।
1: अरे हाँ हाँ यार, वो एक ही बात है, सितार कहो या तानपुरा, पर वो किधर गई मेरी सरगम वाली वो कॉपी, पता नहीं कहाँ रख देती है। ये रही। अब बोल
0: बोल ना यार, कौन सा राग गाओ।
1: अरे
0: बोल
1: नहीं, ना
0: नहीं नहीं ये कॉपी मुझे दे।
1: हाँ मेरा राग भी तो सुन लेना कॉपी में से। अरे छुपी रुस्तम, कॉपी में ये फोटो किसका है?
0: मैं कह रही हूँ दे दे ये फोटो मुझे।
1: तो ये बात है बच्चों, इस फोटो का जादू है। हाय हाय, मैं भी तो कहूँ गले में से ऐसे ऐसे मीठे सुर कैसे फूट रहे हैं।
0: मैं कहती हूँ पल्लू फोटो मुझे दे दे।
1: अरे देती हूँ बाबा, देती हूँ ना, देख लेता कोई अच्छी तरह से।
0: बस हो गया, अब दे दे।
1: हो गया, ये तो मैं समझ गई जाने मन, पर ये बता मेरी जान कब हुआ?
0: देख पल्लू, तू
1: कब से चल रहा है तेरा ये मामला?
0: 3-4 महीने से।
1: अच्छा तो ये भी तो बता दे, कौन है ये तेरा बांका?
0: लड़का है।
1: अरे हाँ हाँ वो तो मैं भी देख रही हूँ, मगर इसका नाम क्या है?
0: शेखर।
1: शेखर तेरी क्लास में पढ़ता है?
0: सीनियर है।
1: ये भी गाना गाता है क्या?
0: नहीं, सुनने का शौकीन है।
1: हाय भाई, है तो बहुत शानदार, पर असलियत में भी इतना खूबसूरत है कि सिर्फ फोटो में ही दिख रहा है?
0: देख कर बताना।
1: अरे यार यही तो मैं पूछ रही हूँ, कब मिलवाएगी?
0: शाम को।
1: अच्छा।

0: कल तुमने अपनी जिस बहन से मिलवाया था, क्या नाम है उसका?
1: पल्लवी।
0: हाँ, पल्लवी। कितना नया नाम है, नहीं?
1: नहीं, नया काहे को, हिस्टोरिकल है, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने का। जरा एक मिनट ठहरो ना।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: देखो ना, यहाँ से नीचे झील कितनी सुंदर लग रही है, जैसे चांदी का फर्श हो।
0: मालूम है, अगर यहाँ से पाँव फिसल गया तो इस चांदी के फर्श तक पहुँचते पहुँचते हड्डी पसली के कितने टुकड़े होंगे।
1: अगर तुम साथ रहो तो फिर हो जाए टुकड़े, किसे परवाह है।
0: जाने दो, आगे चलते हैं।
1: ओके।
0: अच्छा ये बताओ कि अब वो यही रहेगी?
1: कौन?
0: अरे वही तुम्हारी हिस्टोरिकल बहन पल्लवी।
1: यहाँ? यहाँ क्यों रहेगी, वो तो दिल्ली में पढ़ती है ना, यहाँ तो सिर्फ छुट्टियां बिताने आई है।
0: मतलब महीने भर रहेगी?
1: हाँ महीने भर तो जरूर रहेगी, मगर क्यों?
0: नहीं ऐसे ही, बहुत सुंदर है तुम्हारी बहन, बिल्कुल जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं से निकल कर आई हो।
1: सगी थोड़े ही है, मेरी मौसी की लड़की है।
0: आई नो, सगी होती तो तुम्हारी सूरतें इतनी अलग अलग थोड़ी होती। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये बालों के जूड़ी से क्या बना लेती हो, पल्लवी की तरफ पोनीटेल क्यों नहीं करती?
1: तुम्हें अच्छी लगती है तो अब किया करूंगी।
0: कल झील में बोटिंग के लिए चले?
1: कल बोटिंग? लेकिन पल्लवी आई हुई है ना।
0: तो क्या हुआ, उसे भी साथ ले लेंगे, एक से भले तो दो से भले तीन।
2: अरे मीनू की बच्ची, अभी तक किताबों में घुसे हुए, कब तक पढ़ती रहेगी? तुझे मालूम है ना कल मैं दिल्ली वापस जाने वाली हूँ।
1: वो तो ठीक है पल्लू, मगर इम्तिहान भी तो सर पर है।
2: इसीलिए आजकल किताबों का कीड़ा बनी हुई है, बाहर आना जाना सब बंद।
1: तेरे पास भी तो फुर्सत नहीं है मेरे से बात करने की।
2: अरे यार मैं तो आई ही मस्ती मारने हूँ। और फिर अपना तो ये है कि मौज कर लो जितने कर सकते हो, ये दिन कोई साले लौट कर तो आने वाले है नहीं।
1: अपना अपना नजरिया है, मैं तो समझती हूँ आने वाले कल को खुशनुमा बनाना हो तो आज थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है।
2: अरे रहने दे यार, अपने ये फिलोसफी आनी तो, भूख आज लगी है और तू कहती है रोटी कल खाएंगे।
1: तुझे क्या पता, एक दिन उपवास रखो तो अगले दिन खाना खाने में ज्यादा मजा आता है।
2: छोड़ना यार ये बुढ़ियों वाली व्रत उपवास की बातें, आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग। इन्हीं बातों ने ना तुझे मरगिल्ली बना रखा है। देख देख देख, मेरे जैसे जिंदा दिल होती ना तो किताबों में आंखें गढ़ा कर चश्मे का नंबर बढ़ाने के बजाय रोज शाम को किसी बॉयफ्रेंड के साथ डिस्को में डांस करते हुए नजर आती।
1: ना बाबा ना, ये सब ना मुझे अच्छा लगता है और ना ही शेखर को।
2: शेखर को? तो क्या तू अभी तक शेखर के नाम की माला जप रही है?
1: वो हंसी आज भी जैसे मेरे कानों में गूंजती है प्रभाकर बाबू, जैसे वो हंसी पल्लवी की नहीं मेरी तकदीर की थी, जो किसी श्राप की तरह मेरी जिंदगी पर छा गई। कितनी मूर्ख थी मैं, जो आईने में अपनी सूरत देखकर भी किस्मत पर शक नहीं हुआ, मुझे इतना भी ख्याल नहीं आया कि रेगिस्तान में सैर करने कोई नहीं आता, सब अजंता एलोरा जाना चाहते हैं।
3: सब नहीं मीनाक्षी, सिर्फ वही जो शेखर होते हैं, और शेखर हर कोई नहीं होता।
1: क्या पता कौन कैसा है, ये परखने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। बाद में एक अजीब सा डर था जिसे सीने में दबाए जिंदगी की डगर चुपचाप चलते चलते 35 बरस पार कर गई हूं, मगर पल्लवी की वो हंसी जैसे आज भी किसी प्रेत की तरह दोनों हाथों से मेरी गर्दन दबाए हुए है।
3: मेरी तरफ देखो मीनाक्षी, मेरी आंखों में देखो, क्या इन आंखों में तुम्हें कहीं झूठ की छाया दिखाई देती है?
1: कहना क्या चाहते हो?
3: दिल की पूरी सच्चाई से मैं ये कहना चाहता हूं मीनाक्षी कि तुम बहुत सुंदर हो।
1: प्रभाकर,
3: एक दिन पल्लवी ने तुमसे शेखर को छीना था क्योंकि शेखर की नजरों में पल्लवी ज्यादा सुंदर थी और आज उसी पल्लवी का पति तुम्हारी सुंदरता के आगे बिकने को तैयार है।
1: सूखे पेड़ से तो किसी को छांव भी नहीं मिलती प्रभाकर बाबू।
3: मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूं मीनाक्षी, मैं तो चाहता हूं कि अपमान के उस प्रेत से तुम्हें मुक्त कर दूं जिसने तुम्हारी गर्दन दबाई हुई है।
1: नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अपमान के जिस शहर ने मुझे जीवन भर तड़पाया है उसे मैं पल्लवी के गले में कैसे उड़ेल दूं? पल्लवी आखिर मेरी बहन है। इस शहर को तो मैं किसी पेड़ की जड़ों में भी नहीं डाल सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। टूट होकर जीने का दर्द मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा, कौन जानेगा।

0: सूखा पेड़। अभी आपने ये नाटक सुना। लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे लोकेंद्र शर्मा।
1: ये है विविध भारती।
2: उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी।
1: पूरे एक दौर की हम बात कर रहे हैं, सदाशिव अमरापुरकर जी की पूरी यात्रा, जहां पर वो एकदम विलेन के रोल से कॉमेडी रोल्स की तरफ चले आते हैं, और फिर वो मराठी सिनेमा में अपनी पसंद का अलग अलग तरह का काम कर रहे होते हैं। इतने बरस हो गए थे सिनेमा में काम करते हुए, और कई बार एक एक जैसा काम भी हो रहा था। क्या ये वो दौर था 90s का, जब उनके भीतर एक तरह का असंतोष आना शुरू हुआ था?
2: डेफिनेटली, क्योंकि ये किसी भी कलाकार के लिए एक ही तरह का काम करना ये एक बहुत बड़ी शिक्षा होती है। मराठी में शिक्षा कहते हैं, उसका मतलब है पनिशमेंट,
1: सजा।
2: सजा किसी भी संवेदनशील कलाकार के लिए ये एक सजा होती है। और रेस्टलेसनेस तो डेफिनेटली उनमें आ ही रहा था, पर जैसा मैंने कहा कि उन्होंने ये मान लिया था कि मुझे मेरा घर, मेरे परिवार के लिए अगर पैसे कमाने हैं तो मुझे ये करना है। ये उन्होंने एक पॉइंट पे मान लिया था और उन्होंने वो निभाया। लेकिन जैसे हमने बात की कि आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्में करते वक्त वो वासु पुरुष जोगी जैसी फिल्में कर रहे थे, वैसे ही आउट एंड आउट कमर्शियल काम करते वक्त, विलनी का काम करते वक्त भी वो सामाजिक कामों में खुद को बहुत बिजी रखते थे। तो उनकी लाइफ में हमेशा ही दो ट्रैक चलते थे, हालांकि तीन ट्रैक भी कह सकते हो फैमिली का अगर ट्रैक पकड़ा जाए तो, वरना करियर वाइज अगर देखा जाए तो दो ट्रैक्स उनके चलते थे। एक तो जो कमर्शियल काम वो करते थे वो, और दूसरा जो सामाजिक काम करते थे वो। उन्होंने कभी सामाजिक काम की तरफ करियर के तौर पर नहीं देखा, उन्होंने हमेशा उसे एक जिम्मेदारी, एक कलाकार, और अगर मैं आज कुछ हूं, अगर मैं जो कहता हूं, मेरे कहने को अगर कुछ वजन है तो उसका उपयोग मैं किस लिए करता हूं, इसका उन्हें हमेशा ख्याल रहता था और वो करते थे। इसलिए वो सामाजिक कृतज्ञता निधि की हमने बात की, वो उनका चल रहा था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में भी वो कार्यरत थे। मुक्तांगन डी एडिक्शन सेंटर जो है पूना में, जो पहला डी एडिक्शन सेंटर महाराष्ट्र में बना, उसमें भी वो इन्वॉल्व थे, बिकॉज डॉक्टर अनिल अवचट और सुनंदा अवचट उनके साथ उन्होंने वो किया था। डॉक्टर आनंद नाडकर्णी के साथ इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ, सो मेंटल हेल्थ में भी वो काम कर रहे थे। फिर अहमदनगर में रेड लाइट एरिया में स्नेहालय करके एक संस्था है, आज भी है और बहुत अच्छा काम कर रही है, कि जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स है उनके बच्चों के लिए वो संस्था ने काम करने से शुरुआत की, और आज के दौर में लगभग 1,000-1,500 बच्चों का, जिनका शोषण अलग अलग तरीके से होता है, जो वायलेंस को फेस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी वो संस्था काम करती है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो अहमदनगर के एक युवक ने जब ये डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, एक ब्राह्मण युवक ने, ये कहना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये अगेन 90s का दौर है जब जाति व्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी, और जैसा मैंने कहा कि अहमदनगर एक बहुत ही पैट्रियार्कल सिटी है, आज भी है। तो उस वक्त एक ब्राह्मण लड़के ने ऐसी बस्ती में जाना और वहां की औरतों के साथ काम करना या उनसे बातचीत करना, ये बहुत ही खराब नजरिए से देखा जाता था। पर जब गिरीश वो काम कर रहे थे और पापा जब भी नगर जाते थे, तो ये जो सारे काम करने वाले लड़के लड़कियां थे, ये पापा को मिलने आते थे कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब गिरीश आया मिलने, तब गिरीश ने बताया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, और गिरीश पापा के कॉलेज प्रोफेसर के बेटे थे, तो इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तब पापा ने ये स्टेटमेंट दी हुई थी अहमदनगर के लोकल न्यूज़पेपर्स में कि देखो, ये जो औरतें हैं ये भी हमारे समाज का ही एक घटक है, इसलिए इनके लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है। और फिर अहमदनगर में लोगों का नजरिया धीरे धीरे धीरे धीरे बदलने लगा। फिर पापा स्नेहालय के ट्रस्टी भी बने। फिर कुछ दिनों के बाद वो वहां से निकल गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब संस्था अगर खुद से चल रही है तो मेरे होने की जरूरत नहीं है। पर वहां पर आमिर खान को ले जाना हो, सत्यमेव जयते में बिल्कुल पहले एपिसोड में स्नेहालय की केस स्टडी है,
1: बिल्कुल,
2: तो आमिर खान को ले जाना हो या श्याम बाबू को ले जाना हो, ऐसे बड़े बड़े लोगों को उस वक्त वो अहमदनगर लेके जाते थे। ये देखो ये ऐसे काम कर रहे हैं बच्चे, इनको ऐसे हम लोगों ने मदद करनी चाहिए, इस तरह से उनका काम चलता था। तो हालांकि कलाकार के तौर पर थोड़े से अनसेटल्ड वो हो रहे थे, क्योंकि उनकी जो रेंज थी, जिस तरह काम करने की उनकी क्षमता थी, उतना काम उन्हें उस वक्त नहीं मिल रहा था, उतनी रेंज का काम नहीं मिल रहा था, तो वो था। लेकिन वो इन कामों में खुद को बहुत ज्यादा बिजी रख रहे थे, तो इसलिए वो जो एक डिससैटिस्फैक्शन था, वो सैटिस्फैक्शन में इस काम की वजह से वो बदल पा रहे थे।
1: बिल्कुल, इंपॉर्टेंट बातें हुई इस पूरे सेक्शन में, और मुझे लगता है कि अब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, तो कौन सा गाना होगा?
2: पापा का एक बहुत ही पसंदीदा गाना था, इतनी शक्ति हमें देना दाता।
1: वाह, अंकुश फिल्म का ये गाना। और यहाँ मैं दो क्रेडिट जरूरी तौर पर याद करना चाहूंगा, इसे अभिलाष जी ने लिखा था और कुलदीप सिंह का संगीत।
2: यस,
1: ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत मजेदार बातें हुई हैं और चूंकि मेरा काम इन बातों को एक दिशा देना है, मुझे पीछे का एक सूत्र याद है जो हम छोड़ के चले आए थे कि इसकी बात आगे करेंगे, डॉक्टर श्रीराम लागू और सदाशिव अमरापुरकर के रिश्ते की बात।
1: हाँ जी, डॉक्टर लागू अब कैसे बताऊं मैं, जैसा मैंने मेरे शो में भी कहा हुआ है, उन्होंने कन्यादान प्ले जो था वो एक साथ किया,
0: तेंदुलकर वाला,
1: और उसमें डॉक्टर लागू को निर्देशित किया था पापा ने।
0: ये बहुत बड़ी बात मानी जानी चाहिए क्योंकि डॉक्टर लागू एक दर्जे के कलाकार थे और उनको डायरेक्ट करना कोई आसान,
1: और उन्होंने मानना कि ये युवक है और ये मुझे डायरेक्ट करेगा, ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। तो उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर लागू ऑलरेडी सामाजिक कामों में काफी बिजी थे और काफी इन्वॉल्व थे, तो ये जो बात है ना जो पापा के अंदर थी, पर उस बात को हवा देना, उस चिंगारी को हवा देने का काम डॉक्टर लागू और निरुभव ने किया कि हम कलाकार हैं और हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हमें निभानी है। तो इस तरह से पूरी तरह से उन्हें सामाजिक विचारधारा में और सामाजिक कामों में खींचने का काम डॉक्टर लागू ने किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर लागू अगर नहीं होते तो शायद हमारा परिवार फिर से अहमदनगर, मतलब अहिल्यानगर हम जैसे कहते हैं, फिर से अहिल्यानगर जा चुका होता। क्यों? क्योंकि जब हमें वो किराए का घर छोड़ना पड़ा और पापा ने सीएम के पास जाकर तेंदुलकर साहब ने उन्हें चिट्ठी दी थी, तो म्हाड़ा का घर भी अगर लेना हो तो आपको डिपॉजिट भरना पड़ता है, और उस समय इतना पैसा नहीं था पापा के पास कि हम घर ले पाए या डिपॉजिट भर पाए। तब पापा ने जाकर डॉक्टर लागू को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने 2 मिनट के अंदर लाके उन्हें वो पैसे दे दिए थे और वो फिर वो डिपॉजिट भर पाए और हमारा घर हो पाया। ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन डॉक्टर लागू की हमारे परिवार के जीवन में रही है। और दूसरी एक जो बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो डॉक्टर लागू की वजह से पापा करने लगे और कर पाए, वो बात ये थी कि जो भी तुम कहना चाहते हो वो ठीक ठीक कहो। अभी ये हुआ है कि हम लोग काफी डिप्लोमेटिक हो गए हैं। एक समय था जब कलाकार पॉलिटिशियंस सब लोग एक साथ बैठ कर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाया करते थे, आज वो दौर नहीं रहा। तो वो समय था जब डॉक्टर लागू ने पापा को बताया था कि तुम कलाकार हो, तुम नेशनल लेवल पर काम कर रहे हो, तुम काम बहुत करोगे, अपनी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको सबको खुश रखना होता है, पर ये कभी मत भूलना कि तुम्हें ये जो शोहरत मिली है, तुम ये जो मशहूर हुए हो, ये एक इट्स अ वेपन, इसका इस्तेमाल तुम्हें किस चीज के लिए करना है ये तुम डिसाइड करोगे। तो इसलिए कभी भी जब भी मौका मिले और सच की और तुम्हें खड़ा रहने का चांस मिले तो डेफिनेटली खड़े रहना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख जो डॉक्टर लागू ने खुद के बर्ताव से भी हमेशा सामने लाई हुई है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वो डॉक्टर लागू से सीखे पापा, ये बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये जो सीखे पापा को मिले वो उन तक सीमित नहीं रही, वो उन्होंने अपने बर्ताव से, अपने जीवन से और अपनी बातों से हम तक भी वो पहुंचाई। मुझे याद है जब पापा गुजर गए थे और निखिल वागड़े जी आए थे कि श्रद्धा सभा में, और तब उन्होंने कहा था कि अब हम मराठी न्यूज चैनल्स अगर कुछ गलत हो रहा है तो ऐसा बड़ा नाम बचा ही नहीं है जो हमें रिएक्शन देगा,
0: विरोध करेगा,
1: जो विरोध करेगा या सामान्य आदमी को, नागरिक को क्या लग रहा है इसके बारे में बात करेगा, ऐसी आवाज ही नहीं बची है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो पापा ने बखूबी निभाई। जब अण्णा हजारे जी का अनशन उन्होंने किया था दिल्ली में, तब भी महाराष्ट्र में वो हवा बनाए रखने में पापा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उस वक्त।
0: घर की एक बात मुझे याद आई कि बाद के दिनों में ऐसा हुआ था कि किसी ने उनको सुझाव दिया था कि सरकार कलाकार कोटे से बड़े घर या बंगलो देती है और उन्होंने रिफ्यूज किया था कि मैं वो नहीं कर सकता।
1: करेक्ट. सो पापा एक ऐसे कलाकार है, आई थिंक एक अकेले ऐसे कलाकार है जिन्हें म्हाड़ा के 2% में से घर मिला था. और जब उन्होंने खुद का घर खरीदा बाद में, तब उन्होंने वो म्हाड़ा को वापस कर दिया.
0: गजब.
1: हालांकि उन्होंने उसके लिए पैसे भी भरे थे, सब कुछ था, पर उनका कहना था कि जब मुझे जरूरत थी तब मुझे ये मिला था, तो आज किसी और को अगर ये जरूरत है तो ये जरूरत पूरी होना ज्यादा जरूरी है.
0: वो आराम से बेच सकते थे पैसे.
1: वो हाँ, बेचकर वो ले सकते थे, बिकॉज हम वहां पर 7-8 साल रहे थे, तो जो 4 साल का लॉक इन पीरियड होता है वो भी निकल चुका था, तो वो बेच सकते थे. पर उन्होंने नहीं बेचा, उन्होंने वो वापस कर दिया.
0: गजब.
1: और इसी तरह उस समय अंधेरी में, जो अभी बहुत ही बड़ा एरिया है लोखंडवाला का, उस वक्त म्हाड़ा के छोटे छोटे छोटे छोटे बंगले हुआ करते थे, जिनके काफी स्टूडियोज बन चुके थे. फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोगों ने वहां पर वो छोटे छोटे म्हाड़ा के घर लेकर बहुत सस्ते में, क्योंकि मिल रहे थे,
0: आज भी मौजूद है,
1: आज भी मौजूद है, और वहां पर बंगले में स्टूडियोज और ये सब बनाए. तो उस समय जो पापा के सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा सदाजी हम भी ले लेते हैं, एक स्टूडियो बना देते हैं उधर, डबिंग स्टूडियो रहेगा, एडिटिंग स्टूडियो रहेगा, एक इनकम शुरू हो जाएगा. तो पापा ने कहा क्यों मैं करूं ये सब, अगर मैं ये करता हूं तो कोई और जो व्यवसाय के तौर पर करना चाहता है उसका मैं रोजगार छीन रहा हूं, जो मुझे नहीं करना है. तो आपके बच्चों के लिए ये, वो मेरे बच्चों को मैं सिखा रहा हूं, वो बड़े होंगे, उनको जितना कमाना है कमाएंगे, नहीं कमाना है नहीं कमाएंगे, दे डोंट नीड टू डू दिस, मैं उनके लिए जागीरें बना के नहीं रखूंगा, ये उनका एक कहना होता था. तो हाँ, उनको हर बार इलेक्शन जब भी होता था तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से उनको बुलावा आता था कि आप हमारी ओर से खड़े रहिए, आप हमारी ओर से. पापा ने कभी नहीं किया, या कोई भी सामाजिक संस्था में भी उन्होंने कोई भी डेजिग्नेशन नहीं लिया. तो वो कहते थे जो काम करना है ना वो मुझे बताओ, मैं करता हूं, मुझे ये डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, आपने मुझे चेयरमैन बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, ये मुझे नहीं चाहिए. बिकॉज उसके साथ जो जिम्मेदारी आती है, लीगल हैसल्स आते हैं, वो कौन करेगा? बिकॉज़ जैसा मैंने कहा, वो कलाकार थे,
0: बिल्कुल,
1: उन्हें उनकी कला में रस था और जो अच्छा काम करना है उसमें रस था.
0: क्या बात है.
1: पापा का ये हमेशा कहना होता था कि मेरे बच्चों को जो भी कमाना है वो खुद के बलबूते पर वो कमा लेंगे, मैं उनके लिए जागीरें नहीं रखूंगा. और ये मेरे ख्याल से ये हमारी फैमिली का ही
0: ट्रेडिशन
1: है, बिकॉज मेरे दादाजी का भी यही कहना था कि मैं तो धर्मादाय कर दूंगा सब कुछ, तुम्हें देखो जो करना है, जैसे खुद का घर चलाना है तुम चलाओ, ऐसे ही पापा का भी था. तो जैसा मैंने कहा कि सामाजिक काम भी दादाजी करते थे, वही हमारे घर में चलता आया है, और ये भी वैल्यूज आई थिंक वहीं से आई हुई है.
0: बिल्कुल. रीमा जी, अब हम अपनी बातचीत के लगभग आखिरी मकाम पर आ पहुंचे, जहां एक कठिन बात करनी है, और वो है कि जब सदाशिव जी बीमार पड़े और वो जो पूरा आखिरी दौर है, जाहिर है वो सब आपने देखा है, उन दिनों को थोड़ा याद करें.
1: उन दिनों को याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि पापा की आवाज उनकी ताकत थी. और जब वो बीमार हुए और उनको इंटरस्टेशियल लंग डिसीज करके एक डिसीज होता है, जिसमें अपने जो फेफड़े होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, तो सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आपने दम सांस नहीं है तो आप आवाज भी नहीं निकाल पाते. तो इसलिए उनकी आवाज धीरे धीरे धीरे धीरे कमजोर होती गई, और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ट्रेजिक था. और उस समय उनकी उम्र ही क्या थी, ही वॉज 63, 63 साल के थे. आगे और बहुत 10-15 साल तो कम से कम वो काम कर पाते,
0: अगर बिल्कुल, बिल्कुल.
1: उन्होंने डिसाइड किया होता तो. लेकिन वो डिसीज हुआ, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, इसलिए वो बात नहीं कर पाते थे. और वो इतने ऑनेस्ट थे कि उनके पास प्रोड्यूसर्स तब भी आते थे कि सदाजी ये छोटा रोल है, आप ये कर दीजिए. कई कलाकारों को हम भी जानते हैं जो बीमार होते हुए भी काम करते रहते हैं, पर पापा उनको बोल देते थे कि देखो अगर तुम्हें लगता है मैं उसी तरह से बोलूंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये मेरी आवाज की हालत है. इस तरह से वो बहुत ओपनली और क्लियरली बात बताते थे. वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट हम सबके लिए था, बिकॉज आप सोचिए कि एक पहाड़ जैसा आदमी, जिसको आपने बचपन से इतना स्ट्रॉन्ग, इतना क्या कहते हैं,
0: जुझारू
1: एक्चुअली, और रियल लाइफ में भी सिर्फ पर्दे पर नहीं देखा हुआ है, वो जब आपके सामने धीरे धीरे धीरे धीरे वीक होता जाता है, तो ये आप सहन नहीं कर पाते, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही तकलीफ वाला

0: का दौर था, पूरे 6 महीने जब वो बीमार थे तब। और मैं क्या कहूं, तब लोगों ने, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब आप मशहूर होते हो तो जैसे प्यार भी करते हैं लोग, तो लोग ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है और उसकी भी एक निजी जिंदगी है। तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी उस वक्त कि लोग ये चाहते थे, जैसे अभी धर्म जी के बारे में भी हुआ कि उनका आईसीयू में उनका वीडियो निकाला गया, तो वैसे लोग चाहते थे, मुझे चैनल से फोन आते थे कि रीमा उनका एक आईसीयू में एक फोटो निकाल के आप भेजो, ओके। या लोग मिलने आते थे, तो उस समय मोबाइल फोन्स, कैमरा फोन्स आ गए थे, 2014 की बात कर रही हूं मैं। तो हम ये देखते थे कि जो भी अंदर जा रहा है पापा से मिलने, उसके साथ कोई ना कोई हो, बिकॉज हम ये नहीं चाहते थे कि कोई फोन निकाले, वीडियो निकाले, फोटो निकाले और सर्कुलेट करे, बिकॉज वो एक कलाकार थे,
1: ये होना ही नहीं चाहिए।
0: हाँ,
1: कोई भी
0: और नहीं, और लोग उन्हें जिस तरह से याद लोगों ने रखना चाहिए, वो उनकी बुलंद आवाज, वो उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिंग, उनकी दहशत जो पर्दे पे वो पैदा करते थे, वो याद रखे। ये क्यों याद रखना है?
1: बिल्कुल।
0: जैसे इवन धर्म जी के बारे में जब हुआ तो इतना बुरा लगा कि ही मैन, ही इज द ही मैन ऑफ द इंडस्ट्री, और उनको इतना वीक दिखाकर आप क्या हासिल कर रहे हैं?
1: देखिए, समय और उम्र किसी को नहीं बख्शते हैं।
0: Exactly.
1: तो इसलिए उसका लिहाज कर लेना चाहिए
0: बहुत,
1: और लोगों को अपनी प्राइवेसी में छोड़
0: देना चाहिए
1: ऐसे समय,
0: बिकॉज पापा अहमदनगर को अपने दिल में रखे हुए थे। तो ये बात तो पक्की थी कि उनका जो भी अंतिम संस्कार है वो अहमदनगर में होगा। तो जब हम अहमदनगर गए और हमारी जो हवेली है उसके आंगन में ही पापा को रखा हुआ था दर्शन के लिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 2-3 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी और वो लाइन रुकी नहीं रही थी। अल्टीमेटली 4-5 घंटे के बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि अभी बस, अभी जाना जरूरी है, बिकॉज ऑलरेडी मुंबई से हम वहां गए थे, काफी समय बीत चुका था। तो उस समय लगभग 50-60 हजार लोग पापा के अंत्य यात्रा में थे, और वो सिर्फ अहमदनगर से थे ऐसा नहीं,
1: दूर दूर से आए,
0: दूर दूर से आए थे। और बाद के जो 15-20 दिन है, पूरा महीना जो हम लोग रखते हैं, पूरे महीने तक हमारी हवेली में लोग आ ही रहे थे, माथा टेक ही रहे थे और जा रहे थे। राजस्थान से लोग आए, पश्चिम बंगाल से आए, कहां कहां से आए, कुछ नहीं, सिर्फ उनके दर्शन करने, बस उनकी हवेली देख ली, उनके बच्चों को देख लिया, उनके भाई को देख लिया, बस। ये जो लोगों की दुआ मिली है उस वक्त, और ये जो प्यार हमें दिखाया है, क्योंकि पापा बाहर जाकर किस किस के लिए क्या क्या करते थे ये कभी घर आकर हमें बताते नहीं थे, पर उसके बाद आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि पापा की याद किसी ने ना निकाली हो, कोई ना कोई वो याद निकालता ही है। और हर 1-2-3 महीने में ऐसा कुछ किस्सा पता चलता है कि अरे पापा ने ये भी किया था, पापा ने ऐसा भी किया था, ये भी मदद की थी, ये कब किया था उन्होंने।
1: गजब।
0: तो ये जो बात है कि जब इंसान, हम उसके बच्चे होते हैं, हम एक तरीके से उसको देखते हैं, वो मेरे लिए मेरे पिताजी थे, वो एक हीरो थे, बहुत महान कलाकार थे, अग्रीड, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मेरे पापा थे। तो मेरी कुछ पर्सनल शिकायतें, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज वो उनके साथ थे ही, मैं ना नहीं कहूंगी, लेकिन अब लगभग 11 साल हुए हैं और अभी 11 साल के बाद भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उनका कोई रेफरेंस ना निकलता हो। तब आपको पता चलता है कि जो इंसान आप अपने पिताजी समझते थे वो सिर्फ आपके पिताजी नहीं थे,
1: वो पूरे संसार के लिए क्या थे।
0: एग्जैक्टली। और सिर्फ एक कलाकार भी नहीं थे, He was so much more. तो एक थोड़ी सी समझ आ जाती है कि फिर आप इंसान को एक ही दायरे में ना देखें, उसके कई मायने हैं और उन सारे मायनों में आपने देखना चाहिए इंसान को। तो ये आज भी मैं सीख रही हूँ उनसे, आज भी सिखा रहे हैं वो मुझे।
1: क्या बात है?
0: जैसे आज हम बातचीत कर रहे हैं तो मुझे लगा नहीं था मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन जब एक एक आप पूछते गए तो ऐसी भी काफी सारी चीजें मैंने कही जो आज तक मैंने कहीं पर नहीं कही थी।
1: बिल्कुल।
0: अर्थात आकाशवाणी घर ही है हमारा। अभी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि हमने रुकना चाहिए।
1: यहाँ एक गाना बजाते हैं, रहे ना रहे हम महका करेंगे।

0: रीमा जी, उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम यादों के उजाले बिखेरते हैं। आपकी यादों में पिताजी किस तरह से सामने आए, ये सुनते हुए और आपसे बातें करते हुए लगातार मुझे सदाशिव जी की बातें याद आ रही थी जो विविध भारती में उनके आने पर उन्होंने बताई थी और बहुत दिलचस्प बातें थी। तो अब तक आपने पिताजी के बारे में बताया, अब संग्रहालय से पिताजी की आवाज निकालते हैं और हम सब मिलकर सुनते हैं सदाशिव अमरापुरकर की बातें। और हाँ, ये बातचीत हमारी साथी कांचन प्रकाश संगीत ने सदाशिव जी से की थी बरसों पहले, तो संग्रहालय से ये आया ऑडियो।
1: अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
2: अच्छा।
1: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
2: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
1: तो आप अपनी बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
2: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर, ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे, लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियां खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
1: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
2: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा यह इंसान, यह आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गाँव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द-गिर्द जाते रहे हैं?
2: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांदबीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांदबीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
2: और क्रिएटिव है
1: जी।
2: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
2: जी,
1: है ना सदाशिव जी? इसी बात पे आपकी पसंद का कोई गीत हम क्यों ना सुन लें?
2: जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
2: और उसके बोल है मेरे दिल में है इकबाल।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ, हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे। इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज की गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन आ जाता है और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला। हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं नहीं, नाटक करता रहा, धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसकी वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
0: जी,
1: हम मतलब हवा में दौड़ते थे।
0: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे?
1: जी जी जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-20 25-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
0: जी।
1: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग।
0: तो वो पलट के नहीं देखती थी?
1: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया, हमारे अंदर, हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू।
0: आ तो गई, ये सुन लेते हैं
1: जी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आइए रुक मत

प्यार की गलियां, बाहों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है, गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुको मत तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब

आए और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, दिल जाए जिंदगानी कब

आई हुकूमत जाने कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई हुकूमत जाने कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी।

0: लेकिन आप आगे ये बताइए ना, थिएटर की जो बात है वो वहां से आपकी शुरुआत हो गई, और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके MA वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
1: नहीं, मैं BA होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालवा केलकर के साथ PDA में नाटक करता रहा
0: जी।
1: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन PDA का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मैं मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो, मैं सिखाता हूँ तुम्हें। मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये रोल कॉल लेता हूँ उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो, ये PDA में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो PMT की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले, एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा।

0: अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए। और थिएटर करने लगा तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
0: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
0: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
0: नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
0: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे।
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे होता है, हेलो फरमाइश।
0: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाए किसी होटल में, चाय पीने जाए, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपये कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो।
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
0: जी, लेकिन छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी
0: बहुत गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
0: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
0: जी।

0: तो ये सदाशिव जी की आवाज देखिए ना, इंसान चला जाता है, यादें रह जाती हैं, और विविध भारती में तो ऐसा होता है कि आवाजें रह जाती हैं, और कितनी ही आवाजों के उजाले हमारे स्टूडियो को और हमारे संग्रहालय को रोशन करते हैं। रीमा जी, बहुत सारी बातें हुई हैं और अब वो वक्त है जहां आपको एक बहुत जरूरी काम करना है और वो ये काम करना है कि एक बेटी होने के नाते कहना है कि इतने वर्ष बाद भी क्या है आपके पिता आपके लिए। हो सकता है कि ये एक ऐसी बात हो जो आप उनसे कभी ना कह पाई हूँ, अपने घर आकाशवाणी में आप कह पाएंगे।
1: एक बेटी होने के नाते मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैं बहुत बहुत बहुत नसीबों वाली हूँ कि पापा जैसे पिताजी मुझे मिले। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत बड़े कलाकार थे, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने कभी भी हमें शब्दों में सिखाया नहीं। उन्होंने जो भी किया उसमें से वो चाहते थे और वो हमें खुला छोड़ देते थे कि तुम्हें जो सीखना है इसमें से सीखो। इसी वजह से आज भी, अभी उन्हें गुजरे हुए 11 साल हो गए, आज भी जब कोई घटना याद आती है, कुछ किस्सा याद आता है, तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसमें से जो मैं सीखती हूँ वो मैच्योर होता जाता है, वो नया नया मुझे सीखने को मिलता है। और जैसा मैंने कहा कि मैं लकी इसलिए भी हूँ कि ये आज़ादी उन्होंने मुझे दी, हम सब बहनों को इनफैक्ट दी, कि आपको जो करना है वो आप करो, सिर्फ सही करो, कभी भी कुछ गलत मत करो जिससे किसी इंसान को दुख पहुंचे या कुछ गलत हो। उनका सिर्फ एक ही कहना होता था कि आप जो करते हो वो करने के बाद रात में जब आप घर पे आते हो और बिस्तर पर लेटते हो तो एक भी मिनट आपका ऐसा नहीं गुजरना चाहिए कि यार ये मैंने क्या किया। बिस्तर पर लेटते ही आपकी आंखें बंद हो जाए और आपको नींद आ जाए शांति से, ऐसा आपका बर्ताव पूरे दिन में हो, फिर वो आपके काम में हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, कहीं पर भी हो। तो ये जो सीख है, ये जो पापा ने दी है, और ये उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि शब्दों में नहीं, उनके खुद के बर्ताव से उन्होंने हमें सिखाई है। और साथ ही मैं ये कहूंगी कि उन्होंने जो लॉयल्टी उनके अंदर थी वो उनकी बीवी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, उनके पिताजी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, हम बच्चों के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, वैसी ही लॉयल्टी उनके काम के प्रति भी उनकी थी। जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना उतना मैं ये समझ पा रही हूँ कि उनके जीने के और उनकी पर्सनालिटी के काफ़ी सारे ऐसे पहलू थे जो जब वो थे तब मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैं पापा से ये कहना चाहूँगी कि पापा, आपने जो भी करके रखा है एज एन आर्टिस्ट, एज अ फादर, वो शायद समझते समझते पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आज भी रोज कुछ ना कुछ ऐसा याद आता है, कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है, आपके कोई मीम हो या कोई रील हो, कि एक ऊर्जा मिलती है आगे जाने की, और ये ऊर्जा हमारे साथ इतने प्रकार से है आपके होने से, ये नसीब वालों को ही मिलता है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि आप मेरे पापा थे। मैंने बहुत झगड़ा किया हुआ है पापा के साथ, काफी बार हम काफी झगड़ते थे, लेकिन वो भी एक फ्रीडम उन्होंने हमें दिया था, उनसे झगड़ा करने का फ्रीडम। बुरा लगता है कि मेरी बेटी उन्हें मिल नहीं पाई, खैर वो अलग अलग तरीके से उसे मिलते रहते हैं।
0: क्या बात है रीमा जी, पिताजी इतने मशहूर कलाकार थे और उनका कामयाबी का झंडा बहुत बुलंद था, जब आपके सामने करियर का सवाल आया तो उनके सामने जाके क्या ऐसा कुछ हुआ कि मैं भी इंडस्ट्री में?
1: हाँ, एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया है पूना से, कोखले इंस्टीट्यूट से, तो पापा एकदम सेट थे कि अभी सबसे छोटी बेटी है वो इकोनॉमिक्स कर रही है, वो शायद उसमें पीएचडी करेगी, हो गया, एवरीथिंग इज सेट। पर मैं जब पूना में जॉब कर रही थी तब पूना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ और तब जाके मैंने राशुमान देखी, अकीरा कुरोसावा की, और सिनेमा की ताकत जो है वो सडनली मुझे ऐसे लगा कि यार ये करना चाहिए,

0: मैंने अगर पीएचडी किया तो मैं रिसर्च पेपर लिखूंगी, वो किसी मैगजीन में छपके आएगा, खत्म। ऐसा कुछ करना चाहिए। और मैंने जाकर पापा से ये कहा तो सबसे पहले तो पापा की रिएक्शन थी, पर तुझे तो इकोनॉमिक्स करना था। मैंने कहा हाँ करना था, लेकिन अभी मुझे ये करना है। तो फिर वो कहते थे फिर तू एक्टिंग कर ले। सर मुझे एक्टिंग नहीं करनी। क्यों एक्टिंग क्यों नहीं करनी? बिकॉज वो एकदम ऑफेंड हो गए कि एक्टिंग क्यों नहीं करनी तुझे। तब मैंने उन्हें वो औरंगाबाद वाला किस्सा याद दिलाया कि आपको याद है आप अजंठा नहीं देख पाए थे, तो मुझे कैमरा के सामने नहीं जाना है, मैं कैमरा के पीछे रह के जो भी करना है करूंगी। ओके
1: राइट।
0: तो फिर पापा ने कहा कि ठीक है, फिर आपको अगर करना ही है ये तो उसमें पहले आपको सीखना जरूरी है। फिर न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में मैं जाकर सीख कर आई, फिर मैंने असिस्टेंटशिप की और फिर मेरा करियर जैसे बनना था वैसे बना। पर अगेन जैसे पापा का सामाजिक एक ये रहता था, वैसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझमें भी है। तो मैं एनजीओ के साथ ज्यादा काम करती हूँ, कमर्शियली मैं थोड़ा कम काम करती हूँ।
1: बहुत सारी बातें पिताजी के बारे में हुई और कई ऐसे पहलू सामने आए जिनके बारे में शायद कभी किसी ने नहीं जाना था। तो इसीलिए सार्थक होता है ये कार्यक्रम जिसका नाम उजाले उनकी यादों के है। तो आपके जरिए यानी रीमा की यादों के जरिए पिताजी सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले आपने सजाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे ये लंबी बातचीत करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच। ऐसे होता है ना, कभी कभी डर लगता है कि हम बहुत ज्यादा उनकी बातें करेंगे तो रो देंगे, इसलिए कई बार हम खुद से भी दूर भागते हैं और बातें नहीं करते हैं। पर यहाँ बुलाकर वो पुराने दिन, किस्से, घटनाएं और पापा, उनको याद दिलाया, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन आपने जिस तरह से मुझसे बातचीत की है वो बहुत ही मुझे, इट हैज बीन एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: शुक्रिया।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और मशहूर हस्ती की यादों के उजाले लेकर। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी यादों के।

8 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। इस समय शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।

युवा साथी सुन रहे हैं युववाणी। मैं अर्चना आपके के पसंदीदा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे कुछ विशेष कार्यक्रम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान जगत पर, अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, अटल भूजल योजना, सेवा ही परमो धर्म और सादा जीवन कुछ विचार। तो हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं विशेष कार्यक्रम विज्ञान जगत पर। प्राचीन ब्लैक होल्स की खोज। जुलाई 2026 की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के शुरुआती दौर के 31 नए और विशाल क्वाशर यानी कि चमकदार ब्लैक होल्स की खोज की। इनमें यह समझने में मदद मिलेगी कि जब हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल नया था, तब इसमें विशाल ब्लैक होल इतनी जल्दी कैसे बन गए। जेम्स वेब टेलीस्कोप का नया खुलासा। जून में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में गैलेक्सी किलिंग विंड आकाशवाणी को खत्म करने वाली गर्म हवाओं के तूफान का पता लगाया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह घटना हमारी आकाशगंगा इनकी मिल्की वे के भविष्य के अंत का एक शुरुआती ट्रेलर हो सकती है। पृथ्वी और समुद्र विज्ञान। समुद्र के नीचे नए महाद्वीप के बनने की लाइव गवाही। 8 जुलाई 2026 को नेचर पत्रिका में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर की गहराइयों में पहली बार टेक्टोनिक प्लेटों की अलग होते और नई समुद्री परत बनते हुए लाइव रिकॉर्ड किया। समुद्र के नीचे आए भूकंपों के बाद यहां लगभग 16 करोड़ घन मीटर पिघला हुआ लावा निकला, जिसने समुद्र के फर्श को पूरी तरह बदल दिया। प्रदूषण खाने वाले बैक्टीरिया। जुलाई की एक रिसर्च में पाया गया कि पहाड़ी इलाकों या तटीय क्षेत्रों में दिखने वाले कोहरे के अंदर एक पूरा इकोसिस्टम रहता है। इसमें ऐसे विशेष बैक्टीरिया पाए गए हैं जो हवा में मौजूद प्रदूषण के कणों को खाकर हवा साफ करने में मदद करते हैं। चिकित्सा और तकनीक। कैंसर की दवाओं के लिए कुदरती कोड क्रैक हुआ। जुलाई 2026 में शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया की उस क्षमता के गुप्त कोड को डिकोड कर लिया है, जिससे वे प्राकृतिक रूप से कैंसर रोधी दवाई बनाते हैं। इस खोज से आने वाले समय से कैंसर के और भी असरदार और सुरक्षित इलाज तैयार किए जा सकेंगे। चिप पर डीएनए लिखना हुआ आसान। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों ने सिलिकॉन की एक ऐसी स्मार्ट चिप बनाई है जो बिजली और पानी आधारित एंजाइमों का उपयोग करके एक साथ दर्जनों डीएनए सीक्वेंस लिख सकती है। यह तकनीक भविष्य की चिकित्सा रिसर्च को बहुत ही तेज कर देगी। स्मार्ट मटेरियल जो गर्मी कंट्रोल करेगा। जुलाई 11 को वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रोग्राम करने योग्य मटेरियल तैयार किया है जो कंप्यूटर चिप की तरह गर्मी के बहाव को नियंत्रित कर सकता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स को ठंडा रखने और एनर्जी बचाने में होगा। एक और दिलचस्प खबर। जून 2026 वैज्ञानिकों ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इटली के माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी को फटने से 2000 साल पहले दबे और जल चुके प्राचीन स्क्रॉल को सफलतापूर्वक पढ़ लिया है, जिन्हें इंसानी आंखों से पढ़ना नामुमकिन था। जीव विज्ञान और प्रकृति। पेड़ पौधों के बीच बातचीत का नया सच। जून 2026 के अंत में आई एक स्टडी के अनुसार वैज्ञानिक ये पहले से जानते थे कि कीड़े मकोड़ों के हमले से के समय पौधे एक दूसरे को अंडरग्राउंड चेतावनी संदेश भेजते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पहली बार उन विशिष्ट रसायनों को लैब से डिकोड कर लिया है जिनका इस्तेमाल पौधे एक दूसरे से बात करने के लिए करते हैं। डायनासोर के दौर की चींटी का रहस्य सुलझा। जुलाई 2026 में वैज्ञानिकों ने अंबर पेड़ों की जमी हुई डाल के अंदर करीब 10 करोड़ साल पुरानी एक चींटी के जीवाश्म का अध्ययन किया। रिसर्च से पता चला कि इस चींटी के पास अपने शिकार को पकड़ने के लिए आज की चींटियों के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक और विकसित जबड़े थे जो समय के साथ विलुप्त हो गए। मौसम और पर्यावरण। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे प्राचीन नदियां। जून 2026 में सैटेलाइट और रडार डेटा की मदद से वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की विशाल बर्फ की चादर के नीचे लाखों साल पुरानी नदियों के सूखे नेटवर्क का नक्शा तैयार किया। इससे यह समझने में मदद मिल गई है कि करोड़ों साल पहले अंटार्कटिका कैसा दिखता था जब वहां बर्फ नहीं थी। प्लास्टिक रिसाइकलिंग में सुपर एंजाइम। जुलाई में वैज्ञानिकों ने एक नया सिंथेटिक एंजाइम तैयार किया
जो केवल कुछ ही घंटों में सबसे सख्त माने जाने वाले प्लास्टिक को उसके मूल रूप में तोड़ देता है। यह खोज दुनिया में प्लास्टिक कचरे की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। अंतरिक्ष और ब्रह्मांड, चंद्रमा की गुफाओं में इंसानी बस्तियों की उम्मीद। जुलाई 2026 में नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चांद के गड्ढों और गुफाओं का एक विस्तृत थर्मल डेटा जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक चांद की इन भूमिगत गुफाओं के अंदर का तापमान इंसानों के रहने के लिए काफी अनुकूल रहता है, जो कि बाहर की जानलेवा गर्मी और ठंड से बचा सकता है। सौर मंडल के बाहर शीशे की बारिश वाला ग्रह। खगोलविदों ने एक ऐसे एक्सोप्लेनेट यानी कि सौर मंडल से बाहर का ग्रह की खोज की, जहां का वातावरण इतना गर्म और अजीब है कि वहां सिलिकेट यानी कि शीशा बनाने वाला मटेरियल के बादल बनते हैं और वहां हवा में शीशे की बारिश होती है। मानव इतिहास और पुरातत्व समाचार। नए अथंड इंसानों की अनोखी आदतें। जून 2026 में यूरोप में हुई एक खुदाई और दांतों के जीवाश्मों की स्टडी से पता चला कि आदि मानव न केवल मांस खाते थे, बल्कि वे अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए खास तरह की जंगली जड़ी बूटियों और फंगस का इस्तेमाल भी करते थे, यानी उनके पास अपना एक प्राकृतिक मेडिकल सिस्टम था। समुद्र के नीचे डूबा 8000 साल पुराना गांव। जुलाई की शुरुआत में पुरातत्वविदों ने अत्याधुनिक सोनार तकनीक की मदद से भूमध्य सागर के नीचे एक पूरा प्रागैतिहासिक गांव खोज निकाला। पानी के नीचे दबे पत्थरों के उजार, घरों की दीवारें यह दर्शाती है कि क्लाइमेट चेंज के कारण यह पूरा इलाका पानी में डूब गया था। भौतिकी और अनोखी तकनीक समाचार। प्राइम क्रिस्टल पर बड़ी कामयाबी। जुलाई 2026 में भौतिक वैज्ञानिकों ने लैब के अंदर अब तक का सबसे स्थिर टाइम क्रिस्टल बनाने में सफलता हासिल की है। यह पदार्थ का एक ऐसा रूप है जिसके परमाणु बिना किसी बाहरी ऊर्जा के भी लगातार एक निश्चित पैटर्न में चलते रहते हैं। इस खोज का इस्तेमाल भविष्य के सुपर फास्ट क्वांटम कंप्यूटर में किया जाएगा। इंसानी पसीने से चार्ज होने वाली स्मार्ट वॉच। दोस्तों, जून में इंजीनियरों ने एक ऐसा लचीला बायोसेंसर पैच बनाया जो इंसानों के पसीने में मौजूद लैक्टिक एसिड को बिजली में बदल देता है। इसे हाथ पर चिपकाकर बिना किसी बैटरी के छोटी स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड को लगातार चार्ज या चलाया जा सकता है। जीव विज्ञान और चिकित्सा संबंधित समाचार। मच्छरों के सूंघने की शक्ति को किया गया हैक। जुलाई में आई एक न्यूरोसाइंस रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने जीनोम एडिटिंग की मदद से मच्छरों के दिमाग के उस हिस्से को ब्लॉक कर दिया जिससे वे इंसानी पसीने की गंध को पहचानते हैं। इस बदलाव के बाद मच्छर इंसानों के बिल्कुल पास होने पर भी उन्हें नहीं काट पाते हैं, जिससे मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। बूढ़े चूहों की उम्र पलटने का सफल प्रयोग। जून 2026 में एक जेनेटिक्स लैब ने बूढ़े हो चुके चूहों की आंखों की रोशनी, उनकी मांसपेशियों की कोशिकाओं को सेलुलर रीप्रोग्रामिंग के जरिए दोबारा युवा बनाने में सफलता पाई है। वैज्ञानिक इसे इंसानी उम्र को थामने की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: रोबोटिक्स और AI संबंधित समाचार। सोचकर रोबोटिक हाथ लाने की नई तकनीक। जून 2026 में न्यूरो इंजीनियरों ने एक ऐसा बिना सर्जरी वाला हैंडबैंड तैयार किया है जो दिमाग की लहरों यानी कि ब्रेन वेव्स को इतनी सटीकता से पढ़ता है कि लकवाग्रस्त मरीज भी सिर्फ सोचकर रोबोटिक हाथ से पानी का ग्लास उठा सकते हैं। पहले इसके लिए दिमाग के अंदर चिप लगानी पड़ती थी। सजीव उत्तकों से बने बायो रोबोट जुलाई की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में चूहे की दिल की कोशिकाओं और सिलिकॉन को मिलाकर एक छोटा रोबोटिक मेंढक बनाया। यह रोबोट बिना किसी बैटरी के सिर्फ पोषक तत्वों को सोखकर पानी में तैर सकता है और अपने आप मोड़ सकता है। पर्यावरण और अनोखे जीव। अंधेरे में चमकने वाले नए पौधों की खोज। जून के आखिरी हफ्ते में अमेजन के जंगलों में रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों ने मशरूम की 3 ऐसी नई प्रजातियां खोजी जो रात के अंधेरे में इतनी तेज हरी रोशनी बिखेरती है कि उनके पास रखे कागज को भी पढ़ा जा सकता है। वैज्ञानिक इनके पीछे के जीन को समझकर शहरों में नेचुरल स्ट्रीट लाइट वाले पेड़ उगाना चाहते हैं। सहारा रेगिस्तान में मिला लॉस्ट जल स्रोत। जुलाई 2026 की एक भूगर्भीय सैटेलाइट स्टडी में सामने आया कि सहारा रेगिस्तान की सूखी रेत के सैकड़ों फीट नीचे पानी का एक बहुत ही बड़ा प्राचीन नेटवर्क मौजूद है जो क्लाइमेट चेंज के उस दौर में अफ्रीका के कई देशों के लिए जीवन दान बन सकता है। अंतरिक्ष और एडवांस फिजिक्स। सूरज से भी 10 गुना गर्म कृत्रिम सूरज का नया रिकॉर्ड। जून 2026 में परमाणु संलयन पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने अपने रिएक्टर में रिकॉर्ड 6 मिनट तक 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान को बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है। यह खोज हमें भविष्य में कभी न खत्म होने वाली और बिल्कुल साफ बिजली मिलने के बेहद करीब ले आई है। चांद की मिट्टी से बनाई गई कंक्रीट। जुलाई में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने चांद से लाए गए पत्थरों और मिट्टी के सैंपल्स को बिना पानी के सिर्फ सौर ऊर्जा की गर्मी से पिघलाकर एक बेहद मजबूत ईंट कंक्रीट बनाने का फॉर्मूला फाइनल किया है। इसका इस्तेमाल चांद पर इंसानी बस्तियां बनाने में किया जाएगा। आज के विज्ञान जगत संबंधी समाचार यही समाप्त होते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म अखियों के झरोकों से, आर्टिस्ट हेमलता की आवाज में ही प्यारा सा गीत। अब हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2025 में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करके इस दिन को एक आधिकारिक तौर पर घोषित किया था। आज 12 जुलाई 2026 को पूरी दुनिया में इसे दूसरी बार मनाया जा रहा है। बात करते हैं यह दिन विशेष क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में शांति, एकजुटता और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आशा को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्थापित करना है। मानसिक स्वास्थ्य का आधार रिसर्च के अनुसार जिन लोगों में आशावादी सोच यानी कि होप होती है, उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा कम होता है। आशा सिर्फ एक भावना नहीं है बल्कि एक सीखी जा सकने वाली मानसिक कुशलता है। और वैश्विक संकट, युद्ध और पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के बीच यह दिन याद दिलाता है कि सामूहिक प्रयास और उम्मीद से किस भी बड़ी परिस्थिति को बदला जा सकता है। और यह जो दिन है, इस दिन है वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं वो की जाती है। और विशेषकर अगर हम देखते हैं कि जिन लोग सोशल मीडिया पर जो यह दिन है वो मना रहे हैं, सूरजमुखी का पौधा लगाना यानी कि सूरजमुखी सनफ्लावर को लचीलेपन और उम्मीद का प्रतीक माना जाता है, इसलिए लोग इस दिन इसे लगाते हैं। और अपने आसपास के लोगों का हालचाल लेना, जरूरतमंदों की मदद करना, तो सहानुभूति और मदद के द्वारा भी यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है। होप स्कोर मापना यानी कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी संस्थाएं लोगों को अपनी उम्मीद और सकारात्मकता का स्तर आंकने के लिए प्रेरित करती है। श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे अटल भूजल योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अटल भूजल योजना जो कि भारत सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश के उन इलाकों में भूजल के गिरते स्तर को सुधारना और उसका सही प्रबंधन करना जहाँ पानी की भारी किल्लत है। इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 95वीं जयंती पर की गई थी। और इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य की बात करते हैं तो सामुदायिक भागीदारी यानी कि इस योजना की सबसे बड़ी जो खासियत है वो यही है कि इसमें सिर्फ सरकार काम नहीं करती है बल्कि स्थानीय जो गाँव के लोग हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनको पानी के प्रबंधन में शामिल किया जाता है। लोग खुद तय करते हैं कि पानी को कैसे बचाना है और मांग पक्ष प्रबंधन यानी कि केवल पानी के नए स्रोत बनाने के बजाय यह योजना इस बात पर ध्यान देती है कि उपलब्ध पानी का कम और सही इस्तेमाल कैसे हो, जैसे ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई अपनाना और व्यवहार परिवर्तन यानी कि लोगों को पानी की बर्बादी रोकनी, उनके संचयन के प्रति जागरूक करना, उनके अंदर ऐसी आदतें हैं वो लाना जिससे कि पानी की बचत हो और उसका इस्तेमाल है वो सही तरीके से किया जाए। इस योजना का कुल बजट 6000 करोड़ है। खास बात यह है कि इसका 50% हिस्सा विश्व बैंक द्वारा कर्ज के रूप में दिया जा रहा है, बाकी 50% भारत सरकार है उनके द्वारा वहन किया जा रहा है। और यह भारत के 7 प्रमुख राज्यों के लगभग 8220 ग्राम पंचायतों में लागू की गई है जहां भूजल की स्थिति बहुत चिंताजनक है, जैसे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में यह लागू की गई है। शुरुआत में इस योजना को 5 वर्षों के लिए लॉन्च किया गया था लेकिन कोविड-19 के कारण आए व्यवधानों और जमीनी स्तर पर इसके अच्छे प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार ने इसकी अवधि को 2 साल और बढ़ाकर दिसंबर 2027 तक कर दिया है ताकि तय लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल किया जा सके। और इसके तहत जल सुरक्षा योजना, हर गांव के लिए पानी का बजट बनाया जाता है और चेक डैम, तालाबों की खुदाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए जमीन के अंदर पानी पहुंचाना और किसानों को प्रोत्साहन यानी कि कम पानी लेने वाली फसलों को बढ़ावा देना

0: चुपके चोरी चोरी चुपके चुपके
1: चोरी चोरी चुपके चुपके।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके से बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाज में ये प्यारा सा गीत। अब हम चर्चा करेंगे सेवा ही परमो धर्म है। जी हाँ दोस्तों, सेवा परमो धर्म यानी कि सनातन संस्कृति और भारतीय दर्शन के सबसे अनमोल और प्रेरणादायक सिद्धांतों में से एक है सेवा परमो धर्म। इसका सीधा और सरल अर्थ है सेवा ही सबसे बड़ा और परम कर्तव्य माना जाता है। यहाँ धर्म का अर्थ किसी खास मजहब या संप्रदाय से नहीं बल्कि इंसान के नैतिक कर्तव्य और सदाचार से है। इसके अंतर्गत है बहुत से मुख्य पहलू आते हैं जैसे निस्वार्थ भावना, मानवता ही ईश्वर है, अहंकार का नाश आदि। इस विचार का मूल आधार है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो बदले में किसी इनाम या तारीफ की उम्मीद न रखे और निस्वार्थ भाव से है वो सेवा करें। और भारतीय दर्शन मानता है कि हर जीव में ईश्वर का अंश होता है, इसलिए किसी बीमार असहाय या जरूरतमंद की सेवा करना सीधे ईश्वर की सेवा करना या पूजा करने के बराबर होता है। और जब हम दूसरों की सेवा में खुद को समर्पित कर देते हैं तो हमारे भीतर का घमंड और मैं की भावना खत्म हो जाती है, जिससे हमारे मन को असीम शांति मिलती है। और अगर हम बात करते हैं कि यह जो वाक्य है वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि हम भारत में कई ऐसी संस्थाएं हैं उनको अगर देखते हैं तो वो हमारा आज मार्गदर्शक है वो कर रही है। जैसे हम भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो भारतीय सेना की कोर ऑफ सिग्नल्स और कई अन्य अंग इस मंत्र को अपने आदर्श के रूप में देखते हैं। देश और नागरिकों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना ही उनका परम धर्म है। और हम बात करते हैं कोरोना काल की, तो हाल ही के वर्षों में जब पूरी दुनिया संकट में थी तब डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, समाज सेवी इन सब ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस मंत्र को है वो सच साबित कर दिखाया था। और अगर हम दैनिक जीवन में अपने आसपास देखते हैं तो किसी भूखे को खाना खिलाना, बुजुर्गों की मदद करना या पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ लगाना, यह सब सेवा परमो धर्म का ही हिस्सा होता है। और हमारे हैं वो कई जो बड़े बड़े जो महापुरुषों ने भी कहा है, जिसमें महात्मा गांधी उनकी बात करते हैं कि खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप दूसरों की सेवा में खुद को खो दे। तो इस प्रकार से हमारे पास कई ऐसे है वो उदाहरण हैं जिससे हम सेवा ही परमो धर्म यानी कि सेवा ही हमारा परम धर्म है, मानवता का परम कर्तव्य है। और इस जो विचार है उसको हम व्यवहारिक तौर पर देख सकते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में जो सेवा का यानी कि चाहे हम किसी भी रूप में है वो सेवा कर रहे हैं, चाहे किसी जीव की कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, किसी पर दया करुणा कर रहे हैं और किसी की मदद कर रहे हैं और वो भी निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो ऐसे जो गुण हैं वो गुण हमें है वो एक हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं, साथ ही साथ हमें एक मानव यानी कि हमारे अंदर एक मनुष्य होने के नाते जो मानवता का जो गुण होना चाहिए वो गुण हमारे अंदर है वो दर्शाता है। और हमें भी इसके लिए है वो प्रयास करने चाहिए और अपने आसपास है वो लोगों को जागरूक करना चाहिए। इस जो वाक्य है उसको व्यवहारिक तौर पर हम कैसे है वो देख सकते हैं अपने आसपास, तो हम सब इसको एक जिम्मेदारी समझकर या खुद है वो इसको अपनाकर यानी कि सेवा ही परमो धर्म, सेवा ही परम धर्म मानकर हम लोगों की मदद है वो कर सकते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म धड़कन से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में ये प्यारा सा गीत। अब हम चर्चा करेंगे सादा जीवन उच्च विचार। जी हाँ दोस्तों, सादा जीवन उच्च विचार यह एक ऐसा सिद्धांत है जो इंसानी जीवन को सही मायने में समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि अपने रहन सहन और अपनी भौतिक जरूरतों को जितना हो सके साधारण रखना, लेकिन अपनी सोच, आदर्शों और ज्ञान को आसमान जितना ऊंचा रखना। यह विचार हमें सिखाता है कि इंसान की पहचान उसकी महंगी गाड़ियों, कपड़ों या बंगलों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, विचार और समाज के प्रति उसके योगदान से होती है। यह जो सिद्धांत है, इसके मुख्य उद्देश्य मुख्य स्तंभ है भौतिकवाद से मुक्ति, आंतरिक शांति और ऊंची सोच और रचनात्मकता। तो सबसे बड़ा जो भौतिकवाद से मुक्ति, यानी कि आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग जो दिखावा, महंगी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, यह सिद्धांत हम सबको सिखाता है कि जरूरतें कम होने पर मानसिक तनाव अपने आप कम हो जाता है। और ये जो आधुनिक जो हम समय देख रहे हैं, जो कि पूर्णतः जो भौतिकवाद का ही समय है, कि हर जो अपने जीवन का जो सीधा संबंध है वो भौतिक वस्तुओं से है, वो लगाया जाता है। अगर किसी के पास है वो महंगी महंगी गाड़ियां हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को है, या घर एक नहीं दो चार घर है, या बहुत सारे उनके पास संपत्ति है, तो वो एक जो कह सकते हैं कि सुखवाद का है वो प्रतीक माना जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कई बार इंसान के पास सारी चीजें होती है, यानी कि बहुत सारे वो संपत्ति होती है, सब कुछ होता हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो इंसान है वो अंदर से सुखी नहीं होता है। तो इसका जो सीधा संबंध है वो भौतिकवाद से मुक्ति से ही है। यह जो हमें सादा जीवन उच्च विचार है वो यह सिखाता है कि कैसे हमें है वो भौतिकवाद से मुक्त होकर एक आंतरिक शांति को प्राप्त करना है। तो जब आप बाहरी तड़क भड़क की रेस से बाहर निकल जाते हैं, तो आपको अपने भीतर झांकने, खुद को सुधारने और मानसिक शांति पाने का वक्त मिल सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि आपके पास ऊंची सोच और रचनात्मकता हो। जब दिमाग फालतू की इच्छाओं से मुक्त रहता है, तब वह बड़े लक्ष्य, समाज कल्याण, विज्ञान, साहित्य, दर्शन जैसे जो ऊंची विषय है उन पर ध्यान है वो केंद्रित कर पाता है, और हमारी रचनात्मकता है वो भी हमारे अंदर आती है। और इस सब से हम जो भौतिक, जो कह सकते हैं भौतिकवाद से या एक बाहरी जो दिखावे के सुख से है वो निकल कर हम आंतरिक सोच, माफ कीजिएगा, आंतरिक जो शांति है और ऊंची सोच की ओर है वो कह सकते हैं कि जाते हैं। तो जब इस विचार के जो कई उदाहरण हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे इतिहास और वर्तमान में भी ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को अपने जीवन की जीवन में पूरी तरह उतारा है। और हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो वो सिर्फ एक धोती पहनते थे और आश्रम में बेहद साधारण जीवन है वो जीते थे। और हमारे सामने है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ कुछ जोड़ी कपड़े, किताबें और एक वीणा थी। लेकिन अगर हम देखें कि वो भारत के राष्ट्रपति होने के नाते उनके पास तो बहुत सारी संपत्ति होनी चाहिए थी, बहुत सारा है, वो दिखावे का जीवन वो जी सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना अपने उच्च विचारों को और सादे जीवन को। तो इस प्रकार उन्होंने अपने सिर्फ पूरे जीवन में कुछ जोड़ी कपड़े, किताबें और एक मात्र वीणा है वो ही उन्होंने अर्न की। और हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल बहादुर शास्त्री, वो फटे हुए कुर्ते को रफू करके पहन लेते थे और बेहद

सादगी से रहते थे। तो ऐसे और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो धन संपन्न या संपत्ति संपन्न होने के साथ साथ उनके पास पद भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी है वो उस चकाचौंध भरे जो कह सकते हैं जीवन की ओर उन्होंने कदम नहीं रखा। तो आजकल की जो शो ऑफ यानी कि दिखावे वाली संस्कृति और सोशल मीडिया का जो दौर है, जहां लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए कर्ज में भी डूब रहे हैं, और यह सिद्धांत और भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि आज का जो समय है वो हमें यह याद दिलाता है कि चमकदार चीजें सिर्फ आंखें है वो कह सकते हैं कि चौंधी आ सकती है, लेकिन महान विचार दुनिया बदल सकते हैं। इसलिए आज के समय के लिए तो यह जो विचार है यानी कि सादा जीवन उच्च विचार, वो एक प्रासंगिक है और हमें इस जो आधुनिक जो समय है उसमें ये जो सादा जीवन उच्च विचार है उसको अपनाकर हम आंतरिक शांति है वो प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब बात विचारों और गहराई और जीवन जीने की कला की हो तो हमारे पास प्रेरणा का एक और बहुत खूबसूरत पहलू है, संतोष परम सुखम, यानी संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। तो ऐसे कई और विचार हमारे सामने हैं जो हमें है कह सकते हैं कि प्राचीन हमारे साहित्य से मिले हैं, वहाँ से हमें ऐसे कई सीख है, जैसे विद्या ददाति विनयम है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, और भी अति सर्वत्र वज्यते, ऐसे और कई विचार हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें अपने जीवन को है वो किस तरीके से यानी कि वास्तविक हमारे जीवन में सुख क्या है और दिखावे की दुनिया है वो क्या है और हमें किस और जानना चाहिए, यानी कि एक हमारे जीवन में जो पथ प्रदर्शक का जो कार्य करता है वो ये हमारे जो विचार है जो हमें प्राचीन पुस्तकों में है वो या ग्रंथों में है वो देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही विचारों को हम अपनाकर अपने जीवन में है वो आगे बढ़ सकते हैं और अपना पथ प्रदर्शक के रूप में हम अगर हम इनको अपनाते हैं, ऐसे विचारों को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन आज के जो आधुनिक जो चकाचौंध का जो जीवन है या दिखावे का जीवन है या भौतिकवाद की ओर जो हमें लेके जा रहा है, हम एक दूसरे को दिखाने के लिए या कह सकते हैं कि एक दूसरे को देखकर जो ये दिखावे का जीवन जी रहे हैं, सादगी को हम भूलते जा रहे हैं। और आजकल इंसानों की जो सोच है वो भी आप देख सकते हो कि किस प्रकार प्रभावित हो रही है और उसका स्तर किस प्रकार नीचे गिरता जा रहा है। तो ऐसे में जो ये सादा जीवन उच्च विचार है या अभी हमने बात की सेवा ही परमो धर्म है, ऐसे जो विचार है वो प्रासंगिक होते जा रहे हैं और इनको अपनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है। तो सबसे पहले तो हमें सीखना है, अपने जीवन में इनको अपनाना है और अपने जो बच्चे हैं या हमारे आसपास हमारे परिवार में जो बच्चे हैं उनके अंदर बचपन से ही ये नींव डालने का समय है वो पुनः आ गया है कि उनके अंदर ऐसी सोच ऐसे विचार हमें डालने हैं जिससे कि वो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े और इस चकाचौंध की दुनिया से, इस दिखावे की दुनिया से, इस भौतिकवाद के युग से बाहर निकलकर है वो अपने जीवन में ऐसे विचारों से पथ प्रदर्शक है वो करें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म बॉर्डर से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में ये प्यारा सा गीत। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो अपनी दोस्त अर्चना को दीजिए इजाजत।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सबसे पहले जानकारी देते हैं दिल्ली से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। तो श्रोताओं, रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9 बजे News@9 और रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

श्रोताओं, शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 का समय रहेगा राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार का। इसका प्रसारण आकर

श्रोताओं आइए सुनते हैं आकाशवाणी के जैसलमेर केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का समय और कार्यक्रम का नाम। श्रोताओं 6:15 पर आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शाम 7:00 ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। शाम 7:30 पर और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में लोक संगीत। रात्रि 8:00 का समय रहेगा कार्यक्रम विकास यात्रा का, विषय होगा स्टार्टअप इंडिया। इस कार्यक्रम के वाचक स्वर है शरद शर्मा का और निर्देशन है रामजी लाल मीणा का। आठ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जय जवान सुन संगीत पर आधारित। 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुन संगीत। श्रोताओं ये थी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

बेटियों को विदा कर बारातियों से विदा मांगते हुए राजा जनक ने समधि तथा उनके स्वजनों का भरपूर सम्मान किया। मुनि मंडली के सामने शीश झुकाकर उनका आशीष प्राप्त किया और फिर जामाताओं को हाथ जोड़े अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए बोले, आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन बनाकर मुझे अपनाया। मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा अपरिमित है। मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे ये याचना करता हूं कि मेरा मन भूलकर भी आपके श्री चरणों को ना छोड़े। श्री राम ने पिता दशरथ, मुनिवर विश्वामित्र, कुलगुरु वशिष्ठ तथा पिता सदृश जनकराज का विनयपूर्वक सम्मान किया। मिथिलेश ने भरत को स्नेहपूर्वक प्रेमाशीष दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को आशीषा और फिर मुनिवर विश्वामित्र के चरणों में नतमस्तक हुए, जिनकी कृपा से ही आज उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बोले, हे स्वामी, आपकी अनुकंपा से ही मुझे ये सुख, सुयश और सभी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं।

अभी श्रोता सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस दान। यह आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्य, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: नाचे सारा अंग अंग छाया चहुर रंग कृष्ण भूले सारे ढंग करे गोपियों को तंग
1: नाचे सारा अंग अंग छाया चहुर रंग कृष्ण भूले सारे ढंग करे गोपियों को तंग
0: भाग हुआ मत वाला भाग हुआ मत वाला झूमे गोकुल का वाला भागे धीरज की बाला देखो छेड़े नंद लाला
1: भजो गोविंद हरे
0: भजो गोविंद हरे
1: भजो गोविंद हरे भजो गोविंद हरे भजो गोविंद।

0: बड़े ठीठ है कन्हाई, बड़े ठीठ है कन्हाई, ऐसी बांसुरी बजाई, सुध बुध बिसराई, राधा दौड़ी दौड़ी आई।
1: भजो गोविंद हरे, भजो गोविंद हरे,
0: भजो गोविंद हरे, भजो गोविंद हरे,
1: भजो गोविंद

0: सदगुर श्याम श्याम देखो जमुना भी श्याम, गोप गोपी हुए श्याम भया बिरज भी श्याम।
1: सदगुर श्याम श्याम देखो।

0: राधा मन बस श्याम श्याम रंग गयो श्याम हर रंग हुआ श्याम अंग अंग हुआ श्याम
1: भजो गोविंद हरे भजो गोविंद हरे
0: भजो गोविंद हरे भजो गोविंद हरे
1: भजो गोविंद

0: इस तन में रमा करना, इस मन।
1: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण FM बैंड 101.8 MHz पर उपलब्ध हैं। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से पहले हिंदी में समाचार, फिर जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: जाओ भाई।
1: आरबीआई कहता है
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये अमेर चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसेवा में समर्पित कार्मिकों को सुशासन का मूल आधार बताया। कहा, सरकार ने कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, सरकार देश की न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार ने एथेनॉल मिले पेट्रोल से ईंधन टैंक में समस्या से जुड़ी खबर को फर्जी बताते हुए खंडन किया है। और प्रदेश में मॉनसून के धीमे पड़ने से उमस भरी गर्मी का असर, पश्चिमी और सरहदी क्षेत्रों में दिन का तापमान बढ़ा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जनसेवा में समर्पित अधिकारी और कर्मचारी सुशासन का मूल आधार है। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ धरातल पर उतारने से ही सुशासन स्थापित होता है। मुख्यमंत्री आज जयपुर में सचिवालय कर्मचारियों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे। श्री शर्मा ने कहा कि शासन सचिवालय प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आशाओं और अपेक्षाओं का केंद्र है और प्रत्येक कर्मचारी गुड गवर्नेंस की धुरी और विकसित राजस्थान 2047 के महत्वपूर्ण सारथी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और कर्मचारी हित में प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से आज नियमित हवाई सेवा शुरू हुई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री और

0: जबलपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने यात्रियों को टिकट और स्वागत किट प्रदान कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान बेंगलुरु से पहली फ्लाइट के यात्रियों का भी पारंपरिक राजस्थानी लोक संस्कृति के साथ स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि नए टर्मिनल के शुरू होने से पिछले 12 साल से चला आ रहा इंतजार आज समाप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यहां से नियमित विमान सेवाओं का संचालन होना समूचे मारवाड़ के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ने ग्रो किया, आज वो यात्रियों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई और जोधपुर एयरपोर्ट पर कुल परिचालन होने वाली हवाई जहाजों की संख्या भी जो एक सप्ताह में जिसके आधार पर कैलकुलेट करता हूँ वो भी लगभग 10 गुना बढ़ गया। आज जोधपुर देश के हर लगभग बड़े शहर से केंद्र से कनेक्टेड है। जोधपुर विंटर सीजन में जोधपुर सभी महानगरों से कनेक्टेड है और आने वाले समय में जिस तरह से हवाई जहाजों की संख्या देश में बढ़ रही है, आने वाले समय में जोधपुर की कनेक्टिविटी और भी अधिक बेहतर होगी।
0: गौरतलब है कि जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को लोकार्पण किया था। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार देश की न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी, तकनीक सक्षम और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज गुरुग्राम में नए न्यायालय परिसर टावर ऑफ जस्टिस के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की संवैधानिक जिम्मेदारियों से ही न्याय की मूल भावना साकार होती है और राष्ट्र प्रगति पथ पर आगे बढ़ता है।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, केवल नए भवन का उद्घाटन का अवसर नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ, सशक्त और नागरिक केंद्रित बनाने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। ये नवीन न्यायिक परिसर उस संकल्प का साकार रूप है जिसके केंद्र में प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण, प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
0: समारोह में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हरियाणा तथा पंजाब न्यायालयों के न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन गंभीर चेतावनी का संकेत है। इस संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल की है। आज नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। श्री चौहान ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान और मिशन लाइफ जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है।
3: 2050 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हर साल 4% की कमी आने की संभावना है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। ये आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा और इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ता है। उनकी आजीविका, उनका स्वास्थ्य, उनका जीवन स्तर इस पर पड़ रहा है और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: प्रदेश भर में एक पेड़ माँ के नाम और हरियालो राजस्थान के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज कोटा में रखे गए वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने पौधा लगाकर आम जन से भी हरित राजस्थान के लिए सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस फर्जी तस्वीर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन की ईंधन टैंक में समस्या हो सकती है। पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित

0: मानकों के अनुरूप है। पीआईबी ने पेट्रोलियम मंत्रालय के हवाले से ये भी आश्वासन दिया कि भारत में आपूर्ति किया जाने वाला एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन करता है और उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाने से पहले इसका गहन परीक्षण किया जाता है। पीआईबी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 350 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने पर 5 लाख रुपये का ऋण मंजूर होने का दावा करने वाले एक फर्जी पत्र का भी खंडन किया है। ब्यूरो ने लोगों से ऐसे फर्जी संदेशों से सतर्क रहने, किसी भी प्रकार का पैसा स्थानांतरित नहीं करने और अपनी व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी साझा नहीं करने की अपील की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू हुई। 18 जुलाई तक चलने वाली ये भर्ती परीक्षा कुल 9,651 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। इसके लिए प्रदेश के 27 जिलों में 1200 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हमारी अजमेर संवाददाता ने बताया कि आज पहले दिन सामान्य ज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षाएं ली गई।
1: पहले दिन 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। यह परीक्षा 18 जुलाई तक प्रदेश के 27 जिलों में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा में 12,31,973 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों से किसी भी दलाल या बिचौलियों के बहकावे में नहीं आने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना आयोग के कंट्रोल रूम पर तत्काल देने की अपील की है। नलमा धादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: डूंगरपुर में एक एनिकट में डूबने से आज 3 सगे भाई बहनों सहित 4 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसे का शिकार ये बच्चे जिले के धम्बोला क्षेत्र के बड़ी गांव के रहने वाले थे और एनिकट में सुबह नहाने गए थे। इस दौरान अधिक गहराई में जाने से ये हादसा हुआ। घटना के दौरान 2 बच्चों को आसपास के लोगों ने समय रहते बचा लिया। हादसा स्थल के पास मंदिर होने के कारण बारिश के मौसम में बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के चलते दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पाली जिले में वस्त्रों के पैकिंग बैग की कई यूनिट इन दिनों स्थापित हुई है। इनमें अधिकतर ने कुटीर उद्योग के तौर पर पहचान बनाई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले भर में 20,000 से अधिक महिलाएं घरों पर ही पैकिंग बैग तैयार कर वस्त्र निर्माता इकाइयों को भेज रही हैं और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं।
2: विभिन्न वस्त्रों की पैकिंग में उपयोग होने वाले बैग स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। इससे उद्योगों को सूरत, अहमदाबाद और अन्य महानगरों पर निर्भरता कम की है एवं स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। बैग निर्माण के लिए कटिंग का कार्य यूनिट में किया जाता है। बाद में इसकी सामग्री महिलाओं के घरों तक पहुंचाई जा रही है। महिलाएं घर पर सिलाई कर पैकिंग बैग तैयार कर रही है। घर बैठे लगभग 20,000 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ उनका आर्थिक विकास हो रहा है और पाली के उद्योगों को नई गति मिल रही है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
0: सरहदी जिले श्रीगंगानगर में महिलाओं को कार्यस्थल पर समानता देने और भेदभाव तथा उत्पीड़न की रोकथाम के लिए आज सेमिनार आयोजित की गई। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल और जिला न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने इसमें शिरकत की। इस दौरान कई न्यायकर्मी मौजूद रहे। सेमिनार में न्यायिक कार्यों के दौरान और फैसलों में महिला सम्मान भाषा के उपयोग और कार्यस्थलों पर महिलाओं के अधिकारों पर जानकारी दी गई। प्रदेश में मॉनसून के धीमे पड़ने से उमस भरी गर्मी का असर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। सरहदी और पश्चिमी जिलों में दिन के समय तापमान बढ़ने लगा है। श्रीगंगानगर में बीती 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं फलौदी और जैसलमेर में भी दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हुआ। अधिकांश जिलों में बरसात की गतिविधियां थमने से किसानों के चेहरों पर मायूसी देखी जा रही है। वहीं जैसलमेर में आज आंधी चलने से जनजीवन प्रभावित रहा। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान के ऊपर मानसूनी बादल फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन बरसात की गतिविधियों में कमी बने रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसेवा में समर्पित कार्मिकों को सुशासन का मूल आधार बताया। कहा, सरकार ने कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, सरकार देश की न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार ने एथेनॉल मिले पेट्रोल से ईंधन टैंक में समस्या से जुड़ी खबर को फर्जी बताते हुए खंडन किया है। और प्रदेश में मानसून के धीमे पड़ने से उमस भरी गर्मी का असर, पश्चिमी और सरहदी क्षेत्रों में दिन का तापमान बढ़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: रिन्यूएबल एनर्जी और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे उभरते क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, ताकि यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी केवल रोजगार प्राप्त करने वाले नहीं बल्कि भविष्य की तकनीकों का नेतृत्व करने वाले बने। पिछले दिनों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय RTO परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आयोजित सघन पौधरोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस अवसर पर वन विभाग ने ड्रोन के माध्यम से सीड बॉल्स गिराने की अभिनव पहल की शुरुआत की। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और विधायक संदीप शर्मा भी उपस्थित रहे। अपने कोटा प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यू मेडिकल कॉलेज परिसर में 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले कॉटेज वार्ड का भूमि पूजन किया और करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से निर्मित PG हॉस्टल्स का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बीते दिनों कोटा दौरे पर रहे। उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोटा के गोपालपुरा मंडाना में आम सभा को संबोधित किया। श्री गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेस वे केवल आवागमन का माध्यम नहीं बल्कि क्षेत्र के चहुमुखी विकास का हाईवे है। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस वे में लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए की लागत से 75 से 80% काम पूरा हो गया है, शेष काम भी तेजी से प्रगति पर है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विकसित की जा रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और भारत माला जैसी महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाएं राजस्थान के विकास को नई गति प्रदान करेंगी। विश्व जनसंख्या दिवस पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कोटा को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कोटा जिले को प्रमाण पत्र और 9,00,000 रुपए की राशि की घोषणा कर सम्मानित किया। पिछले दिनों कोटा बारा झालावाड़ न्यायिक क्षेत्र के न्यायिक अधिकारियों की पहली त्रैमासिक वर्कशॉप कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने दीप प्रज्वलित कर इस सेमिनार का उद्घाटन किया। श्री भाटी ने लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में जजों की भूमिका पर विशेष बल दिया। उन्होंने कार्यस्थलों पर महिलाओं की गरिमा के अधिकार को सुनिश्चित करने और उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने को भी कहा। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 UCC के प्रारूप पर सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला परिषद सभागार कोटा में संभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न धर्मों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, विधिवेत्ताओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों ने भाग लेकर अपने सुझाव दिए। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न प्रतिभागियों ने संविधान की मूल भावना के अनुरूप सभी नागरिकों के लिए समानता, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता तथा विधिक स्पष्टता जैसे विषय पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग के साथ जिला स्तरीय रोजगार उत्सव सियाम ऑडिटोरियम में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, JVVNL और अन्य विभागों में चयनित 1207 नए चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र और बधाई संदेश प्रदान किए। इसी के साथ कोटा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंचा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जन सेवा में समर्पित कार्मिका ने सुशासन रो मूल आधार बताया। कयो सरकार कर्मचारी कल्याण का ने महत्व कदम उठाया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो सरकार देश री कानून व्यवस्था ने बत्ती सरल, साफ गोई और नागरिक केंद्रित बनावण का ने बरोबर काम कर रही है। सरकार एथेनॉल मिलिया पेट्रोलों ईंधन टैंक में समस्याओं जुड़ी खबर ने फर्जी बतावता खंडन करियो है और प्रदेश में मानसून रहे धीमो पड़नों उमस भरी गर्मी रो असर आथूनी और सर्दी हल्का माए दिन रो तापमान बढ़ियो।

0: समाचारों साथ है, मैं शंभू सिंह और अब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि जनसेवा में समर्पित अहलकार और कार्मिक सुशासन रो मूल आधार है। वना कहो कि जन कल्याणकारी योजनावा और नीतियां ने संवेदनशीलता साफ हुई और भगत सर धरातल माथे उतारण हुए सुशासन स्थापित हुए है। मुख्यमंत्री आज जयपुर में सचिवालय कर्मचारियों कानियों व्या सम्मान जलसा में बोल रहा है। श्री शर्मा कहो कि शासन सचिवालय प्रदेश री 8 करोड़ जनता री आशावा और अपेक्षावा रो केंद्र है और हर कार्मिक गुड गवर्नेंस री धुरी और विकसित राजस्थान 2047 रो मैतव सारथी है। मुख्यमंत्री कहो कि हमारी सरकार कर्मचारी कल्याण कानी ऐतिहासिक कदम उठाया है और कर्मचारियों रा हित में प्रतिबद्धता रे साथ काम करिया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो है कि केंद्र सरकार देश रा न्याय बंदोबस्त ने 32 सरल साफ गोई तकनीक पूर्ण और नागरिक केंद्रित बनावन सारू बरोबर काम कर रही है। आज गुरुग्राम में नुआ अदालत परिसर टावर ऑफ जस्टिस रा उद्घाटन मौके वना कहो कि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिकारी संवैधानिक जिम्मेदारियों में न्याय री मूल भावना साकार हुए है और राष्ट्र प्रगति रा पथ माथे आगे बढ़े है।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, केवल नए भवन का उद्घाटन का अवसर नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ सशक्त और नागरिक केंद्रित बनाने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। ये नवीन न्यायिक परिसर उस संकल्प का साकार रूप है जिसके केंद्र में प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
0: जलसा में सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हरियाणा और पंजाब री अदालतों रा न्यायाधीश और न्यायिक अहलकार मौजूद रिया। जोधपुर हवाई अड्डा नुआ टर्मिनल आज बरोबर हवाई सेवा शुरू हुई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत जातियां ना टिकट और स्वागत किट देर वारो स्वागत करियो। ई दौरान बेंगलुरु पहली फ्लाइट रा यात्रियां रोई रीत मुजब राजस्थानी लोक संस्कृति रे साथ स्वागत करीजियो। मीडिया साथ है बतलमाए श्री शेखावत कहो कि नुआ टर्मिनल रे शुरू होवणु लारला 12 सालों चादरिया इंतजार आज पूरो भी हो। वना कहो कि 8 नियमित विमान सेवाओं रो संचालन वेणु आखा मारवाड़ सारू ऐतिहासिक कामयाबी है।
2: जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ने ग्रो किया आज वो यात्रियों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई और जोधपुर एयरपोर्ट पर कुल परिचालन होने वाली हवाई जहाजों की संख्या भी जो एक सप्ताह में जिसके आधार पर कैलकुलेट करता हूँ वो भी लगभग 10 गुना बढ़ गया। और जोधपुर देश के हर लगभग बड़े शहर से केंद्र से कनेक्टेड है। जोधपुर विंटर सीजन में जोधपुर सभी महानगरों से कनेक्टेड है और आने वाले समय में जिस तरह से हवाई जहाजों की संख्या देश में बढ़ रही है आने वाले समय में जोधपुर की कनेक्टिविटी और भी अधिक बेहतर होगी।
0: ध्यान जोगे के जोधपुर हवाई अड्डा नुआ टर्मिनल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई ने करियो हो। 480 करोड़ रुपया की लागत 37 एकड़ में बनया ई टर्मिनल भवन में 8 प्रवेश दरवाजा है और यात्रियों ने सीधा हवाई जहाज ताई पुगावन सारू कई आधुनिक सुविधा विकसित करी जी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो है कि जलवायु बदलाव घनी चिंता रो संकेत है। इस संकट निपटन सारू केंद्र सरकार कई पहल करी है। आज नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में बोलता श्री चौहान कहो कि आखी दुनिया जलवायु बदलाव और धरती रो तापमान बढ़ने लेर चिंता में है। वना कहो कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा बूता में महत्व बढ़वार भी है। श्री चौहान एक पेड़ माँ के नाम अभियान और मिशन लाइफ सरी की पहला रो जिक्र करता कहो कि भारत साल 2070 ताई शून्य कार्बन उत्सर्जन रो लगस तय करियो है।
3: 2050 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हर साल 4% की कमी आने की संभावना है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा और इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ता है। उनकी आजीविका उनका स्वास्थ्य उनका जीवन स्तर इस पर पड़ रहा है और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरण

0: आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: मानसून रे आवण रे साथ ही प्रदेश भर में एक पेड़ माँ के नाम और हरियाणा और राजस्थान रे तहत कई जागरूकता कार्यक्रम रखा जावे। ये कड़ी माए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज कोटा में व्याप वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत करी। ये मौके वना पौधा लगार लोगों हरित राजस्थान सारू सक्रिय भागीदारी निभावण री अर्ज करी। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। सरकार सोशल मीडिया माथे चाल रही उन फर्जी तस्वीरों खंडन करियो है जिनमें दावो करी जो है कि इथेनॉल मिला पेट्रोल वाहन रा ईंधन टैंक में समस्या वह सके है। पीआईबी री तथ्य जांच इकाई ई दावा ने झूठो बतावता कहो है कि तेल विपणन कंपनियां कानियों सप्लाई किया जाने वाला E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो रा तहत मानका मुजब है। पीआईबी पेट्रोलियम मंत्रालय रा हवालाओं भरोसो दियो है कि भारत में सप्लाई किया जाने वाला इथेनॉल मिला पेट्रोल में ऊंची गुणवत्ता मानका नु पालन करी जो है और उपभोक्ता ने मुहैया कराया जाने पहला इन रो गहराई रे साथ परीक्षण करियो जावे है। पीआईबी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे तहत 350 रुपया प्रोसेसिंग फीस जमा करण माथे 5 लाख रुपया रो कर्ज मंजूर होने रो दावो करण वालो एक फर्जी कागज बतायो है। पीआईबी लोगों इन तरह रा फर्जी संदेशों सावचेत रहवाण और किणी तरह रा रुपया नी भेजण और आप री खुद री बैंक री जानकारी साझा नी करण री अर्ज करी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग कानियों आज वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू हुई। 18 जुलाई तक चालन वाली आ भर्ती परीक्षा कुल 9651 औदा सारू वह रही है। इस सारू प्रदेश रा 27 जिला में 1232 परीक्षा केंद्र बनाई जा है। आज पहले दिन सामान्य ज्ञान और सामाजिक विज्ञान री परीक्षा माली रिजी।
2: पहले दिन 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। यह परीक्षा 18 जुलाई तक प्रदेश के 27 जिलों में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा में 12,31,973 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों से किसी भी दलाल या बिचौलियों के बहकावे में नहीं आने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना आयोग के कंट्रोल रूम पर तत्काल देने की अपील की है। नलमा धादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
1: डूंगरपुर में एक एनिकट में डूब जावणु आज 3 सगा भाई बहना समेत 4 टाबना री मौत वेगी। पुलिस बतायो के हादसा रा शिकार ए टाबर जिला रा धम्बोला हल्का रा बड़ी गांव रा रहवासी हा और एनिकट में सवारा नावण गया हा। ए दौरान घनी गहराई में जावणु ओ हादसो भियो। हादसा रे दौरान 2 टाबरा ने अरे सारे रा लोगा भगत रहता बचा लिया। पाली जिला में कपड़ा रा पैकिंग बैग री के यूनिट आदिना स्थापित भी है। इनमाय घनकरा कुटीर उद्योग रा तौर माते पिछाण बनाई है। मारा खबर ने इस बतायो के जिला माय 20,032 महिलावा घरा माते पैकिंग बैग तैयार करने कपड़ा बनावन वाली इकाया ने भेज रही है और आत्मनिर्भरता कानी आगे बढ़ रही है।
3: विभिन्न वस्त्रों की पैकिंग में उपयोग होने वाले बैग स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। इससे उद्योगों को सूरत, अहमदाबाद और अन्य महानगरों पर निर्भरता कम की है एवं स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। बैग निर्माण के लिए कटिंग का कार्य यूनिट में किया जाता है। बाद में इसकी सामग्री महिलाओं के घरों तक पहुंचाई जा रही है। महिलाएं घर पर सिलाई कर पैकिंग बैग तैयार कर रही है। घर बैठे लगभग 20,000 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ उनका आर्थिक विकास हो रहा है और पाली के उद्योगों को नई गति मिल रही है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
1: प्रदेश में मानसून रे धीमो पड़नु गर्मी रो असर एक और फिर दिखन लाग्यो है। सरदी और आथोणी जिला में दिन रो तापमान बढ़न लाग्यो है। श्री गंगानगर में लाडला 24 घंटा रे दौरान बत्ती रो तापमान 41 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज करी जो। वठे फलोदी और जैसलमेर में दिन रो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रे आरे सारे रिकॉर्ड भी हो। घनकरा जिला में बिरखारी गतिविधियां थम जावनु कास्तकाना रा चेहरा माथे उदासी देखी जावे। जैसलमेर में आज धूल भरी आंधी चालन जिंदगी माथे असर पड़ियो। ई बीचे मौसम महकमो कहो है कि सैटेलाइट इमेज में राजस्थान रे ऊपर मानसूनी बादल अजय नजर नहीं आ रिया है। महकमा मुजब आवता 3-4 दिन बिरखारी गतिविधियां में कमी बनी रहने की आस है। सरदी जिला रा श्री गंगानगर में महिलाओं ने काम री ठोड़ बरोबरी देवण और भेदभाव उत्पीड़न माथे रोकथाम सारू आज सेमिनार भी हो। राजस्थान हाईकोर्ट रा न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल और जिला न्यायाधीश रविंद्र कुमार कार्यक्रम में शिरकत करी। ई दौरान कई न्यायिक कर्मी मौजूद रिया। सेमिनार में न्यायिक कामा रे दौरान और फैसला माय महिला सम्मान भाषा काम माय लेवण और काम री ठोट महिलाओं रे हक री जानकारी दीरी जी। हनुमानगढ़ जिलो आज आप रो 32वां स्थापना दिवस मनावे। तीन दिन रा उत्सव रा आखिरी दिन आज भटने दुर्ग माय पूजा अर्चना और रन फॉर हनुमानगढ़ भी हो। ई मौके न्यारी न्यारी होना भी और एक पेड़ माँ के नाम अभियान रहते पौधाई रोपी जा। ने अबे आखिर माय खास समाचार आप एक और फिर सुन दे रहो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जन सेवा माय समर्पित कार्मिका ने सुशासन रो मूल आधार बताया। कयो सरकार कर्मचारी कल्याण कानी महत्व कदम उठाया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो सरकार देश री न्याय व्यवस्था ने बत्ती सरल साफ गोई और नागरिक केंद्रित बनावन कानी बरोबर काम कर रही है। सरकार इथेनॉल मिलिया पेट्रोलो ईंधन टैंक माय समस्याओं जुड़ी खबर ने फर्जी बतावता खंडन करियो है। और प्रदेश माय मानसून रे धीमो पड़नो उमस भरी गर्मी रो असर आथुणी और सर्दी हल्का माय दिन रो तापमान बढ़ियो। मैं इन साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भी हो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी माय प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं रेडियो गोल्डन सिटी से। हमारे प्रसारण एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर उपलब्ध हैं। इस समय शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: ग्रामीण सुनाड़े सभी भाइयों
1: अरुण भाई लाल
0: मनोज भाई
1: राम राम। आज पाछा रविवार दिन आप किसान भाइयों से ग्राम जगत के कार्यक्रम के माध्यम से बंतर कराएं और जो बंतर कराएं तो सबसे हालचाल तबियतरा रमा सामा भी करें और अलग अलग विषय में चर्चा भी करें और हर तो विषय बिल्कुल गेत गेत किसान मन में भी जरूर आई जो से भाई पानी में कौ करवे और बरसात बाढ़ जो है क्योंकि हर तो वैसे आंधी और चल रही है लेकिन हमें लोग जो बाढ़ बिठाए वो बरसात भी बाढ़ बिठा के बरसात आवे तो खेतों में जावे लेकिन बरसात जब आवे तो किसान भाइयों अपन कोई न कोई एक विशेष आयोजन अगर आप वर्षा और पानी में कई तरीके से आप कर सको लेकिन आप कह सको वर्षा और पानी में संरक्षण कई तरीके से कर सको
0: हाँ सरकार एक जो मुहिम चलाई है जुलाई से लेके आप कैच द रेन
1: कैच द रेन बिल्कुल कैच द रेन मतलब पानी ना कई तरीके से स्टोरेज करना और ए 4 जुलाई से लगाए के
0: 4 अगस्त
1: तक चालू रहते ये में आप पानी ना संरक्षण करना इनमें विशेष कर चुको है कि भाई जेत भी पानी गिरे वो थी सजे हुए तरीके से प्रमुख गतिविधियों और उद्देश्य यही है कि अपना जो भी सबसे महत्वपूर्ण अगर आप बात करो कि सपोज करो अपना मतलब पंजाब से पानी बंद हो जाओ तो पुराना जो अपना पारंपरिक जो स्रोत था वे ना आप कई तरीके से पाछो संरक्षण करके उन्होंने कई तरीके से सुचारू कर सको जिके कोई जमाने में अपना दादा बड़ा करता जैसे कि कुआ है बावड़ी है तालाब है और या वो साफ सफाई है ना उसको अगर आप चालू कर दो तो समय मत अगर पानी भरी जाओ तो आप साल भरे पानी कम आ सके उबरे साथ साथ में पुराने जमाने में जो देखे हो तो आप पानी भिड़ो कर रखता पाल पानी जो अपन कहता तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हर घर में आदमी ये तरीके की आप बढ़िया इमारत जो बनाओ ये तरीके रो छतरो पानी जो है भिड़ो हो टोके में जावे और टोके से पानी किसी साफ हो जाओ जो अपने पानी पीने में भी कम आवे।

0: पूरे साथ ना हो दोनों भी कम आवे और आपको ना कोई भी चीज पात्र आपको कम ले सको। पूरे साथ साथ में बोरवेल रिचार्जिंग, अगर आप इस तरीके का छोटा गड्ढा इस तरीके का बोरवेल करो तो पानी जैसी भेड़ो उड़ो तो बोरवेल में जाओ। विशेषकर ये मैं देखो जन भागीदारी बहुत ही जरूरी है। जैसे जन भागीदारी में अपने ग्राम पंचायत में अपने कई राजीविका मिशन की महिलाओं हैं, अपना स्वयंसेवक है, अपना वन मित्र है, अपना समाज सेवी है, तो ये तरीके का कई नागरिक स्वयंसेवक बनोड़ा है, ग्राम समितियां बनोड़ी है, तो आपको हाथ जोड़ो और एक आंदोलन रूप में कार्यक्रम चलाओ तो विशेषकर आपको ये तरीके से कार्यक्रम चला सको।
1: बहुत बढ़िया बात होता है। साथ साथ जो है आपको भाई वर्षा जल न देख के जो भी आप तैयारी है, क्योंकि आपको देख रहे हो राजस्थान में जो है जैसलमेर के अलावा और कई भी क्षेत्रों में बारिश जो है अच्छी हो रही है। आने वाला समय में जैसलमेर में भी बारिश होगी, पहले आप जो भी है तैयारी पूरी तरह से कर ले ताकि उन्होंने बाद में कोई भी तरह की समस्या नहीं हो।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: आपको सुनता बढ़िया राजस्थानी लोकगीत और सरकार जारी।

तो किशन भाइयों से आप आज बात करी जल संरक्षण ही मनोज भाई और बिल्कुल जल संरक्षण जल ही जीवन है। तो आदमी कही कि भाई आने वाले समय में अगर कोई विश्व युद्ध भी हो तो ये जल रहते हो से, तो आप विशेषकर आज कार्यक्रम तो ये बात किसान भाइयों तक पहुँचानी यही है कि जितनी भी अपनी बावड़ियों हैं या कोई कैचमेंट में कहते अतिक्रमण है भी जो है तो पानी सही करे, उन्हें बावड़ियों साफ करे, तालाब और सफाई करे, थोड़ी बहुत खुदाई करनी तो खुदाई करे, क्योंकि हमें जो है वो केत न केत पानी बरसातों में अपने कौम आते हैं, पूरे साल तक है पानी कौम आवे, पालन पानी और भी पानी, तो पानी भी जब वो बात करें तो जब भेड़ी भेड़ी पशुधन की भी बात हुई, और जब पशुधन की बात हुई तो सबसे पहले गाय की बात हुई, क्योंकि गाय अपनी एक मार के रूप में वहाँ पर पूजो भी है और गाय अपने दूध दही वगैरह उसको एक कई तरह का रोजगार भी मिले। लेकिन किसान भाई जब गाय की जब बात हुई तो वो मतलब कई तरीके से कई विभिन्न बीमारियों जो है वो लग जाया करी और वो मतलब एक कई तरह की बीमारियों से मृत्यु भी हो जाए, विशेषकर वो एक बीमारी आई कर्रा बीमारी। कर्रा जो रोग है वो लगभग जैसलमेर और कुछ जगह मत ही है, विशेषकर जैसलमेर में वहाँ एक कर्रा जो रोग है एक मात्र एक मानक वैज्ञानिक नाम को नहीं है, एक विभिन्न राज्यों में प्रयोग अलग अलग रोगों में किए गयो। ए शब्द को विशेष रूप से गला घोटू शब्द रहे रोप रहे वहाँ इन्हें बोलो जाओ इन परिचय अगर आपको करो अगर बात करो तो गला घोटू एचएस अत्यंत संक्रमण रिजुको अगर बात करो जीवाणु जनित रोग है, मुख्य रूप से गाय और भैंस में होया करी और ये रोग विशेषकर बरसात के मौसम में आ गया, बरसात आने वाली ये मौसम में अधिक फैले, समय मत उपचार करना और जो पशु अगर कोई मृत्यु हो जाओ तो कई तरीके से वो निष्करण करना। रोग का जो कारण है संक्रमित पशु के संपर्क में आना, दूषित चारों और पानी जो होना, बरसात और मौसम में अधिक नमी होनी, पशुओं के साथ साथ जो है लंबी दूरी और परिवहन में अन्य तनाव होना, कमजोर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी, मतलब रोग का कारण है। कारण के साथ साथ अगर लक्षण भैया कई तरह के लक्षण दिखे, विशेषकर गायों 104-107 जो है टेम्परेचर वो बुखार में रही, पशु एकदम सुस्त हो जाओ, चारों खाना बंद कर दी, नाक से पानी और झाग आ गई, सांस लेने में कठिनाई आ गई, गले और गर्दन में जबड़े में नीचे सूख जाओ, मुंह में लाल टपकी, दूध देने वाला पशु दूध मतलब देना कम कर दी, गंभीर अवस्था में 12-18 घंटा भेज दो मर भी जाओ, तो मतलब खाई को पड़े जितने तक तो वो आदमी गाय की मृत्यु भी हो जाओ। रोग रोग निदान की बात करो तो रोग रोग लक्षण है मौसम और क्षेत्र में रोग रोग प्रयोग प्रकोप, पशु चिकित्सा द्वारा शारीरिक हमेशा जाँच की जानी चाहिए, अवस्था अगर पड़ जाओ तो रक्त और अन्य नमूनों की प्रयोगशाला में जाँच होनी चाहिए, विशेषकर अगर कोई गाय मर भी जाओ तो अगर गाय मरे तो उरे साथ साथ में गाय मरण के साथ अंतिम आप खाडो खुद के अगर आप करो तो आप ये चीज कर सको करा रोगरी और भी आप बातचीत कर सो करता संरक्षण जारी सुरसो राजस्थानी एक लोकगीत।

तो राजस्थानी लोग की सुनने बाद रहे मैं आपको आज बात करी कर्रा रोग रही है बिल्कुल बिल्कुल जो कर्रा रोग है वो किसान भाइयों विशेषकर जो कर्रे भी अगर आपको बात करो कर्रा रोग जो है आप कह सको कि भाई अलग अलग कोई भी गाय अगर आप मर जाओ तो गाय के बाद रहे मैं आपको वो चीज़ जो विशेषकर कोई तरीके से ध्यान रखो कर्रा रोग जो है वो विशेष आज को विशेष आपको बताओ अगर बात करो तो ये विशेष आर्थिक जो नुकसान अपना हुई दूध उत्पादन की कमी हो जाए पूरे साथ उपचार अतिरिक्त खर्च हुए पशुओं में भी कई तरीके की भारी आर्थिक नुकसान हुई निष्कर्ष तो यही है भाई प्रत्येक आदमी आप टीकाकरण समय मत करे पशुपालन में नियमित सफाई और कीटाणु रखे स्वच्छ पानी में असंतुलित आहार दे नया खरीदना पशुओं कई तरीके अलग रखे निगरानी रखे पूरे तरीके का बताओ कारण है जब आप आज 12 जुलाई की अगर बात करो तो आज जो 12 जुलाई है अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस के रूप में भी आप भाइयों मनाओ संयुक्त राष्ट्र संघ महासंघ इस तरीके की 12 जुलाई तय करी उद्देश्य यही है कि भाई लोगों की आशा सकारात्मक सोचना बढ़ावा मिलना मानसिक स्वास्थ्य भावनाओं कई तरीके से जागरूक करना समाज में शांति और सहयोग सहिष्णुता एकता की भावना ने मजबूत करना और जो महत्व जो है आशा व्यक्तियों चुनौतियों का सामना कर रहे शक्ति प्रदान करना ये तरीके से आशा से प्रेरित होकर व्यक्ति समाज सकारात्मक परिवर्तन दिशा में कई तरीके से कार्य कर सके ये बात करनी ये दिवस न जो है आप लोगों की सेवा में दया में सहयोग में कार्य में इस तरीके से प्रेरित करनी जागरूकता अभियान संगोष्ठी आयोजित करनी मानसिक स्वास्थ्य जो है उन्हें सामुदायिक करनी सबसे विशेषकर अगर आप एक छोटी सी बात में अगर निष्कर्ष निकाला तो यही कि आशा केवल एक भावना नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति और समाज और विश्व न बहुत बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ा हुई और भी वास्तव में प्रेरित भी करी यह दिवस जो है वो सकारात्मक स्रोत रो मानवता रो सहयोग रो और मूल्य ने अपना और प्रेरणा देव लो है ये आज 12 जुलाई के दिन जो आप इस तरीके रो मनाया करें विशेष करें आप जो जो आवश्यकता जो है सकारात्मक स्रोत वास्ते एक दूसरे रो आदमी सहयोग कई तरीके से करे मानवता से सहयोग करे मानवता की भावना से मजबूत पकड़ हो सके कार्य न दूसरे जीवन में आशा से प्रकाश फैलावे कई अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस वास्तविक उद्देश्य है किसान भाइयों बात यही है कि भाई आदमी आदमी भी कौकर सहायता कर सके इंसानियत रख सके और समय समय में हर आदमी आप लोग आदमी सहयोग कर सके तो आज कई चीज़ों की बात में आपको बात करी कर्रा रोग की बात करी वर्षा जल संरक्षण की भी बात करी विशेषकर तीनों बातों आज बहुत अच्छी अच्छी बातों और

आने वाले टाइम में आप संरक्षण भी करना है वर्षा रो, जब वर्षा घनी हो जाते हैं तो अपन गायों की सुरक्षा करनी है, करना रहे क्योंकि गाय हो से पानी कीचड़ हो से कीचड़ हो से तो मच्छर भी हो से, और उसके साथ साथ में वे संस्था है स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से कई तरीके से लोगों में जागृति पैदा करके संरक्षण करना, और उसके साथ साथ में आज जो आपको बातों करी समय की सीमा देगा अपने अपने किसान भाई का नाम राम राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। यह आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है। इस समय शाम के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत।

রাধা খেলো তোরণ পোট কমলা আজ বাজিল তোরি খিমে

心的底线，别人说跟着来，他们说你。

चाय मारी मुमले मैं हूँ मोरियो रे तू है मोरनी हाँ हाँ ये मिजाजन मैं हूँ मोरियो रे तू है मोरनी मिठ बोली ये मैं ना मैं हूँ मोरियो रे तू है

0: पर तने देख कर थिरकन लागे मारे मन रो पारो
1: तने देख कर थिरकन लागे मारा मन रो पारो साचे मन बसिया तू तो है हीरा मैं हूँ धारी कड़ी मारा प्रीतम प्यारा तू तो है हीरा मैं हूँ धारी कड़ी
0: साचा ही रस बनती तू है धन मारो मैं उधारो धनी हाँ हाँ मारे प्यारी तू है धन मारो मैं उधारो धनी।

0: साचाई गज गामन मैं बूरे सोनो तू है रतन मणि हाँ हाँ हरि मरवण मैं बूरे सोनो तू है रतन मणि
1: साचाई रे चोला तू तो है बनड़ो मैं हूँ हरि बनी हाँ हाँ रंग रसिया

0: ना देखो ना तन देखने दे ना मैं कोई और न देखो ना तन देखने दे
1: जय मार राजा मैं हूँ रस माथी थारी कामणी सा जय मार राजा मैं हूँ रस माथी थारी कामणी
0: सा जय मार रानी रह जे निज राम मार बनी खड़ी
1: सा जय मार राजा मैं हूँ रस माथी थारी कामणी
0: सा जय मार रानी रह जे निज राम मार बनी खड़ी।

हे घर घर हुए पूजा तारी गाँव गाँव चसगावे जी, घर घर हुए पूजा तारी गाँव गाँव चसगावे जी, रूणे चेरा राम देव जी सुतो है तो आव जी, रूणे चेरा राम देव जी सुतो है।

0: soir Maro, elle le chambre. Oh, la magie.
1: श्रोताओं, इन्हीं लोक गीतों के साथ हमारा राजस्थानी लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विकास यात्रा। विकास यात्रा कार्यक्रम का विषय है स्टार्टअप इंडिया। इस कार्यक्रम का वाचक स्वर है शरद शर्मा का और निर्देशन दिया है रामजी लाल मीणा ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम विकास यात्रा।
2: आजादी का अमृत महोत्सव।

0: श्रोताओं, भारत एक विकासशील देश है और जो देश विकास करना चाहते हैं उन देशों के लिए युवा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और युवाओं के नए आइडिया उस देश की तेजी से तरक्की कर सकते हैं। हमारे साथ हैं आज विकास यात्रा में शरद जी और मैं श्याम भी सिंह।
1: नमस्कार हमारे सभी सुनने वालों को।
0: तो शरद जी, आज हम बात करेंगे कि हमारे युवा हमारे भारत की विकास यात्रा में किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि उनके योगदान के बिना तो हम शायद विकास की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि युवा वो शक्ति है जो अपनी ताकत, सोच और विचारों के बल पर हमारे देश को आगे ले जा सकती है।
0: श्रोताओं, युवाओं में शक्ति तो होती है, लेकिन इच्छा शक्ति ये पैदा करने के लिए हमें सहारे की जरूरत पड़ती है। यानी क्या कुछ करना है उसके लिए अनुभव की कमी होती है उनमें, और उस उनको अगर अनुभव का सहारा मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सरकार ने कुछ ऐसे प्रयास किए हैं कि यदि युवा हमारा कुछ करता है, उनके पास नए आइडिए हैं, तो उनके लिए बहुत सारी योजना है। उनमें से एक योजना है स्टार्टअप इंडिया। शरद जी, स्टार्टअप इंडिया की हम बात करें तो भारत में आज यूँ कहें कि हजारों की संख्या में नए स्टार्टअप सरकार ने शुरू करवाए और काफ़ी कुछ उसमें कामयाब भी हुए हैं। हम अगर तुलना करें यही कि आज हमारे देश में जो स्टार्टअप इतनी भारी संख्या में शुरू हो रहे हैं, उसका कारण सरकार का सहयोग है, सरकार की जो युवाओं को अनुदान दिए जा रहे हैं उनकी हिम्मत बढ़ाई जा रही है। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं, एक युवा पढ़ लिखने के बाद में वो सीधी सादी एक नौकरी करके अपना जीवन यापन करना चाहता है, कारण उसका कि उसके अनुभव की कमी होती है और रिस्क के लिए इतना पैसा भी नहीं होता कि मान लो बिजनेस करें तो कहाँ से पैसा लाएं, अगर कुछ हो जाए तो फिर वो चुकाएगा कैसे, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन सरकार ने इन युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत सारे ऐसे योजना और योजना से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु और ऐसे लोगों को मतलब शामिल किया है कि जो युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनके स्टार्टअप शुरुआत करवा रहे हैं। तो सर जी, हम जानेंगे आज स्टार्टअप इंडिया से भारत को कितना फायदा हो रहा है। पहले आपसे हम जानते हैं कि ये योजना क्या है और कोई युवा इस योजना से कैसे लाभ ले सकता है।
1: देखिए, हमने बात युवाओं की थी कि एक स्तर पर पहुंचने के बाद युवा चाहता है कि उसका भविष्य सुरक्षित हो और उसको एक अच्छी सी खासी नौकरी मिल जाए जिसमें वो अपना घर और जीविकोपार्जन करता रहे। लेकिन देखिए, अब बढ़ती हुई आबादी और रिसोर्स के जो अभी के हमारे संसाधन कह सकते हैं जिसको वो हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो

0: को सरकारी नौकरी या अन्य सेक्टर में नौकरी मिल पाना मुश्किल होता है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सब नौकरी नहीं कर सकते, सब बिजनेस नहीं कर सकते, तो इसका सबका अलग अलग जो सेक्टर होता है उसके हिसाब से काम निर्धारित होते हैं। सरकार तो क्या है कि हर व्यक्ति के जीवन स्तर को उठाने के लिए लगातार काम करती रही है और उसने कई प्रकार की योजनाएं भी की है और उन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच भी रहा है, किसानों के लिए देख लीजिए या श्रमिकों के लिए देख लीजिए। तो ऐसी स्थिति में हम जब बात करते हैं देश के विकास की, तो युवा जो है वो देश के विकास की रीढ़ की हड्डी होता है और उसकी ताकत को समझने के लिए और उस रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए हमें युवाओं से जुड़ी हुई और युवाओं को फोकस करती हुई ऐसी योजनाएं जो है वो देखनी होगी, जिससे युवा जो है अपने उस मानसिकता के घेरे से निकले कि जिसमें वो सिर्फ नौकरी तक सीमित न रहे, नौकरी के ख्याल को छोड़कर वह अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। अब जब बिजनेस स्टार्ट करने की बात होती है तो यहीं से स्टार्टअप शुरू होता है।
1: बिल्कुल।
0: और स्टार्टअप दरअसल ये एक ऐसा कह सकते हैं सेक्टर है या एक ऐसी पहल है जिसमें आइडिया आपका होगा, इनोवेशन आपकी होगी, खोज आपकी होगी, लेकिन आर्थिक रूप से इसकी आवश्यकताओं और इस चीज को शुरू करने के लिए सरकार आपको फंडिंग करेगी और इस वित्तीय सहायता के माध्यम से आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो भारत सरकार की ये एक प्रमुख पहल है और एक दरअसल ये एक नई प्रकार की संस्कृति है, स्टार्टअप संस्कृति। जैसे मान लीजिए अगर युवा नौकरी के ख्याल को छोड़कर कुछ बिजनेस करना चाहता है तो देखिए बिजनेस करना अलग है, बिजनेस में नवाचार करना एक अलग चीज है। अब यदि युवा किसी चीज को लेकर कुछ खोज करता है और वो खोज करने से उसको ऐसा लगता है कि अब इसको बिजनेस में कन्वर्ट करके आम आदमी तक पहुंचाया जाए, तो सरकार उस चीज को अपने स्तर पर परीक्षण करके देखती है और उसके दूरगामी और वर्तमान और तत्कालिक परिणामों के आधार पर यदि सरकार को लगता है कि ये जो अनुसंधान या जो नवाचार है ये इस बिजनेस के क्षेत्र में आकर उस युवा और उससे जुड़े हुए अन्य लोगों को रोजगार देकर देश के विकास में अपनी भूमिका निभाता है, तो वहीं से स्टार्टअप इंडिया की जो शुरुआत हो जाती है, ये एक नया कल्चर होता है। और ये जो स्टार्टअप का कार्य है ये नवाचार जो है उद्यमिता और एक मजबूत समावेशी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है और यहीं से एक स्टार्टअप की शुरुआत होती है। बस थोड़ा सा अपने अंदर के इनोवेशन जो सिस्टम है उसको हमें थोड़ा बाहर लाना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है, बताना पड़ता है, उसके आगे पीछे के जो परिणाम हैं अच्छे हैं या बुरे जो भी हो सकते हैं उसको लेकर हमें अपनी जो बात है वो सरकार के समक्ष रखनी पड़ेगी और उनके द्वारा इसका परीक्षण करने के बाद जब ये सारी चीज़ें देश के विकास के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं तो वहाँ से सरकार जो है उस इनोवेशन और उसके क्राइटेरिया के हिसाब से चलने वाले बिजनेस के पूरे वातावरण या उसके परिवेश को देखकर सरकार अनुमानित तौर पर एक आइडिया लगाकर उसको पूंजी देती है और उस पूंजी के माध्यम से वह अपना स्टार्टअप काम शुरू कर सकता है।
1: शरद जी, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी युवा अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनको सबसे पहले तो अपने आइडियो को यूँ कहें कि एक रिसर्च के माध्यम से कि ये कितना कामयाब होगा, कितनी जरूरत है समाज को, इस देश को, और दूसरा क्या वो कितना उपयोगी है। नया तो होना ही चाहिए और उपयोगी भी होना चाहिए। अब मैं कुछ स्टार्टअप के मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखिए एक समस्या और इनोवेशन के द्वारा उसका समाधान वो कैसे किया जा सकता है। हमारे देश में आपने देखा होगा कि प्लास्टिक एक बहुत ही यूँ कहें कि हमारे देश के लिए नहीं दुनिया के लिए एक ऐसा जंजाल बन चुका है कि इससे निपटना हर सरकार के लिए भारी मतलब चुनौती हो रहा है। कई नालियां भर जाती हैं और ये सड़ता गलता है नहीं, हजारों साल तक ऐसी मिट्टी में पड़ा रहता है। अब एक एक प्लास्टिक का टुकड़ा कहीं मिल जाए तो बड़ा उपयोगी बना एक स्टार्टअप ने। उन्होंने क्या किया, सारे जो प्लास्टिक का कचरा है उसको इकट्ठा किया गया और उसके ब्रिक्स बनाए जाते हैं। अब ब्रिक्स क्या काम आएंगे, ब्रिक्स से देखिए कई देशों में इसकी सड़कें भी बनाई जा रही हैं, लेकिन मैं अपने देश की बात करूं तो ब्रिक्स का इस्तेमाल जो जैसे मकान बनता है, अब मकान में जो पार्टीशन होते हैं हल्के या दीवारें होती हैं तो ऐसी जगह इनका उपयोग किया जाता है कि जिससे कि हीट मकान के अंदर नहीं आएगी। दूसरा, ये हल्के होते हैं और उसका पार्टीशन में यानी कोई बिल्डिंग बन रही उसमें ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा, कई ऐसे हैं कि संस्थान हैं, स्टार्टअप हैं जिन्होंने प्लास्टिक को

0: एक जो कहे के कचरे से निकाल करके उसको गला करके सड़कों में सड़कें बनाना, गलियों की जो जैसे आज ब्रिक्स लगते हैं ना सीमेंट
1: जी
0: के,
1: हाँ ब्लॉक वाले। हाँ
0: हाँ उसी तरह के ब्रिक्स बनाने शुरू किए। और उनमें इनमें फर्क क्या, देखिए एक सीमेंट के ब्रिक्स होते हैं, अब वो सड़कें होती है ना या पैदल मार्ग होते हैं, तो वो गर्म जल्दी हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पार्कों के अंदर अगर ये ब्रिक्स लगाए जाएंगे ना, प्लास्टिक वाले या जो कचरे से बने होते
1: जी
0: प्लास्टिक के, तो वो गर्म नहीं होते। तो सुबह सुबह जो पैदल चलने वाले हैं, कई बार पार्कों में घूमते हैं, पैदल घूमते हैं, बिना चप्पल के घूम सकते हैं, और ये उस पार्क को ओवर हीट होने से भी बचाते हैं। और ये जब देखिए, ये तो हमारे प्रकृति के लिए एक चुनौती थे, अब वही प्रकृति की दृष्टि से उस पार्क को हीट से भी बचाने का काम कर रहा है। एक बहुत बड़ा स्टार्टअप और भारत में शुरू हुआ, वो था देखिए कि जब ये शुगर मिल होते हैं,
1: जी
0: उसके अंदर से जो गन्ने का जो जो कह के जो रस निकल जाता है, उसके बाद जो उसका बहुत सारा कचरा बचता है गन्ने का, अब वो कचरा वेस्टेज था। तो जो पुराने समय में जो आपने देखा होगा कि हम मिट्टी के बर्तन यूज करते थे, मिट्टी के बर्तन धीरे धीरे बंद होते गए, उनको बनाने वाले भी आजकल नहीं बनाते, और फिर वो शुरुआत हुई पेपर की प्लास्टिक की, जो के शादियों में चलते। तो वो भी एक चुनौती थी कि पेपर बहुत महंगा पड़ता है, और दूसरा पेड़ों का इस्तेमाल होता है, उसमें पेड़ कटते हैं, तो उन पेड़ों को बचाने के लिए जो वेस्टेज था, देखिए गन्ना की जो उसको हम खोली बोलते हैं, जो बचता है वो बड़ी शुद्ध होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है, उसको गलाकर पीस करके उसकी जो प्लेटें बनाई जाती हैं, और उसकी इतनी मांग बढ़ गई है, क्योंकि वो एक तो खाने के लिए शुद्ध होती है,
1: जी
0: और दूसरा वो इस्तेमाल करने के बाद में नष्ट बहुत जल्दी हो जाती हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, तो जो अभी हम प्लास्टिक का जो ये प्लेटें या जो यूँ कहें कि क्रॉकरी वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे शादियों में या
1: उसके
0: पेपर,
1: ये विकल्प के रूप में बहुत
0: उसके
1: अच्छी बात है।
0: विकल्प के रूप में वो गन्ने का जो आपने देखा होगा जो रस निकालने वाले जो खोली बचती है ना उसका,
1: जी
0: उसको पीस करके और उसको गला कर बहुत शानदार दिखती है, बहुत शुद्ध होती है, उसका इस्तेमाल किया जा
1: और
0: रहा
1: एक
0: है।
1: तरह से वो सात्विक भोजन
0: सात्विक, बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: होता है। ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें भी एक नवाचार है, एक
0: बिल्कुल
1: नया
0: नवाचार।
1: आइडिया है। दरअसल स्टार्टअप चाहता यही है।
0: अब इसमें शरद जी फायदा क्या हुआ, एक तो वो जो गन्ना मिल थे ना उनके लिए चुनौती थी कि इसका कहाँ पर
1: निस्तारण कैसे किया
0: निस्तारण
1: जाए।
0: कैसे किया जाए, तो एक तो उसका निस्तारण हो गया, दूसरा प्लास्टिक जो उपयोग की जा रही थी उसका भी निस्तारण हो गया, क्या उसका उपयोग नहीं होगा।
1: वो
0: और
1: पर्यावरण के लिए जो हम खतरा मान रहे थे
0: हाँ
1: जिससे काफी हमें समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, कहीं पर भी राह चलते फेंक दिया गया, नालियों को उसने ब्लॉक कर दिया, यहाँ तक कि देखिए पशु लोग भी खाने लग गए, उनके लिए भी समस्या हो गया। तो मतलब
0: अब उसको देखो, प्लेट को जैसे पशुओं की बात की,
1: जी
0: अगर पशु उसको खा भी लेगा तो उसको उसके भोजन के रूप में उसको
1: हाँ
0: फायदा ही कर, नुकसान नहीं करेगा।
1: बिल्कुल। और अभी जो हम यूज कर रहे हैं ये तो नुकसानदायक है।
0: बिल्कुल प्लास्टिक
1: तो
0: बहुत
1: आप ये सोचिए कि स्टार्टअप में क्या है, एक विचार से अनेकों विचार और अनेकों चीजें निकल कर आती है, और ये काफी हद तक अपने आप में कह सकते हैं कि सोच से बहुत आगे चीज है। अभी जो आपने जो एग्जाम्पल दिया वो अपने आप में काफी हद तक अलग है, और वो इसी बात को साबित करता है कि आप कितना अलग हटकर सोचते हैं। श्याम जी एक और बात मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। हमारे जैसलमेर के ही एक युवा ने जिनका नाम है रविंद्र सिंह बिश्नोई, जिन्होंने भी अपने यहाँ एक स्टार्टअप का काम शुरू किया है। आपने देखा होगा कि अक्सर जब बाइक चलाते हैं तो हम साइड स्टैंड को भूल जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो उसको लेकर भी उन्होंने काफी कुछ काम किया है और उस उनको वित्तीय सहायता भी मिली है। तो ऐसे स्टार्टअप जो हैं वो नवाचार की अपेक्षा रखते हैं और उससे अगर आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को एक से नहीं अनेकों चीजों से उस काम को करने से फायदा होता है तो निश्चित रूप से वो स्टार्टअप की श्रेणी में आता है, और सरकार इन सब कामों को स्टार्टअप में लेकर सबसे पहले फंडिंग करती है।
0: अब बिल्कुल, अब शरद जी ऐसे स्टार्टअप होंगे जो देश के लिए यू कहें कि फायदा करेंगे, और वो हमारे जो प्रॉब्लम है उनको भी सॉल्व करेंगे, तो सरकार क्यों ना उनकी मदद करेगी। अभी आपने एक स्टार्टअप और सुना होगा, और वो स्टार्टअप है कि जो देखिए कि हरियाणा पंजाब के अंदर जो पराली जलाने के बहुत सारे ऐसी सूचनाएं आती थी कि सर्दियों में उससे क्या प्रदूषण बहुत होता है,
1: जी
0: तो सरकार ने किसानों को ऐसी मशीनें खरीद के दी हैं कि वो खेतों में जो गेहूं के ऊपर वाला हिस्सा काट लेते हैं और वो जो नीचे वाला हिस्सा रह जाता है, धान का रह जाता है, चावल का रह जाता है, वो मशीनों में डाल करके उसका वो पाउडर बना देती हैं, और उस पाउडर से पेपर बनाया जाता है।
1: क्या बात है
0: तो सरकार ने ये शुरू किया है, और कुछ ही दिनों के बाद मुझे लगता है जो ये

0: पराली जलाने की समस्या थी और वो खत्म हो जाएगी। और भी देखिए एक समस्या थी हमारे देश के अंदर, जो थर्मल पावर स्टेशन हुआ करते थे उनके जो कोयले से बिजली बनती है वहां पर कोयले की राख के ढेर लग जाते थे, उनको निस्तारण करना के बहुत भारी होता था और कंपनियों को बहुत बड़ा नुकसान होता था उनको इधर उधर डालना। एक तो जगह चाहिए उसको डालने के लिए
1: जी,
0: और दूसरा जगह के अलावा उसको कहीं दूसरी जगह ले जाना है तो उसका मतलब
1: खर्चा भी लगता है।
0: हाँ, खर्चा लगता है। तो एक स्टार्टअप शुरू किया एक हमारे युवाओं ने, ऐसे तो कई जगह शुरू हो चुके हैं आजकल, तो ये काफी पुराना स्टार्टअप हो गया। तो उन्होंने जो राख होती है वो कोयले की और जो जिप्सम होती है उसको मिलाकर के ब्रिक्स बनाने शुरू किए, जो कि जैसलमेर में भी आपने होटलों में देखे होंगे बड़े बड़े ब्रिक्स आ रहे हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, जो पार्टीशन के लिए या
1: ईंटों
0: का इस्तेमाल नहीं हो, देखा होगा आपने,
1: क्योंकि वो पत्थर तो बहुत महंगे पड़ते हैं,
0: पत्थर महंगे पड़ते हैं,
1: भारी होते हैं।
0: हाँ, और तो उसके ब्रिक्स आ रहे हैं, आपने देखे होंगे होटलों में आजकल जितने नए होटल बनाए जा रहे हैं उसमें उन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है। और इनकी खासियत क्या होती है कि ये जो है ना हल्के बहुत होते हैं, यानी बिल्डिंग को हाइट पे जितना भी ले जाओगे हल्के, और बीच में इनके क्या है खाली जगह होती है।
1: अच्छा।
0: तो हीट ट्रांसफर नहीं होती,
1: तो ये हमारे जैसे जैसलमेर के जो गर्म इलाके हैं उसमें ये ठंडा रहता है।
0: हाँ बिल्कुल, ये ठंडक पैदा करते हैं। तो ऐसे ऐसे स्टार्टअप हमारे यहाँ आ रहे हैं, और अगर हम हाईली यूँ कहें कि हम यूँ कहें साइंटिफिक स्टार्टअप भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे देश के अंदर जो रक्षा कंपनियां हैं उनमें बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए हैं, और जो हमारे देश के अंदर जैसे कि मिसाइलें बन रही, फाइटर प्लेन बन रहे, बहुत सारी चीज़ें, तो छोटे छोटे स्टार्टअप भी हमारे रक्षा अनुसंधान को बहुत सारी चीज़ें बना के दे रहे हैं। तो अगर किसी युवा को पढ़ाई लिखाई के बाद में कोई आइडिया आता है तो मुझे तो लगता है सरज जी कि नौकरी से बेहतर ये होगा कि अपना स्टार्टअप शुरू करे, सरकार से मदद ले और अपने उसको खुद को रोजगार के साधन तो मिलेंगे, साथ में जो स्टार्टअप शुरू होगा उसमें काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा और जो नई चीज़ जो समस्याएं देश को मिलेंगी, मतलब जो समाधान होगा देश की समस्याओं का, वो बहुत महत्वपूर्ण है।
1: इसमें एक और चीज है, रक्षा क्षेत्र की जब आपने बात करी ना, तो अभी पिछले 10 से 12 सालों में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का जो प्रचलन शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि वो स्टार्टअप इंडिया की ही एक देन है।
0: बिल्कुल।
1: और इसमें जो नवाचार हो रहे हैं उससे क्या हुआ कि हमारा रक्षा क्षेत्र जो न केवल हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है बल्कि बाहरी देशों के लिए ये निर्यात का भी एक वजह बन गया है। तो अब हम रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से बाहरी देशों को भी अपने यहाँ से बनने वाले हथियारों को सप्लाई करके देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने का काम कर रहे हैं। एक यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर सपोज मान लीजिए मैं युवा हूँ और मेरे अंदर कुछ ऐसा इनोवेशन करा है और जिसको सरकार को दिखाने के बाद सरकार को ऐसा लगता है कि हाँ इस स्टार्टअप से देश में बहुत सारा काम हो सकता है, कुछ लोगों को रोजगार मिल सकता है देश के विकास के लिए और अन्य प्रकार की सुविधाओं के हिसाब से देखा जाए, मल्टीपर्पज चीजें अगर इससे होती है तो उसके लिए फंड कहाँ से लाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं SIFFS के माध्यम से शुरुआती स्तर पर किसी भी उद्योग को लगाने के लिए उसके अनुमानित व्यय के आधार पर और उसकी जरूरतों के हिसाब से 70 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। स्टार्टिंग में ये ग्रांट जो होती है इसमें 20 लाख रुपए तक की तो अनुदान होता है, 50 लाख रुपए तक का इसमें डिबेट या निवेश सहायता शामिल होती है जिसके माध्यम से हम अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप भी हुए, ठीक है कि वह किसी कारण चले या न चले हों, तो उसमें भी नवाचार आया है। अब आप देखें चाय हम रोज सुबह उठते पीते हैं, तो चाय को लेकर भी इसमें नवाचार करके अलग अलग तरीके से बनाने से लेकर उसको लोगों तक सप्लाई करने में और ये सब चीजों को करने में भी हमने युवाओं को आगे आते हुए देखा है। तो बस जरूरत थोड़ा सा इतना ही है कि आप अपने स्किल्स के अंदर के जो तत्व हैं या आपका जो अंदर का हुनर है उसको बाहर लाकर कैसे एक्सपोज करते हैं, कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं। बस जरूरत थोड़ा सा उसमें यह है कि वो विभिन्नता लिए हुए बहुत सारे लोगों की जरूरतों और भविष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से बनी हुई हो ताकि उसका जो लाभ है वो लंबे समय तक लिया जा सके, जैसा आपने गन्ने के बारे में बताया।
0: और शरद जी एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि हमें अपने कल्चर में यानी हमारी जो युवा

0: काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी कर रहे हैं, वहां पर एक कल्चर में डालना ही होगा कि मान लो कोई इनोवेशन उन्होंने किया, स्टार्टअप शुरू कर दिया, तो वहां पर एक ऐसी यूनिट उनको रखनी चाहिए जो कि नए इनोवेशन का काम कर सके, कि जे आज जैसे काम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे स्टार्टअप मैंने बताए, और उसका और बेहतर, उसको और सुधार कैसे किया जा सकता है और कहाँ उपयोग किया जा सकता है। तो जैसे कि एक ही बार में कोई चीज उपयोग करनी है, उसके बाद में उसका उपयोग नहीं होता, तो वहां पर और आगे हम बढ़ सकते हैं। दूसरा, मैंने बहुत सारी कंपनियां स्टार्टअप शुरू हुए, जो हम रक्षा क्षेत्र में बात कर रहे थे ड्रोन की, आजकल देखिए ड्रोन की शुरुआत तो हुई थी एक फोटोग्राफी के लिए, और आज ड्रोन कहाँ पहुंच गया है, शादी की फोटोग्राफी से लेकर कृषि क्षेत्र में इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग हो गया है। रक्षा क्षेत्र में तो अब ड्रोन के
1: बिना सोच भी नहीं सकते, और इसमें भी बहुत सारी नई नई चीजें आ रही है।
0: अब हमारे देश में भी बहुत प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट स्टार्टअप शुरू हुए, उन्होंने बहुत हाई क्वालिटी के और ड्रोन बनाने शुरू कर दिए। अब एक स्टार्टअप हमारे देखिए यूनिवर्सिटी हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने भी कई शुरू करवाए, और वो ऐसे हैं कि आगे चल करके बहुत बड़े साबित हो सकते हैं। जैसे कि हमारे जो छात्र हैं वो नैनो सैटेलाइट बनाते हैं छोटा सा, और भारत सरकार का जो अपना इसरो है वो उनको अंतरिक्ष में पहुंचाता है, और वो जो सैटेलाइट उनका जो अंतरिक्ष में होता है उससे वो सिग्नल प्राप्त करते हैं, उसके अपने लिए और रिसर्च के लिए वो बहुत सारे प्रयोग करते रहते हैं। तो वो जब प्रयोग करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो बताते हैं कि हमारा अपना सैटेलाइट है, इसका हम अपने उपयोग कर सकते हैं, एक यूँ कहें यूनिवर्सिटी के अंदर अपना पूरा नेटवर्क बना सकते हैं, सारे स्टूडेंट हैं उनको जोड़ सकते हैं, इससे क्या प्रेरणा मिलती है, और पूरे धीरे धीरे वही इनोवेशन बड़े होकर के पूरे देश को फायदा दे सकते हैं।
1: हाँ, और इसमें अभी जैसे वर्तमान में हम बात करें तो भारत में अभी तक 2 लाख से अधिक स्टार्टअप की शुरुआत जो है, स्टार्टअप की शुरुआत हो चुकी है, और देखा जाए तो हमारा देश जो है दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, और यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स विदेश में नंबर एक होते हुए होने को कह सकते हैं कि तैयार है, और देश में $1 बिलियन से अधिक की वैल्यू वाले यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या भी 128 से अधिक हो चुकी है।
0: अब देखिए सर जी, आपने बात की यूनिकॉर्न की, तो अगर आपके इनोवेशन ऐसा है जो यूनिकॉर्न है, तो मुझे लगता है कि उसका हमें जो है संरक्षण जरूर प्राप्त करना चाहिए, उसके लिए हमारी सरकार पेटेंट में भी मदद कर रही है। तो अगर हम अपने जो स्टार्टअप है उसमें कोई नई चीज़ है, उसका पेटेंट और उसके अधिकार हमारे पास होंगे, तो उसकी कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, और आपको जो आपने जो अपना दिमाग इस्तेमाल किया उसका लाभ आपको मिलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे देश के अंदर आज बहुत सारे पेटेंट दाखिल हो रहे हैं। एक समय ऐसा था कि जागरूकता के अभाव में अच्छी चीज़ों के पेटेंट नहीं हो पाते थे, वो भी नहीं कराते थे, और वो बाद में चल करके दूसरे लोगों ने पेटेंट कराए। अब उदाहरण तो सर जी ऐसा है कि जो यूरोप के लोगों की बात करें, इतने जागरूक हैं कि एक जो सेफ्टी पिन होती है ना,
1: हाँ, उस पर भी वो
0: उसका भी पेटेंट
1: इसमें स्टार्टअप इंडिया में एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि आप जो भी चीज शुरू कर रहे हैं उसका पेटेंट जरूर करवाएं।
0: बिल्कुल हाँ,
1: क्योंकि ये आपके लिए एक तरह से सर्वाधिकार सुरक्षित वाली बात होती है।
0: बिल्कुल, इंटेलेक्चुअल जो आपके राइट्स हैं वो आपके सुरक्षित रहेंगे, और इसके बिना मुझे लगता है कि जो आपने मेहनत की है पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा।
1: हाँ, और ये भविष्य में जो कहते हैं ना कि तकनीकी हस्तांतरण, अगर मान लीजिए स्टार्टअप आपका बहुत अच्छा है और चल गया, और इससे इसने अगर कोई लंबे स्तर तक काम करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि दूसरे देश आपसे इस टेक्नोलॉजी को मांगेंगे।
0: हाँ, उसके बदले में रॉयल्टी देंगे,
1: रॉयल्टी आपको मिलेगी। तो पेटेंट होना बहुत जरूरी,
0: तो जो मिलता है इसका लाभ 12 साल तक तो कम से कम आपको लाभ मिलेगा ही, उसके बाद पेटेंट फ्री होता है, तो उसके बाद कोई भी उपयोग करे तो 12 साल में आप खड़े हो सकते हो, आपको लाभ मिल ही जाता है। तो शरद जी, कुल मिला के हम बात कर, अच्छा आपसे मैं एक बात जानना चाहूँगा, कोई युवा किसी के पास दिमाग में आइडिया आया, तो ऐसा कोई पोर्टल है हमारे पास सरकार का, कहाँ उस आइडिया को वो उनको सरकार को बताए, कहाँ अप्लाई करे, क्या कुछ है बताइए थोड़ा।
1: देखिए, स्टार्टअप के लिए तो हमें पहले भारत सरकार की जो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल है उस पर जाना पड़ेगा, और वहां जाकर पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद जो अपना इनोवेशन है वहां पर उसकी पूरी जानकारी देनी होगी, उसके बाद उसको प्रैक्टिकली देखा जाता है, और उसके पश्चात ही ये तय किया जाता है कि ये स्टार्टअप के लिए सही है या नहीं, और सारी ये सब प्रक्रियाएँ पूरी होती हैं, और उसके आगामी और दूरगामी जो भी परिणाम है उस पर काफ़ी विश्लेषण किया जाता है, और

0: सब तरह से सोच विचार करने के बाद उसको सरकार द्वारा सहायता दी जाती है, तब जाकर वह अपना जो है वो काम शुरू कर पाते हैं।
1: सर जी, जहां तक पेटेंट की बात की तो सरकार का एक पोर्टल है अटल इनोवेशन, तो वहां पर जाकर के अगर आपका स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो अगर अच्छा है तो वहां पर जाकर के आप अप्लाई करें, तो अगर अच्छा हुआ सरकार उसको पेटेंट करने में भी मदद करेगी। तो इनोवेशन किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, देखिए आपके किचन से लेकर के कृषि क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में, और यूँ कहें कि मार्केटिंग से लेकर के कहीं भी बहुत सारे इनोवेशन हो सकते हैं। कृषि क्षेत्र में बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं, चाहे तो यूँ कहें कि क्राफ्ट का हो, या नई किस्मों का हो, या कृषि करने के तरीकों का हो, उनके भी बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए हैं। और इन स्टार्टअप का जो यूँ कहें कि फायदा हमारे देश को मिल रहा है। सर जी देखिए, कि एक मैं चीज़ और भी महत्वपूर्ण बताऊं कि अगर कोई किसान रेगिस्तान खेती करता है,
0: जी
1: तो अगर किसी को अगर इनोवेशन नहीं है उनके पास, तो अगर जमीन दे दो तो कहेगा भाई यहाँ तो पानी नहीं है और बहुत गर्मी है, तो खेती कैसे की जा सकती है ना। लेकिन आपको बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताऊं कि जो इजराइल है, इजराइल के अंदर ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, और वो रेगिस्तान के अंदर ग्रीन हाउस के अंदर खेती करते हैं, और पानी टैंकरों के द्वारा दूर दूर से लाते हैं, और जो ड्रॉप जो कि बूंद बूंद सिंचाई है उससे वो बहुत अच्छी फसलें पैदा करते हैं, हर चीज पैदा कर लेते हैं। तो हमारा देश में इतना बड़ा जो रेगिस्तान है, उसी तकनीक को अपनाकर हम भी यहाँ पर खेती कर सकते हैं, और यूँ कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में नहीं, भारी मात्रा में। और यहाँ पर देखिए कुछ तो जमीनें ऐसी हैं हमारी जो कि नेचुरल खेती के लिए भी उपयुक्त हैं, जैसा कि जो एक इनोवेशन ही था एक तरह से, ये वाला जो खजूर का एक प्रयोग किया
0: हाँ,
1: गया था यहाँ
0: ये
1: पर।
0: आप सोच सकते हैं कि ये
1: हाँ
0: तो केवल हमें लगता था कि मध्य पूर्व देशों में ही होता है।
1: हाँ तो यहाँ पर वो इतनी सफलता जो खजूर के पौधों ने हासिल की है, अनार जो यहाँ
0: अब
1: पर
0: यहां से हम
1: शुरुआत
0: बाहर
1: हुई,
0: भेज रहे हैं।
1: बिल्कुल बहुत अच्छी क्वालिटी का जो खजूर है वो अपने यहाँ पैदा हो रहा है। तो ये एक स्टार्टअप सरकार का था, ये सरकार ने पैसा खर्च किया, और जो हमारे वैज्ञानिकों का आइडिया था कि यहाँ खजूर सक्सेस हो सकता है। अच्छा सर जी, ये आइडिया आया कैसे? जो आपने, आपको पता ही होगा कि जब यहाँ पर अपने एक कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर राम सिंह मेहनतिया हुआ करते थे,
0: हाँ
1: और
0: बिल्कुल,
1: उनका ही ये जो कहें कि एक आइडिया था कि यहाँ क्यों ना खजूर पैदा किया जाए। इसका रीजन था, उन्होंने देखा था कि यहाँ जैसलमेर के अंदर जुलाई में भी बारिश नहीं आती
0: नहीं
1: है,
0: आती है।
1: अगस्त में बारिश होती है, और कभी कभार थोड़ी बहुत बारिश जुलाई में हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं होती है। वो बरसों का उनका रिसर्च था, तब उन्होंने सोचा कि जो खजूर की फसल होती है और वो पकने से पहले यानी पूरी पक जाए और तो बारिश हो गई तो वो खराब हो जाती है, और वो जून के महीने में पक करके तैयार हो जाती है, तो जून तक तो कोई संभावना थी नहीं। जैसे कि मध्य एशिया के अंदर भी ऐसा ही, वहां तो बारिश होती ही
0: होती
1: नहीं है,
0: नहीं है।
1: लेकिन पानी वो यहाँ कमी थी, तो बूंद बूंद करके उन खजूर के पौधों को तैयार किया गया, और आज वही खजूर जो है ना ये प्रेरणा बने हैं, दूसरे किसान अपना रहे हैं, और यहाँ भारी मात्रा में खजूर की पैदावार हो रही है।
0: तो इस हिसाब से तो हम ये समझ सकते हैं कि रेगिस्तान में भी फूल खिलाए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल, आइडिया आपका अच्छा है, इनोवेशन है, और उसको पूरा रिसर्च के साथ अगर लागू करोगे, शुरुआत में मेहनत होगी, लेकिन अगर वो सफल हो जाता है तो वो बहुत ऊंचाइयां छुएगा और बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। नए आइडिया और परंपरागत आइडियो में जो चल रहा है उनकी कॉपी करने के बजाय नया आइडिया लाओगे तो उसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा और नाम भी मिलेगा। तो सर जी कुल मिला के हम बात करें कि जो हमारे युवा हैं जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो पढ़ाई के दौरान सोचना शुरू करें, और देखिए हम बहुत सारी डिग्रियां ले लेते हैं और डिग्री के बाद फिर वो ढूंढते हैं नौकरी, तो अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपना ज्ञान जो भारत के विकास में खर्च करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप इंडिया आपके लिए उपयुक्त है।
0: बेहतर विकल्प है, और उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी हमारे युवा पढ़ाई के दौरान जो भी नया इनोवेशन होता है उसके बारे में गहराई से विचार करके उसको धरातल पर लेकर आएंगे, और वो स्टार्टअप इंडिया से अगर जुड़कर शुरू होता है तो आने वाले समय में न केवल वो खुद आगे बढ़ेंगे बल्कि अपने साथ अन्य युवाओं को भी प्रेरणा देंगे। तो आज की विकास यात्रा में हमने बात की स्टार्टअप इंडिया की, और समय हो रहा है पूरा, तो आज की इस विकास यात्रा कार्यक्रम से मुझे शरद शर्मा और
1: श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: आजादी का अमृत महोत्सव।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम विकास यात्रा। इस कार्यक्रम में वाचक स्वर था शरद शर्मा का और निर्देशन था रामजीलाल मीणा का। यह आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है। इस समय बजे हैं स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जय जवान। फिल्म संगीत कार्यक्रम पर आधारित जय जवान कार्यक्रम में पहला गीत आपके लिए लेकर आए हैं आशी की फिल्म से अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में।

0: श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और फिर न्यूज हेडलाइन।
1: भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
2: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि 1 लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फुकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले

0: यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
1: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
2: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारम्भ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
3: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। ये आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
4: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के

ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील है। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रखा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा, ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में

नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर जेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

रागो रागो रागे अंतरा है पागल मोहे बना दिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालू हाल मोहे समा।

0: सुनिए
1: कहिए कहिए
0: सुनिए सुनिए
1: कहिए कहिए ना
0: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।

0: सुनिए
1: कहिए
2: कहिए
0: सुनिए
3: सुनिए
1: कहिए
2: हाँ हाँ।

0: सुनिए
1: कहिए
2: कहिए
0: सुनिए
3: सुनिए
2: कहिए

0: सुनिए
1: कहिए कहिए
0: सुनिए सुनिए
1: कहिए कहिए
0: सुनिए कहते सुनते बातों बातों।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत।

सारो थारे नैना सु थारे गाला सु थारे होठा सु रंग मन मारो मारी जान कमर सा थारे होठा सु रंग मन मारो।

0: श्रोताओं, इन्हीं लोकगीतों के साथ हमारा लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारी प्रसारण FM बैंड 101.8 MHz पर उपलब्ध है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रविवार स्तरीय संगीत सभा।
1: सोमनाथ मरडूर से मिली तालीम ने उनकी गायकी को एक अनोखा अंदाज दिया है। दिग्गज उस्तादों की प्रेरणा से सजी उनकी इस गायकी में जयपुर, अतरौली और अन्य घरानों की झलक भी मिलती है। एक बहुमुखी कलाकार और संगीतकार के रूप में कुमार मरडूर ख्याल, तुमरी, हिंदी भजन, मराठी अभंग, कन्नड़ दास साहित्य, कन्नड़ वचन साहित्य और कई अन्य संगीत परंपराओं का अन्वेषण करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार कुमार ने देश भर के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुति दी है।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय श्री कुमार मरडूर। अवार्डेड द उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार बाय द संगीत नाटक अकेडमी, कुमार मरडूर stands out as a gifted Hindustani classical vocalist. His grounding in the Kirana and Gwalior gharanas, along with training under his father, Pandit Somnath Mardur, has led to a unique gaiki that weaves in elements from Jaipur, Atrauli and other gharanas, built on deep riyas and inspiration from legendary maestros. A multifaceted performer and composer, Kumar explores khayal, tumri, Hindi bhajans, Marathi Abhangs, Kannada Dasa Sahitya, Kannada Vachana Sahitya and many other traditions. An A-grade artist of Akashwani and Doordarshan, Kumar has performed throughout the country in various prestigious concerts.
3: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे हैं। श्री कुमार मरडूर अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग छायानट से कर रहे हैं। विलंबित जुमरा इनायत हो, द्रुत तीन ताल एरी मालनिया, द्रुत तीन ताल तराना।
2: In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath. Shri Kumar Mardur will begin his vocal recital with Raag Chayanat. Vilambit Jhumra Inayat Ho, Drut Teen Taal, Eri Maliniya, followed by Tarana in Drut Teen Taal.

chuna chuna kaliya dhola marwa phulan ke harwa ra

0: अभी आपने सुना राग छायानट। अब श्री कुमार मल्डोर प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्वरी। विलंबित एकताल सकी मना लागिना, द्रुत एकताल विनती करत है।
1: You just heard Raag Chhayanat. Shri Kumar Mardur will now present Raag Bageshri. Vilambit Ektaal Sakhi Mana Lagena, Drut Ektaal Binati Karata.

0: आत्मक आप सुन रहे थे राग बागेश्वरी। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री कुमार मर्डूर का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे थे।
1: That was राग बागेश्री। With that, we come to the end of tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, in which you were listening to a vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was earlier recorded at Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
4: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर

0: सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि हुर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि हुर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फुसपोक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माह के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माह के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के ऑडोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल है। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।